0: முடிவெடுத்திருக்கிறோம். அவ்வளோதான் செய்தி.
1: IUML of Tamil Nadu state, no, has decided to extend unconditional support for the formation of government under the leadership of Vijay. IUML is a party representing the views, aspirations and dreams of Muslim community in Tamil Nadu. We never asked for members ministerial post. We have never asked for any other their demand. In that way, we extend our support. A.M. Shah Jahan, MLA, he has been unanimously chosen by our people to represent IUML in the ministry.
2: Well, let's now take you to Maharashtra. At least 17 people have been arrested for rioting and stole pelting during the demolition drive in Mumbai's Bandra East. Violence broke out as a crowd tried to stop the court-ordered anti-encroachment action on railway land worth rupees nearly 600 crores. All the arrested accused have been sent to police custody till May 26. The Mumbai police told the court that the stone pelting was pre-planned and that stones and cement blocks were arranged well in advance. Social media reels spreading misinformation are also under the police's radar. The demolition drive has now sparked a political showdown, with the opposition even questioning the manner in which the action was carried out.
3: Bandra Purva mein jo karwai chal rahi hai, usme atikraman nikalne ka karya chal raha hai. Atikraman nikalte samay kuch logon ne pattharbaji ki, police par patthar feke, isliye police ne unke upar lathi charge kiya, unko control mein laya. उसके बाद जो पत्थर फेकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है.
4: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते, याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे. जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल. उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे.
5: हर जगह भाजपा करना चाहती है. आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है. लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है.
6: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं, उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो. ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया. ये बिल्कुल बंद होना चाहिए.
7: MIM आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा. बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है.
8: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है. जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था, तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है. ये पथरावबाजी जब हुई है, जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है, जो तोम बोला जाता है, उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई. दोनों तरफ से फिर लाठी चार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी हुई. जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना. ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे. तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया.
2: Well, NDTV's managing editor Padmaja Joshi spoke to Mumbai South Shiv Sena UBT member parliament Arvind Sawant on the demolition drive and whether provocation was behind the stone pelting on what happened on Wednesday. Listen in to this chat.
9: Sir, I just want to start by asking you, this demolition drive has been carried out very clearly under a high court mandate. Even the Supreme Court has refused to stay. Why is your party objecting to the exercise then?
10: I received a letter on 3rd February 26 from Mr. Tokhan Sahu, who is a state minister for housing of the central government of India.

0: नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दी।
1: India's unshakable news habit, ndtv.com, is India's number one English news website.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: फ्रॉम रूरल क्लासरूम्स टू ग्लोबल कैंपसेस इंडियाज एजुकेशन स्टोरी इज चेंजिंग द क्वेश्चन इज सिंपल हाउ डू वी मेक एवरी चाइल्ड फ्यूचर रेडी Visionaries, disruptors, policy makers, one big conversation charting the future of India's young minds. NDTV Learn Next Conclave, 25th May, only on NDTV.
2: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.

0: वही है। उसके बाद में जो भी भक्त आएंगे वो अपनी अपनी आरती पूजन और सब समाज पूजा करेगा दिन भर।
1: वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आरती होगी और इसके पहले भी बात करूँ तो कल शाम को जो है वो फ्लैग मार्च निकाला गया था। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ने साफ तौर पर दो टूक अंदाज में कहा था कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है उस निर्णय का पालन कराया जाएगा। और अभी यदि बात की जाए तो जो दूसरा पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सिल भी दायर की गई है और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है सलमान खुर्शीद करेंगे। तो अभी जो हालात हैं वो शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है।
2: ऑलराइट अजय, थैंक्स सो मच फॉर शेयरिंग दैट अपडेट विद अस। करंटली देयर इज इंक्रीज्ड सिक्योरिटी प्रेजेंस देयर। वी विल ऑफ कोर्स रिवर्ट टू अजय शर्मा फॉर द लेटेस्ट फ्रॉम द बोधशाला। फॉर नाउ लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू महाराष्ट्र, मुंबई स्पेसिफिकली। Well, Mumbai witnessed one of its biggest anti-encroachment operations as Western Railway launched a demolition drive near the Bandra station to reclaim railway land worth nearly 600 crore rupees, triggering protests and violence. We're told at least 17 people have been arrested for rioting and stone pelting during this demolition drive in Mumbai's Bandra East. All the arrested accused have been sent to police custody until the 26th of this month. Mumbai police told the court that stone pelting was pre-planned and that stones and cement blocks were also arranged in advance. That's what the police maintains. But social media reels spreading misinformation are also under the police's radar, something that they have made clear. And this demolition drive has now sparked a political showdown, with the opposition questioning the manner in which the action was carried out. We've lined up crucial political reactions for you this morning. Listen in.
3: बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया। उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है।
4: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
5: हर जगह भाजपा करना चाहती है। आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
6: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो। ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
7: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
8: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है? जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था, तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है? ये पथरावबाजी जब हुई है, जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है, जो तोम बोला जाता है, उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई। दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी। जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना। ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया।
2: अभिषेक अवस्थी इज ट्रैकिंग द लेटेस्ट फॉर अस इन मुंबई। ही जॉइंस अस लाइव दिस मॉर्निंग। अभिषेक, वी गिवन टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट 17 पीपल हैव बीन अरेस्टेड नाउ फॉर रायटिंग एंड स्टोन पेल्टिंग ड्यूरिंग दिस डेमोलिशन ड्राइव। दिस एज द ऑपोजिशन कंटिन्यूज टू क्वेश्चन द डेमोलिशन प्रोसेस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
1: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो। ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
2: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
3: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है? जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था, तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है? ये पथरावबाजी जब हुई है, जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है, जो तोम बोला जाता है, उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई। दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी। जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना, ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया।
4: मीनवाइल शिवसेना यूबीटी एमपी अरविंद सावंत क्वेश्चंस द डेमोलिशन प्रोसेस, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी एंड आल्सो द रोल ऑफ रेलवे अथॉरिटीज इन दिस केस, व्हाइल आल्सो एडमिटिंग दैट द एनक्रोचमेंट्स वर इलीगल एंड शुड हैव बीन स्टॉप्ड अर्लियर। लिसन टू व्हाट मिस्टर सावंत टोल्ड माय कॉलीग पद्मजा जोशी।
5: Sir, I just want to start by asking you, this demolition drive has been carried out very clearly under a high court mandate. Even the Supreme Court has refused to stay. Why is your party objecting to the exercise then?
2: I received a letter on 3rd February 26 from Mr. Tokhan Sahu, who is a state minister for housing of the central government of India. Now, what he says is that all people who are dwelling on the land of the government, may it be PSU also, they should be rehabilitated in situ. That means there and there itself. You know, the action of the police or whoever it may be, this should be brought to the notice of the court. When the Honorable Prime Minister says that everybody will have a pakka ghar by 2020, it is 26. It's a failure of the central government not to give them pakka ghar, and as well as it's a failure of the central government when you have your policies, you are not convincing your own government. I mean the government ruled by your party. You are not even able to convince them. This is what the central government has aimed. This is what the dream of the Honorable Prime Minister. This is what he is thinking. That is what he has brought it. And he has issued a circular. These circulars are right now in front of me. You can see these circulars. You can close, can shot it closely and can read it right now, wherein it is said that all those people who are there in the premises, whether legitimate or illegitimate, they should be given a pakka ghar.
5: But Arvindji, your leader is not talking about pakka ghar. Your party, by the way, was in power in 2017 with the BJP when the first demolition drive was carried out in this exact area against the illegal encroachment. In 2021, a court survey was done and a court said that as per the survey, only around 100 structures will be protected, 400 will be demolished. It's a court order. What was the need for your MLA, Mr. Varun Sardesai, to try and politicize it today? And why is Mr. Aditya Thackeray saying that it's been done incorrectly? That process has been followed.
2: Your question is a political itself. You are diverting it to a political situation. Why, Mr. Aditya Thackeray, this is what I am saying. Why you are taking it into that? This circular is issued after that.
5: Because these statements are political.
2: The Prime Minister has launched a pakka ghar scheme for entire country. Affordable vertical, that also he has done. There is another scheme which is affordable housing scheme. That also is existing. Why these railways or even the other authorities of the central government, when they knew, I myself had went and approached to the central government, GM railways, I mean the general manager Central Railway, general manager Western Railway, the chairman Mumbai Port Authority, the chairman

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा
5: सबका राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: वेलकम बैक। यू नो, इफ दिल्ली फील्स लाइक अ लिटिल लेस लाइक द नेशनल कैपिटल दिस मॉर्निंग एंड अ लिटिल मोर लाइक अ कन्वेक्शन ओवन, यू आर नॉट इमेजिनिंग इट। From North India to central regions, temperatures have crossed the 45-degree mark in several areas across the country, with the IMD warning that extreme daytime conditions are likely to persist through this week. And the impact, well, that's visible everywhere. Schools have been shut in several states. Children are struggling through punishing afternoon temperatures. Animals, birds, they are under visible stress. In fact, zoos are deploying air coolers, special hydration measures. Rescue and cooling centers are becoming activated in some regions too. And there's another pressure point we can't ignore, which is electricity demand. India recorded a peak power demand crossing 270 gigawatts on Thursday, which is another reminder that this heat wave is now testing infrastructure, our energy systems, and public health capacity simultaneously. Speaking of the heat wave, afternoons these days have become particularly brutal for people working outside of office. I'm talking about gig workers. They have said they're not provided with any heat-protecting materials. And my colleague Anushka spoke to some gig workers in the national capital about the scorching heat and how they're coping with it. Here's what they told Anushka.
2: It is almost the end of May and the temperature in the national capital is nearing around 45 degrees to 48 degrees Celsius. And in the afternoon, the heat is particularly brutal. Today, NDTV has reached on the ground amongst all the gig workers who are here, and we are trying to talk to them about how they are managing in this particular heat that everybody is right now facing in the capital.
3: बहुत problem है, traffic भी देखना पड़ता है, वहाँ जाके customer भी कई बार गुस्सा करते हैं।
2: बाहर निकलते तो उसके लिए कुछ आपके पास gears या safety gear?
3: ऐसा वो कोई भी safety नहीं।
4: मैम मुश्किल तो है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसकी वजह से मुश्किल तो बहुत है। तो दिक्कत जगह तो कट जाते हैं और उसके बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगते हैं।
2: देख कितना मुश्किल होता है बिना किसी हीट यू नो प्रोटेक्टेंट के आप लोग इस तरीके से बाहर में घूमते रहते हैं।
4: बहुत मुश्किल होता है, धूप भी बहुत तेज़ होती है, फिर भी हम लोग डिलीवर करते हैं और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है, इन सब चीज़ों को देख करके फिर भी काम करते हैं हम लोग।
2: कोई सुविधा मिलती है जैसे ग्लूकोज वगैरह?
4: नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलती है। नहीं, कंपनी एक नया ऑफर निकाल रखा है, मतलब तेरे ऑर्डर पे 325 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो भी मतलब 4 घंटे में लगाना होता है तेरे ऑर्डर, तो वो भी तेरे ऑर्डर लग नहीं पाते 4 घंटे में।
2: चलिए सुबह के टाइम तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर लेते हैं, दोपहर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
5: मेरी स्किन देखो कैसे जल गई है, ये देखो भाई की, ये भी ऑर्डर मारता है दोपहर में, देखो स्किन कैसे जल गई है, कमजोरी भी आ रही है शरीर में ऑर्डर मारने से। ये ग्लूकोज वगैरह का भी इंतजाम नहीं कर रहे, हफ्ते में 1-2 दिन करते हैं बस।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आर प्योर मसाला।
10: फुल ऑफ दीस पीपल,
11: कोलकाता ट्रैफिक,
12: हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स,
13: तमिलनाडु वोट्स डिसाइसिव,
14: अपना तमिल का माहौल है, उदयपुर पथराव किया गया है।
15: आई हैव ऑलवेज लाइक्ड एनडीटीवी, इट्स द मोस्ट रिलायबल न्यूज चैनल मोर देन एनीथिंग।
16: टीवी के हेडक्वार्टर्स हियर,
17: लॉट ऑफ थैंक्स फॉर एनडीटीवी, कांग्रेचुलेशन टू एनडीटीवी।
18: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
19: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
20: So I really love the channel. I saw Shiv sir, and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
21: Happy meeting NDTV team here.
22: Thanks for NDTV.
23: Padmija Joshi,
24: Shreyashi Dev,
25: this is Shreya Ghosh,
26: Rakhandeep Chaudhary,
27: Manoj Yalowiwal,
28: Deepak Bopanav,
29: this is Victor,
30: Tanushka Datta,
31: Sam Daniel,
32: Vika Ramaswamy,
33: Ritu Rajpurohit,
34: Shiv Arul.
35: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
0: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,

0: about the integrity of that child, about the legitimacy of that child, about the character that my sister had. How can anyone, even after wanting to, can continue with that? How can she bring a child to such a suffocating home? Even if she wanted it. And what say that this woman has in it? I do not understand it. Very regressive thinking.
1: What would you say tonight to Giribala Singh, Harshit? What would you say to her after all that she has said?
0: You've been part of the judicial system. You've been a judge yourself. You've passed judgments on people's trials. How can you be so backward thinking, regressive, torturous chameleon that you are claiming yourself not to be? I want to ask, if you are following the system, why is your son absconding?
2: All right, digital evidence in this entire case has also taken center stage. There's been a lot of scrutiny about the messages as well as the CCTV footage you're now seeing. We're now joined on the phone line by Vinod Vani. In fact, he's joining us live. Vinod Vani, who runs the CCTV that was there in place in the Giribala Singh's home, in the Bhopal home where Twisha lived. Thank you so much for speaking to us, Vinod ji. Sabse pehle aap bataiye, aapko phone kab aaya tha aur kya poocha gaya tha jab ye Twisha ke marne ke baad, kisne phone kiya tha aapko?
3: Pehle namaste madam, mere ko to malum nahi tha unke yahan kya hua hai. पर मुझे मैं सुबह 9 बजे पूजा कर रहा था तब मेरे पास फोन आया कि उनके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया है तो सीसीटीवी फुटेज निकाल के देने पुलिस वालों को. तो मैंने बोला मेरा 11 बजे ऑफिस खुलेगा तो मैं किसी टेक्नीशियन को भेज देता हूँ. फिर उनका फोन आया मेरे पास 11 बजे, अभी तक कोई आया नहीं. तो मैंने बोला मैंने रोहित को निकाल दिया है, वो आपके यहाँ आ जाएगा. फिर मैंने रोहित का नंबर भी उनको दिया कि ये टेक्नीशियन आपके यहाँ आ रहा है सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए. तो जब रोहित वहां गया तो उसने मुझे बताया वहां बहुत सारे पुलिस वाले थे उनके घर में और काफी लोग अधिकारी भी बैठे हुए थे उनके सामने. उसने 3 घंटे का फुटेज निकाल के उनको दे दिया है.
2: और ये फोन किसका आया था, पुलिस का आया था या घर वालों का आया था, गिरिबाला सिंह का आया था?
3: मेरे पास सुबह फोन आया था गिरिबाला सिंह जी का 9:05 के आसपास.
2: और पुलिस का नहीं आया था उस समय के बीच में?
3: ये सुबह सुबह 9 बजे मैं पूजा कर रहा था तब आया था कि भैया हमारे घर में एक्सीडेंट हो गया है, उसके सीसीटीवी फुटेज निकालने हैं.
2: तो अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है इस पे सब गौर कर रहे हैं, जिस तरह से वो बॉडी, वो सबसे पहले तो त्विशा शर्मा ऊपर जाती है, वो किस समय ऊपर गई, उसके बाद जो लोग ऊपर से उसको नीचे लाए हैं वो किस समय हुआ, और इसमें भी कुछ अंतर आ रहा है जो डेट और टाइम, इसके बारे में क्या बता सकते?
3: हाँ, वो मेरी टेक्नीशियन से बात हुई थी, 2 दिन 2 घंटे 20 मिनट का डिफरेंस है.
2: तो ये कैसे?
3: ये एक्चुअली क्या होता है, सीसीटीवी को समय पे अगर रिपेयर कराते रहे तो उसमें दिक्कत नहीं आती. ये 2.5 साल से इन्हें रिपेयर नहीं कराया है, तो इसमें सीएमएस बैटरी होती है वो चेंज होनी होती है.
2: ठीक है, आपका कहना है कि आपकी
3: रिकॉर्डिंग पूरी है, रिकॉर्डिंग पूरी है और हार्ड डिस्क फुल भरी हुई है. जो पुलिस को हैंड ओवर किया हुआ है उसमें सारे फुटेज है.
2: ऑलराइट, आपका कहना है आपके टेक्नीशियन वहां गया अगले दिन, गया 11 बजे और फिर 3 घंटे का सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्होंने पुलिस को दे दिया. अब ये फुटेज जो है लीक,
3: हार्ड डिस्क वगैरह सब उन्हीं के पास है, पुलिस के पास ही है वो.
2: ऑलराइट, और ये सीसीटीवी फुटेज अब लीक भी हो गई, ये किस कहां पर लीक हुई है? क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस
3: तो क्वेश्चन उठ रहे हैं जो पुलिस का जो निकाल के उन्हीं को दे दिया है.
2: जी बोलिए.
3: हाँ, ये हमें नहीं मालूम मैडम, हम तो वहां जब गए तो पुलिस वाले थे, उन्हीं को निकाल के दे दिया, डीवीआर भी उन्हीं के पास है.
2: क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब पब्लिक के सामने कैसे आया, मीडिया के पास भी सारी सीसीटीवी फुटेज है, तो लीक कहां से हुआ? आपका कहना आपके टेक्नीशियन ने सीधे,
3: हाँ हमारे बंदा जो गया था उसने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया.
2: ऑलराइट, ऑल्सो घर में सीसीटीवी हैं कितने लगाए गए थे? आपका कहना है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी.
3: मैंने 2023 में, जनवरी 2023 में इनके 8 कैमरे का सेटअप लगाया था मैम.
2: 8 कैमरे का कहाँ कहाँ पर?
3: वो तो मैं तो नहीं गया था, मेरे टेक्नीशियन जाते हैं वहां पे, तो 2023 अच्छा। में जो लड़का गया था उसने 8 कैमरे का सेटअप लगाया था उनके यहाँ।
2: तो अभी तो हम हमारे सामने ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक जगह की है, जो सीढ़ी है वहां की है,
3: पर पुलिस वालों को पूरे 8 कैमरे का बैकअप दिया हुआ है और पूरी DVR वगैरह सब पुलिस वाले लेके गए हैं।
2: ऑलराइट, और पुलिस के आपसे क्या बात हुई पुलिस वालों की?
3: पुलिस वालों ने नहीं बात करी, वही वही तो उसी दिन हुई कि भैया ये हमें सही चाहिए, उनको दे दिया हमने और फिर वो लेके चले गए।
2: Alright, so questions over, you know, the police probe has also been taking place. Vinod ji, फिर से हमारे viewers के लिए अगर आप बता सकते हैं आपको किस समय फोन आया, गिरीबाला सिंह ने आपको फोन किया था और अगले सुबह जो आपने अपने टेक्नीशियन को फिर भेजा तब ये सारा वीडियो मतलब दिया गया था पुलिस को।
3: मेरे पास सुबह 9 बजे फोन आया था, मैं जब पूजा कर रहा था 9 बजे के आसपास, तो मैंने उनसे बोला भाई मैडम अभी तो नहीं भेज पाऊंगा।
2: फोन आया
3: मैंने बोला था तुरंत भेज दो, तो मैंने बोला अभी तो नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, मैं ऑफिस खोलता हूँ 11 बजे, उसके बाद ही भेज पाऊंगा
2: जी। और फिर
3: उनका 11 के आसपास सिर्फ फोन आया था कि अभी तक भेजा नहीं, तो मैंने बोला लड़का निकल गया है, फिर मैंने रोहित का नंबर भी उन्हें दे दिया कि ये लड़का आपके यहाँ आ रहा है
2: जी। और आगे बताइए, फिर उसने जाके फिर वो क्या क्या बताया आपको?
3: फिर मेरे को रोहित का ही फोन आया था कि बोले भैया यहाँ चोरी का केस नहीं है, कुछ और एक केस है, तो मैंने बोला जो भी है उनको फुटेज निकाल के दे दो तुमको।
2: और पुलिस ने आपसे डायरेक्टली कोई बात नहीं करी?
3: वहाँ सारे पुलिस वाले थे, मेरे लड़के से पुलिस वालों ने ही फुटेज निकलवाया और पुलिस वालों को ही हैंड ओवर किया वो सारी चीज
2: जी। और ये जो डिस्क्रेपेंसी है टाइम का डेट का, इसके बारे में पुलिस ने कुछ प्रश्न नहीं किए?
3: नहीं, पुलिस को ऑलरेडी मालूम है कि ये कई जगह पे ऐसा आता है जहाँ सर्विस नहीं होता है, CMOs चेंज नहीं होती है, तो टाइमिंग का इशू आता है
2: जी। और अब ये जो वीडियो है इस पे बहुत फोकस हो रहा है, ये एविडेंस है पूरे पूरे केस में अभी, और पुलिस ने आपसे इसके बारे में और कुछ बातचीत नहीं करी? आपको क्या कोर्ट में जाना होगा, कुछ इसके आगे कुछ बता सकते हैं?
3: नहीं करी इस बारे में अभी किसी ने कोई बात नहीं करी मैडम।
2: All right, और घर में 8 CCTV लगे हुए हैं
3: जी मैम।
2: All right, well, thank you so much.
3: 2023 में हमने जनरल लगाए थे
2: जी। All right, well, thank you so much. That is Vinod ji, who is the owner of the CCTV company who had actually put these CCTVs. 8, he's telling us, in the home of Giribala Singh in 2023. He says he got a call at 9 in the morning. This is the day after Twisha was found dead, in which he was asked to send a technician saying something had happened. His technician only got there at around 11 o'clock, found that the police was there and that they have handed over the footage, around 3 hours worth of footage, as well as the hard disk to the police now. This is the video of one of those CCTVs that you can see on your screens there. There is a discrepancy in the time and date as well, and this is something that has been talked about. However, as Vinod Ji was telling us there, that this, the reason for this is because the maintenance of the CCTV was not done, and he says the police have not been in touch with him. He only spoke to Giribala Singh, who had asked him to send a technician there, and after that the entire footage has been handed over to the police. How did this footage leak out? Remember, it's been viral on social media. Of course, it's been accessed by all media channels as well, and so questions over where this footage actually leaked out from. How is it there in the public's eye? So from advocate to accused, let's now take a look at just who is Samarth Singh, Twisha's husband, the person that she met on a dating app and then went on to marry. They were married for 5 months, after which she tragically died. So Twisha's husband, he's currently absconding. He's an independent litigator and legal advisor there in Bhopal. He's been practicing law since September 2018, and the courts that he practiced in are Bhopal, Jabalpur and Indore. He specializes in the criminal defense and service law, consumer protection as well. So interesting that he has experience in criminal defense. If we talk about his education and career, he did his LLB at NLSIU in Bengaluru. Also, he was at the Erasmus Mundus Exchange at Ghent University. He was also a former legal advisor, government of Madhya Pradesh.

0: बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया, उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है।
1: तिथे जे कोण अजितदादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
2: हर जगह भाजपा करना चाहती है, आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
3: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो? ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
4: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
5: All right, so big controversy over that demolition drive. With that, we'll slip into a short break. On the other side, we'll tell you about how North India is reeling from a heat wave. More on that.

0: In Karnataka, BJP MLA Janardhan Reddy bats for students to respond with Jai Shri Ram instead of Yes Sir during attendance in classrooms. We bring you details on the pelting that took place during the Mumbai demolition drive to clear 600 crore railway land. More arrests in the case, the latest here on NDTV. And large swaths of the country reeling from a punishing heat wave, temperatures breaching the 45 degree mark in several parts. We bring you ground reports from the worst impacted areas.
1: Presented by Canara Bank. Together we can.
0: Ten days since Thwisha was found dead, and now revelations have been made in the case. Thwisha family alleges that Giribala Singh attempted to influence the probe after Thwisha's death, and she allegedly made more than 46 calls within hours to be precise of the incident taking place, including calls to people linked to the police, the administration and judicial services. They also wrote a letter to the Chief Minister demanding that immediate removal of the former judge. Giribala Singh takes place from her current post and position. Meanwhile, her husband, Thwisha's husband, Samart Singh, continues to evade the police and is absconding. Day 10, he is on the run. His anticipatory bail plea hearing is to take place in the Jabalpur High Court at about 2:30 p.m. today. This after the lower court has rejected his anticipatory bail plea about 4 days back. They had stated that Thwisha had died under mysterious circumstances and went ahead and rejected the anticipatory bail plea. Not just that, you also have Giribala Singh, Thwisha's mother-in-law, who has moved the court after WhatsApp chats of Thwisha and an audio clip of her have gone viral.
2: कंडोलेंस तो देंगे ना, इतनी दुखद घटना सुनेंगे, और जो इतने प्रेम से उन्होंने हम लोगों ने सबने मिलके बहू का स्वागत किया था, ठीक है। आपने उस दिन भी देखा, मैं ऑफिस भी जा रही थी, पुलिस को मेरे बयान लेने थे, भाई पत्रकार ले रहे तो आप लोग वो तो ले ही सकते हैं ना। दे हैव नॉट बॉदर टू टेक माई स्टेटमेंट, दे डिडंट बॉदर टू कलेक्ट द सीसीटीवी, आई एम वी आर गिविंग देम डॉक्यूमेंट्स।
3: तो ये जो फोन कॉल्स हुए, आपसे बातचीत हुए, ये सिर्फ आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए?
2: मुझे तो इतना है, बिकॉज माई आई मीन इट्स अ कंप्लीट ब्रेन फॉग। इसके अलावा तो क्या हो सकता है भाई, वट कैन दे डू नो इफ दे कुड इन्फ्लुएंस द पुलिस। आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरी गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है, वो ऐसा मेरे घर के अंदर घुस के चुपचाप से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये आईटी एक्ट का भी उल्लंघन है विदाउट माय नोटिस, ठीक है। तो और वो डॉक्टर्ड वीडियोस हैं, डॉक्टर्स और डॉक्टर्ड ऑडियोस हैं, उन्होंने कुछ भी अपना कॉन्वर्सेशन कुछ तो भी।
4: त्रिशा शर्मा के सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर उसके परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, आज उस पर ही सुनवाई होनी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल एम्स की मॉर्चुरी के बाहर। इसी मॉर्चुरी में 12 मई से त्रिशा का शव रखा गया है। बॉडी डीकम्पोज ना हो और सेशन कोर्ट के फैसले के बाद उसे -4 डिग्री टेम्परेचर पर शिफ्ट किया गया है। त्रिशा के परिजनों का आरोप है कि त्रिशा ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है, और उन्होंने भोपाल एम्स की रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। परिजन लगातार पिछले 11 दिन से यही मांग कर रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन उसके साथ ही त्रिशा का सेकंड पोस्टमार्टम किए जाने की अनुमति कोर्ट दे, जिसके बाद अब कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, क्योंकि सेशन कोर्ट से उनकी इस मांग को, इस याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद परिजन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट यानी जबलपुर पहुंचे हैं। सेकंड पोस्टमार्टम की जो याचिका उन्होंने दायर की है, उस पर सुनवाई होनी है। परिजनों का कहना है कि उन्हें भोपाल एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, त्रिशा की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं की है उसने, उसका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। भोपाल एम्स ने पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट दी है वो गलत रिपोर्ट है, और इसी रिपोर्ट को उन्होंने चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में अब अपील की है कि सेकंड पोस्टमार्टम की जो अनुमति वो दी जाए। देखना होगा कि क्या हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला देगा।
0: All right, so what are the allegations that continue to be made by Thwisha's family? Who did the mother-in-law call? According to Thwisha's family, they claim 46 calls were made post Thwisha's death, And some of those calls, according to them, were made to the Lokayukta officials, the magistrates, as well as police representatives. CCTV technicians also were called, and we have an interview with one of those technicians, which we will bring to you later on the show. Call details, the WhatsApp chats are now under scanner. We will get to know in due course of time who the calls were made to, why. Perhaps that will take longer, given that you have Giribala Singh stating that she hasn't influenced this probe in any way. Anurag Dwari now joining me live from outside Giribala's residence. Anurag, you have the mother-in-law of Thwisha claiming that there has been no influence on her part when it comes to the investigations. Just take us through the latest. We do know also that there's been a third request to the mother-in-law to record her statement, which hasn't happened yet. What happens if she refuses to record a statement? She says she hasn't received any communication on this.
5: Yes, the SIT has already sent him a notice yesterday, about recording her statements. We are just standing outside her house. This is HIG 311, Bagh Mughalia Extension in Katara Hills, and she's discussing the matter with her lawyers. And, hearing will be held on the following matters today in the Jabalpur High Court. First hearing on the plea challenging the rejection of Giribala's bail application. Advocate General Prashant Singh and Solicitor General Tushar Mehta will appear before K. Ravindran's courts. In the second case, Tushar's family has filed a petition opposing Samarth Singh's anticipatory bail. Samarth Singh moved the High Court seeking anticipatory bail after his plea was rejected by the lower court. And in the third case, an application seeking a second postmortem at Thwisha has been filed in Justice Bhatti's court. The matter is likely to come up for hearing at around 1 o'clock in Justice

0: is what the police is now offering when it comes to any details on Samarth Singh. But where does the probe stand when it comes to searching for the man, the husband, who has been absconding for over 10 days now?
1: Yes, you must have heard the police commissioner 3 days back when I spoke to him. He said that 6 teams are already, you know, on the they're hunting Samarth Singh, but the FIR was lodged after 2 days, and after good 5 days, Samarth was here only. He filed an anticipatory bail plea. That application was rejected by a court here in Bhopal, and after that, the police announced a reward of 10,000 rupees, which was increased to 30,000 rupees. And now Samarth Singh has filed an anticipatory bail plea application at the Jabalpur High Court, and that plea is likely to come up at around 2:30 p.m. But the state government has already made it clear that they will oppose his anticipatory bail plea application. The local court here in Bhopal has already rejected that bail plea.
0: All right, thanks for joining me live there, Anurag. We'll keep coming back to you for more. The Tushar death case is now raising even more serious and deep questions. Investigators are now closely examining the CCTV timeline, possible gaps in footage, and what happened on the night when Tushar died. Who had access to the surveillance system after the incident? Tushar's mother-in-law, Garibala Singh, allegedly contacted the CCTV technician soon after Tushar's death. Sources say Garibala called both the CCTV technician and the owner of the CCTV firm handling the system to her residence. NDTV also spoke with the technician and the firm owner, whom Garibala Singh had called to her residence after Tushar's death.
2: तो अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है, इस पे सब गौर कर रहे हैं. जिस तरह से वो सबसे पहले तो त्विशा शर्मा ऊपर जाती है, वो किस समय ऊपर गई, उसके बाद जो लोग ऊपर से उसको नीचे लाए हैं वो किस समय हुआ, और इसमें भी कुछ अंतर आ रहा है जो डेट और टाइम, इसके बारे में क्या बता सकते?
3: हाँ, वो मेरी टेक्निशियन से बात हुई थी. 2 दिन 2 घंटे 20 मिनट का डिफरेंस है.
2: तो ये कैसे?
3: ये एक्चुअली क्या होता है, सीसीटीवी को समय पे अगर रिपेयर कराते रहे तो उसमें दिक्कत नहीं आती. ये 2.5 साल से इन्हें रिपेयर नहीं कराया है, तो इसमें सीएमएस बैटरी होती है, वो चेंज होनी होती है.
2: ठीक है, आपका कहना है कि आपकी
3: रिकॉर्डिंग पूरी है, रिकॉर्डिंग पूरी है और हार्ड डिस्क फुल भरी हुई है. जो पुलिस को हैंड ओवर किया हुआ है उसमें सारे फुटेज है.
2: ऑलराइट, आपका कहना है आपके टेक्नीशियन वहां गया अगले दिन, गया 11 बजे, और फिर 3 घंटे का सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्होंने पुलिस को दे दिया. अब ये फुटेज जो है लीक,
3: हार्ड डिस्क वगैरह सब उन्हीं के पास है, पुलिस के पास ही है वो.
2: ऑलराइट, और ये सीसीटीवी फुटेज अब लीक भी हो गई, ये किस कहां पर लीक हुई है? क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस
3: प्रश्न उठ रहे हैं जो पुलिस का जो निकाल के उन्हीं को दे दिया है.
2: जी बोलिए.
3: ये हमें नहीं मालूम मैडम, हम तो वहां जब गए तो पुलिस वाले थे, उन्हीं को निकाल के दे दिया. डीवीआर भी उन्हीं के पास है.
2: क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब पब्लिक के सामने कैसे आया, मीडिया के पास भी सारी सीसीटीवी फुटेज है, तो लीक कहां से हुआ? आपका कहना आपके टेक्नीशियन ने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया था?
3: हाँ, हमारे बंदा जो गया था उसने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया.
2: ऑलराइट, ऑल्सो घर में सीसीटीवी हैं, कितने लगाए गए थे? आपका कहना है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी.
3: मैंने 2023 में, जनवरी 2023 में इनके 8 कैमरे का सेटअप लगाया था. मैम
2: 8 कैमरे का कहां कहां पर?
3: वो तो मैं तो नहीं गया था, मेरे टेक्नीशियन जाते हैं वहां पे. तो 2023 में जो लड़का गया था उसने 8 कैमरे का सेटअप लगाया था उनके यहाँ.
2: तो अभी तो हमारे सामने ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक जगह की है, जो सीढ़ी है वहां की है.
3: पर पुलिस वालों को पूरे 8 कैमरे का बैकअप दिया हुआ है और पूरी डीवीआर वगैरह सब पुलिस वाले लेके गए हैं.
2: ऑलराइट, पुलिस के आपसे क्या बात हुई पुलिस वालों की?
3: पुलिस वालों ने नहीं बात करी, वही तो उसी दिन हुई कि भैया ये हमें सही चाहिए, उनको दे दिया हमने और फिर वो लेके चले गए.
2: Alright, so questions over. You know, the police probe has also been taking place. Vinod ji, फिर से हमारे viewers के लिए अगर आप बता सकते हैं आपको किस समय फोन आया, Garibala Singh ने आपको फोन किया था, और अगले सुबह जो आपने अपने technician को फिर भेजा तब ये सारा video मतलब दिया गया था पुलिस को.
3: मेरे पास सुबह 9 बजे फोन आया था, मैं जब पूजा कर रहा था 9 बजे के आसपास. मैंने उनसे बोला भाई मैडम

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: want to cancel her bail is what Anurag is also bringing to us. Anurag, I'm coming back to you in a moment from now because it's not just the Madhya Pradesh government that's moving the court. Giribala Singh herself has moved the court. This has to do with the clips that have gone viral. Let's just take you through the demands made by Trisha's mother-in-law. The first demand is investigate the viral audio clips. The second demand is investigate the viral WhatsApp chats also that have also spilled over onto social media. The third demand is check the authenticity of the audio clips and trace the original source of the audio and chats and send the phones of Trisha's family members for FSL testing. The sixth demand is preserve all electronic evidence. Those are the demands being made by the former judge, who herself seems to be in the dock, Anurag. When do we expect that hearing to come up when it comes to the former judge and the government seeking the cancellation of her bail, given that the son's bail plea, anticipatory bail plea hearing comes up in about an hour and 15 minutes from now?
1: Yes, so there are three important cases.
0: Yes.
1: The first case is the hearing on the bail plea challenging the rejection of Giribala's bail plea application. Advocate General Prashant Singh will appear before K. Ravindran's court. And in the second case, Trisha's family has filed a petition opposing Samarth Singh's anticipatory bail. Samarth Singh moved the court seeking anticipatory bail after his plea was rejected by the lower court. And the third case, an application seeking a second postmortem of Trisha, has been filed in Justice Bhatti's court. The matter is likely to come up for hearing anytime from now.
0: All right, Anurag, stay with me. A quick update for our viewers here on Breaking Ground. The Bhopal Police Commissioner is about to address a press conference. We will cut live to that. Like I said, there have been a lot of developments on this story. Let's just cut across and see if that press conference has started. Anurag is standing by to bring us more details.
2: This is not a press conference. ये तो
3: रिकॉर्ड होगा
2: ठीक तो आप पूछ
3: बाद में कर लेंगे
2: नहीं ठीक ठीक है ठीक है तो आप लोग पूछिए क्वेश्चन
3: सर सबसे पहला सवाल सर गिरिवाला कह रही कि एक नोटिस दिया आपका दावा है तीन नोटिस दिए वो झूठ बोल रही है क्या
2: नहीं हमने तीन नोटिस दिए हैं और क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आज हमने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लगाया है
3: तो दूसरा सवाल ये है कि सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा हो गई है सरकार ने कर
2: दिया जी वो शासन स्तर का डिसीजन है मध्य प्रदेश शासन ने सीबीआई के लिए लिखा है तो अब इसमें आगे की जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो होना है
4: सर गिरिवाला सिंह के घर का एक सीसीटीवी आया था जिसमें तीन लोग दिखाई दे रहे थे समर्थ सिंह के अलावा क्या उन लोगों से पूछताछ हुई पुलिस ने उनको बुलाया है
2: अभी
4: तक किसी बयान दर्ज हुए हैं
2: वो उसमें बयान हुए हैं उसमें बेसिकली तीन लोगों का जो जिक्र कर रहे हो एक तो उसमें मुख्य आरोपी है समर्थ सिंह दो अन्य दो व्यक्ति भी हैं उन दोनों व्यक्तियों के बयान हुए हैं
4: इसके अलावा सर लगातार परिवार की तरफ से आरोप है कि गिरिवाला सिंह ने घटना के बाद 30 से 35 फोन लगाए हैं अलग अलग लोगों को क्या उन लोगों की आप इंक्वायरी करेंगे पूछताछ करेंगे उन लोगों को बुलाएंगे
2: वो फैमिली मेंबर ने हमें एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें इन बातों का जिक्र है तो उसको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लिया है तो जो भी रेलेवेंट चीज होंगी उन पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा
4: सर थाना प्रभारी के संपर्क में भी थी गिरिवाला सिंह 13 तारीख को उनसे भी फोन पर बातचीत हुई है
2: नहीं वो तो अब वो थाना प्रभारी हैं तो बातचीत हुई होगी
5: सर कुछ और लोगों को कॉल किए गए थे उसमें जो ब्यूटी पार्लर संचालन करती हैं उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी है वहाँ के उस ब्यूटी पार्लर के उन वो सीसीटीवी भी इन्होंने अपने पास लिए तो क्या इनको अधिकार है कि वो सीसीटीवी मांग सके या ले सके
2: नहीं वो तो देखो जो मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रेलेवेंट होगा उन सब चीजों के बारे में हम अपने एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
4: सर जानकारी आ रही कटारी थाना प्रभारी पर 10,000 का जो जुर्माना लगाया है लापरवाही करने पर जांच पड़ताल के दौरान
2: नहीं ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है ऐसी कोई जानकारी अभी तक उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है
3: सर सर

0: सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है, आपकी पुलिसिंग पर भी सवाल उठ रहे थे कि विक्टिम फैमिली जो है सवाल खड़े कर रही थी कि पुलिस ने लेट किया है, एफआईआर में लेट किया, जब किया तो क्या सरकार को भी भोपाल पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए सरकार ने अनुशंसा की सीबीआई जांच की?
1: देखो, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे। इस तरह के केसेस में जांच में समय लगता है, हमने तो 2 दिन के बाद ही एफआईआर कर दी, तो हमने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की है। बाकी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी जो सीबीआई की जांच का विषय है वो शासन स्तर के मामले हैं।
2: सर, अरेस्ट को लेकर क्या प्रोसीजर है? समर सिंह के अरेस्ट को लेकर क्या कुछ
1: लगी थी? वो तो हम लगे हुए हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, हमारी पार्टी लगी हुई है।
0: उनकी की कार्रवाई हो गई
2: है, उसमें प्रॉपर्टी अटैच करने की बात भी कर रहे हैं कि जो है अरेस्ट किया, तो उसके लिए क्या कुछ आगे
1: जो भी आवश्यक कार्रवाई है वैधानिक वो सब की जाएगी।
0: सर, आप मानते हैं सर कुछ गलतियां हुई पुलिस से, कुछ डिले हुआ या कुछ कमियां रही, या परिवार इतना मुखर होकर आपसे सीधे लेटर लिख के सवाल जवाब कर रहे हैं?
1: नहीं, हमने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किया है और हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई डिले नहीं हुआ है।
2: सर, गिरफ्तारी को लेकर पंजीयन का लगातार आरोप है समर सिंह को कि वो बेल एप्लीकेशन लगा रहा है अग्रिम जमानत के लिए, लगातार परिजन के संपर्क में है लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं पुलिस जानबूझ के लापरवाही कर रही ताकि वो अपना बेल अग्रिम जमानत ले ले।
1: नहीं, हम उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और हमने अपना पूरा जोर लगा रखा है।
0: सर, कल रात में आपकी टीम एक सर्चिंग के लिए एक जज के घर गई थी, आशंका थी कि समर्थ वहां हो सकता है, क्या ये सही है?
1: देखो, ये इन्वेस्टिगेशन के विषय होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के हित में इस तरह की डिटेल शेयर करना मैं आवश्यक नहीं समझता।
0: आधे घंटे तक जज के घर का दरवाजा नहीं खुला था?
1: नहीं, जैसा मैंने बताया ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं।
2: सर, तो क्या मध्य प्रदेश पुलिस आपकी ओर से भी पैरेलल जांच अलग चलेगी पूरे मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई जो साधारण?
1: नहीं, वो या जब केस सीबीआई को हैंड ओवर हो जाता है तो फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, लोकल पुलिस नहीं करती।
3: सर, इस पूरे मामले में जो वीरवाला सिंह जी अगर अग्रिम खारिज होती है तो क्या इस पूरे मामले में अरेस्टिंग तुरंत की जाएगी भोपाल पुलिस के द्वारा या आप सीबीआई का वेट करेंगे? अब अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी क्या आप सीबीआई का
1: करेंगे? भोपाल पुलिस कार्रवाई? नहीं, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। बाद में जब केस मान लो सीबीआई को हैंड ओवर होता है तो फिर उनको डायरी सौंपी जाती है। जब तक केस सीबीआई को हैंड ओवर नहीं हो जाता तब तक लोकल पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी।
4: Sanjay Kumar, Bhopal Police Commissioner, there speaking with the media, not yielding much when it comes to the investigations, but defending the police there, stating that the FIR was registered within 2 days and that there is a search party looking out for Samarth Singh, the husband of Twisha, who has been on the run for the last 10 days and says that it's the government's decision if they want a CBI probe into this matter. Anurag, still with me. Anurag, the pressure also building on the Bhopal police. A lot of questions remain unanswered in terms of the investigations. On the very first day when the post-mortem was also being conducted, we had also spoken a couple of days back about the belt going missing. A lot of questions being asked from the top cop as well at this point in the investigations. Anurag, can you unmute?
5: Yes. So starting from the belt, to the discrepancies in the FIR, because remember there was 2 different date of birth written by the police in the FIR, and then secondly the height was also challenged by the lawyers of the family of Twisha Sharma inside the court, because there was something else mentioned during the postmortem, and the original height was something else, and then the time stamp on the CCTV footage was also something different. So there are glaring lapses in the investigation by the police, and they have also mentioned in the FIR that the body was handed over to the family of Twisha Sharma, but the reality, the body is still lying in the mortuary of the AIIMS.
4: Yes, and then you have this press conference that has just taken place, but the developments are also indicating the pressure that is mounting on the former judge and the mother-in-law of Thwisha. There have been a lot of developments that we brought to our viewers. What could this mean for the mother-in-law? There are a lot of cases also in court, a lot of hearings in court over Thwisha's death as well. Just take us through all of that as well, Anurag.
5: Yes, the police has now moved to the High Court for the cancellation, which was mentioned by the top sources in the police department to us day before yesterday only, that they will move to the High Court for the cancellation of the anticipatory bail, which was granted by the local court in Bhopal. So they have already done that. The government has approached the central government saying that they want a CBI investigation into this case, a promise which was made to the parents of Thwisha Sharma by the Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, day before yesterday when they had a meeting at the State Secretariat in Bhopal. So, and the Department of Food and Civil Supplies, they also moved an application, for removing Giribala Singh from the post of President of District Consumer Forum in Bhopal. Remember, she's a retired judge, and after that, she was appointed as the president of the District Consumer Forum in Bhopal. So they are already doing that. But Giribala Singh is also exploring all the legal options with her lawyers, and they're still having a meeting inside her house. In the morning, she made some statements saying that the police is not really interested in the investigation, and so far they have just contacted her once. But in the in their application to the High Court, the police has clearly said that she is not cooperating. They have reached her 4 times, including on 21st also, when her servant said that she's not at home. So there are clearly claims and counterclaims by the police, yes, and by, yes, Giribala Singh.
4: All right, Anurag, stay with me. We have some news coming in. We've just spoken with the family of Thwisha, and we're being told if permission for Thwisha's second post-mortem is not granted by the High Court, her family members will approach the top court of India, the Supreme Court. This is a statement by Thwisha's brother, Major Harshit. He has said, "We have complete faith in the judicial system."
6: Thwisha ke bhai Major Harshit is waqt hamare saath maujood hain. Harshit, CBI jaanch ke liye aap logon ne CM se mulaqat ki thi aur CM ne ab iske liye kendra sarkar ko patra likh diya hai.
7: Ji, so it is a big development in this case. Abhi tak jo aashwasan the wo finally they are coming on paper. So that is one good thing that we have received in the morning, and we are hopeful ki is pe jaldi se jaldi action liya jaye, considering it's a recommendation by the CM of the state.
6: आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, उसके लिए राज्य सरकार ने पत्र लिखा है, और अब आप सेकंड पोस्टमार्टम के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में. आज इस फैसले की सुनवाई है. इस पर हालांकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन अगर ये आपके पक्ष में फैसला नहीं जाता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे या फिर कोई फैसला परिवार मिलकर लेगा?
7: मैम, इट इज़ अ फाइट दैट इज़ ऑन गोइंग मैम, और लड़ाई में अगर उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे पहला जो उतार आया था वो था जब इनको गिरिबाला सिंह की बेल ग्रांट हो चुकी थी. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट कि वो कैसे ग्रांट हुई है, और उसके बाद भी हम लड़ रहे थे. तो अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है, विच आई एम वेरी डाउटफुल ऑफ, एंड वी आर वेरी होपफुल कि शुड गो इन आर फेवर, कंसिडरिंग जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितने हमारे तत्व हैं, वो दे आर ऑन पेपर. इट इज़
4: Going back to Anurag, who's standing by. Anurag, you have the family also stating that they're going to knock the doors of the High Court for a second autopsy. And if that doesn't happen, they'll go to India's top court, the Supreme Court. What are the reasons, just for the benefit of our viewers, if you could recap for them, that they want that second post-mortem to take place? That body has been lying in the mortuary, Thwisha's body, for 10 days now.
5: Yes, there are a few things, including the belt. The police clearly said that they have given the belt the next day, and so far, no bearing on that particular post-mortem because of the belt. But the commissioner has also said that they will investigate this matter separately. They will ask questions from the investigating officer. So one is that. Second, the height, which we have already discussed in the post-mortem, and the actual height of Thwisha. So these were the glaring lapses. And the timing was also not proper as per the CCTV stamp and as per the FIR, which was mentioned there in the FIR. So there are a few glaring lapses. The family is also claiming that you know, there were a few marks on her body, which was not also taken in into consideration. But we spoke to a few forensic experts as well as the police. They have clearly said that, I mean, there are no discrepancies. And the court here also rejected that particular application moved by the family, saying that this is not under their jurisdiction to order second postmortem in some other state, because the family is demanding that the second postmortem should be held at AIIMS in Delhi. But the state government has made a promise to the family, saying that if the court orders, they will provide all the necessary means for transporting the body from Delhi to some other state.
4: Anurag, so let's just very quickly then go through the legal options before the mother-in-law at this point.
5: Now the state government has moved an application for cancelling the anticipatory bail plea application of Giribala Singh. So she has no other option but to fight legally this matter before the High Court.
4: All right, Anurag, thanks for joining us live. Anurag also brought to us some of the details of the affidavit that has been filed with the High Court to cancel Giribala's bail plea. We will bring you all those details and more through our coverage on this very important story. And NDTV has also exclusively spoken to Twisha's friends, who claimed that Samarth Singh, who is the husband of Twisha, would humiliate Twisha publicly. Listen in to that conversation.
8: कहीं ना कहीं उनके पीछे डिस्प्यूट चल रहे थे, जो बच्चे को लेके बात थी, तो उनकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी, तो उसमें भी वो लोग उस पर बहुत टॉर्चर करते थे और ये बोलते थे कि ये किसका बच्चा लेके डोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ऐसे में कैसे कोई भी मदर ऐसे बच्चे को क्यों लेके जाएगी जिसमें इतने एलिगेशन हैं कि किसी और का बच्चा क्या है. तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसने अवॉर्ड कराया और वो उसे कैरी नहीं करना चाहती थी.
9: आई हर्ड दैट कि समर्थ अपने फ्रेंड सर्कल में तुषा को ह्यूमिलिएट करता था, दैट इसको कुछ नहीं पता है. सीज गवार क्या पढ़ी, क्या MBA है, क्या पढ़ी लिखी है,
10: उन पब्लिकली इंसल्ट ह्यूमिलिएट
9: इंसल्ट करते थे अपने फ्रेंड सर्कल के रिलेटिव्स के बीच में. इस तरीके की बातें करना, हर हमेशा उसके बारे में बुरा बोलना सबको कि ये इसको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कुछ नहीं कर रही हैं. सो ग्रेजुअली ये चीज़ बिल्डअप होने लगता है. एंड उसके बाद मुझे लग रहा
10: है क्यों गया, वो तो मिस पुणे रह चुकी है.
9: एग्जैक्टली,
10: शी वॉज अ आई मीन वेल एजुकेटेड, जॉब भी कर रही थी, वो वेल टू डू, फैमिली से भी थी.
9: एग्जैक्टली वही तो प्रश्न है ना, कि आप जब शादी में रिलेशनशिप में जाते हो, एक तरफ आपने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया कि आई विल मेक हर फील कम्फर्टेबल इन माई हाउस. अगर आप वीडियोज़ देखेंगे समर्थ के शादी के, ही टॉक लाइक दिस. एट द सेम टाइम शुरुआत से ही आपने उसे डिप्रेशन में डाल दिया.
11: उनकी प्रॉपर वीडियोज़ है शादी में, जैसे जहाँ पे उसने बोला कि वो दूसरी सिटी में जा रही है और मैं इसका ध्यान रखूँगा. मतलब अब लग रहा है कि यस ये फेक प्रोमिसज थे. इससे तो ये पता चल रहा है कि वो उसका ध्यान ही नहीं रख पाए उसका.
10: ऐसी भी कोई गिरबाला कह रही थी कि आप लोगों ने ही कैम मना कर दिया आने के लिए, कैंसिल करवा दिया टिकट एंड ऑल.
8: उसके पेरेंट्स 13 को जाने वाले थे, उनकी टिकट्स थी, लेकिन गिरिवाला सिंह जी ने ये बोला कि अगर आप इसे आएंगे और ले जाएंगे तो आज के बाद ये दरवाजे बंद हो जाएंगे.
10: ये उन्हीं ने बोला
8: था. एज ए पेरेंट्स अगर आपको उसके आपकी बेटी के इन लॉज बोलते हैं कि आप आओगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि वो घर उसका बर्बाद हो जाए.
4: Now the Twisha death case is raising even more serious questions. Investigations are closely examining the CCTV timeline, possible gaps in footage, and who had access to the surveillance system after the incident. Twisha's mother-in-law, Ms. Singh, allegedly contacted CCTV technicians soon after Twisha's death. Sources say Giribala called both the CCTV technician and the owner of the firm of the CCTV handling the system at her residence. We've spoken to both of them. Listen in.
12: तो अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है इस पर सब गौर कर रहे हैं, जिस तरह से वो बॉडी वो सबसे पहले तो त्विशा शर्मा ऊपर जाती है, वो किस समय ऊपर गई, उसके बाद जो लोग ऊपर से उसको नीचे लाए हैं वो किस समय हुआ, और इसमें भी कुछ अंतर आ रहा है जो डेट और टाइम, इसके बारे में क्या बता सकते
13: हैं? वो मेरी टेक्नीशियन से बात हुई थी, 2 दिन 2 घंटे 20 मिनट का डिफरेंस है.
12: तो ये कैसे?
13: ये एक्चुअली क्या होता है, सीसीटीवी को समय पे अगर रिपेयर कराते रहे तो उसमें दिक्कत नहीं आती. ये 2.5 साल से इन्हें रिपेयर नहीं कराया है, तो इसमें CMOS बैटरी होती है वो चेंज होनी होती है.
12: ठीक है, आपका कहना है कि आपकी
13: रिकॉर्डिंग पूरी है और हार्ड डिस्क फुल भरी हुई है. जो पुलिस को हैंड ओवर किया हुआ है उसमें सारे फुटेज है.
12: ऑलराइट, आपका कहना है आपके टेक्नीशियन वहां गया अगले दिन, गया 11 बजे, और फिर तीन घंटे का सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्होंने पुलिस को दे दिया। अब ये फुटेज जो है लीक,
13: हार्ड डिस्क वगैरह सब उन्हीं के पास है, पुलिस के पास ही है वो।
12: ऑल राइट, और ये सीसीटीवी फुटेज अब लीक भी हो गई, ये किस कहां पर लीक हुई है? क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस
13: प्रश्न उठ रहे हैं पुलिस का जो निकाल के उन्हीं को दे दिया है।
12: जी बोलिए विनोद।

0: ये हमें नहीं मालूम मैडम, हम तो वहां जब गए तो पुलिस वाले थे, उन्हीं को निकाल के दे दिया, डीवीआर भी उन्हीं के पास है।
1: क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब पब्लिक के सामने कैसे आया, मीडिया के पास भी सारी सीसीटीवी फुटेज है, तो लीक कहां से हुआ? आपका कहना आपके टेक्नीशियन ने सीधे पुलिस को हैंडओवर किया था।
0: हाँ, हमारे बंदा जो गया था उसने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया है।
1: ऑलराइट, ऑल्सो घर में सीसीटीवी हैं कितने कितने लगाए गए थे? आपका कहना है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी।
0: मैंने 2023 में, जनवरी 2023 में इनके 8 कैमरे का सेटअप लगाया था मैम,
1: 8 कैमरे का कहां कहां पर?
0: वो तो मैं तो नहीं गया था, मेरे टेक्नीशियन जाते हैं वहां पे। तो
1: अच्छा,
0: 2023 में जो लड़का गया था उसने 8 कैमरे का सेटअप लगाया था उनके यहाँ।
1: तो अभी तो हमारे सामने ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक जगह की है, जो सीढ़ी है वहां की है।
0: पर पुलिस वालों को पूरे 8 कैमरे का बैकअप दिया हुआ है और पूरी डीवीआर वगैरह सब पुलिस वाले लेके गए।
2: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। रोहित से बात हो रही है?
3: जी सर, रोहित बात हो रही।
2: रोहित जी, आप लोग सीसीटीवी भी लगाते हैं ना?
3: जी
2: मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो कटारा हिल्स में गिरिवाला जी हैं, उनके घर में आप ही लोगों ने सीसीटीवी लगाया ना? जी
3: जी जी हमने लगाया है। बिल्कुल
2: अच्छा, तो 13 तारीख को उन्होंने कुछ शाम को आपको 4 बजे के आसपास फोन किया था। हेलो,
3: जी,
2: हाँ, तो क्या पूछ रही थी वो उस दिन?
3: वो पुलिस प्रशासन आया हुआ था तो उन्होंने फोन लगवाया था कि वो आपके सीसीटीवी टेक्नीशियन खुलवा लीजिए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग निकालना है।
2: अच्छा, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग निकालने के लिए उन्होंने फोन किया था आपको, और कोई वजह नहीं थी?
3: जी, और कोई वजह नहीं।
2: कभी उन्होंने आपसे कुछ कहा कि उसकी टाइमिंग वाइमिंग चेंज हो गई है या कुछ खराब हो रहा है उसमें?
3: नहीं, जब 2023 में लगा हुआ था इसके बाद उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं रहता था और कभी
2: अच्छा
3: सर्विस भी नहीं हुई उनकी।
2: अच्छा कभी सर्विस नहीं हुई, क्योंकि उसमें टाइम वाइम भी अलग आ रहा है ना, वो
3: हाँ
2: डेट टाइम अलग आ रहा है, तो वो
3: जी,
2: सर्विस नहीं हुई इस वजह से अलग
3: हाँ
2: आ रहा है आप कह
3: बिल्कुल
2: रहे हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: अच्छा, तो उस दिन सिर्फ आपको इसीलिए बुलाया था कि पुलिस प्रशासन आया तो कुछ फुटेज निकाल के देना है।
3: जी।
2: और आपको कुछ पता है क्या इस पूरे केस के बारे में कुछ? और इसके बाद कभी उन्होंने फोन किया क्या आपको 13 तारीख के बाद?
3: जी, थोड़ा सा किया था कि हमारा डीवीआर पुलिस वाले ले गए हैं,
2: हाँ
3: तो
2: हाँ
3: पुलिस वाले ले गए थे कहीं,
2: हाँ
3: तो
2: हाँ
3: हमारे पास थोड़ा सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा हमारा कुछ करिए। तो नया डीवीआर लगाया था दो
2: अच्छा, नया
3: दिन बाद।
2: डीवीआर लगा था। ओके, और पुराने डीवीआर में कोई छेड़छाड़ या कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई थी ना?
3: नहीं, सर कोई छेड़खानी नहीं हुई सर।
2: अच्छा ठीक है, आप और विनोद वाणी जी गए थे वहां पर?
3: नहीं, मैं अकेला गया था, विनोद वाणी जी मेरे ओनर है बस।
2: अच्छा, ठीक है ना।
4: In news from Mumbai now, the city witnessed one of its biggest anti-encroachment operations as Western Railways launched a demolition drive near Bandra Station to reclaim railway land worth nearly 600 crore rupees, triggering protests and violence. At least 19 people have been arrested for rioting, for stone pelting during the demolition drive in Bandra East, which is a suburban area of Mumbai. All the arrested have been sent to police custody till the 26th of May. The Mumbai police claims the stone pelting incident was pre-planned and that stones and cement blocks were arranged for in advance. Social media reels spreading misinformation are also under the scanner of the Mumbai police. The demolition drive has sparked a political showdown, with the opposition questioning the manner in which the action was carried out in Bandra East.
5: Bandra पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया, उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है।
6: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते, याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण, हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
7: हर जगह भाजपा करना चाहती है, आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
8: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो। ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
9: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
10: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है? जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था, तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है? ये पथरावबाजी जब हुई है, जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है, जो तोम बोला जाता है, उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई, दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी। जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना, ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया।
4: Moving away from the political heat to the heat on the ground, a scorching heat wave is sweeping across parts of India with maximum temperatures crossing the 45 degree mark as well in several regions of the country. Citizens are struggling to stay hydrated as fears of heat strokes now mount. The soaring temperature is also taking a toll not only on people but also on animals and birds. Hospitals nationwide have opened cooling centers distributing ORS solutions to help residents cope with the rising heat. Several states have ordered school closures while zoos are installing air coolers to protect animals. Authorities have also set up rescue and cooling centers to provide relief during this relentless heat wave.
11: Quick tips for all our viewers who are working outdoors.
12: So a simple precautionary measures such as covering yourself up in cotton clothes with high porosity, light colored clothes, and more importantly, giving yourself, for those of our countrymen who cannot avoid going outside in the inclement weather, taking shade breaks and fluid breaks at regular interval, meaning thereby, after 1 hour or 45 minutes of work, a person, whether he or she is tired or not, must make it a point to take sit and rest for some time, 10-15 minutes in a shaded area, either under a tree or under the shadow of a tall building, preferably still in front of a cooler, and followed by fluid breaks.
4: Afternoons have become particularly brutal for people working outside of office. Gig workers have said they're not provided with any heat protecting materials. My colleague Anushka spoke to gig workers in the national capital to get a sense of what they endure on such hot and scorching days.
13: It is almost the end of May and the temperature in the national capital is nearing around 45 degree to 48 degrees Celsius, and in the afternoon the heat is particularly brutal. Today NDTV has reached on the ground amongst all the gig workers who are here, and we are trying to talk to them about how they are managing in this particular heat that everybody is right now facing in the capital.
14: Bahut problem hai, traffic bhi dekhna padta hai, wahan jaake customer bhi kai baar gussa karte hain.
13: Bahar nikalte to uske liye kuch aapke paas gears hai, safety gear?
14: Aisa koi safety nahi.
15: Main mushkil to hai kyunki abhi garmi bahut zyada pad raha hai, iski wajah se mushkil to bahut hai. तो दिक्कत जगह तो कट जाते हैं और उसके बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगते हैं.
13: देख कितना मुश्किल होता है बिना किसी हीट यू नो प्रोटेक्टेंट के आप लोग इस तरीके से बाहर में घूमते रहते हैं.
15: बहुत मुश्किल होता है, धूप भी बहुत तेज़ होती है, फिर भी हम लोग डिलीवर करते हैं और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है, इन सब चीज़ों को देख करके फिर भी काम करते हैं हम लोग.
13: कोई सुविधा मिलती है जैसे ग्लूकोज वगैरह?
15: नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलती है. नहीं, कंपनी एक नया ऑफर निकाल रखा है, मतलब तेरे ऑर्डर पे 325 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो भी मतलब 4 घंटे में लगाना होता है तेरे ऑर्डर, तो वो भी तेरे ऑर्डर लग नहीं पाते 4 घंटे में.
13: चलिए सुबह के टाइम तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर लेते हैं, दोपहर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है.
16: मेरी स्किन देखो कैसे चले गई है, ये देखो भाई की, ये भी ऑर्डर मारता है दोपहर में, देखो स्किन कैसे चली गई है, कमजोरी भी आ रही है शरीर में ऑर्डर मारने से. ये ग्लूकोज वगैरह का भी इंतजाम नहीं कर रहे, हफ्ते में 1-2 दिन करते हैं बस.
4: The Delhi government, under its Heat Wave Action Plan 2026, has also set up multiple cooling zones across the city to provide shaded relief.

0: पहली बात में तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक क्या सुबह से भी आने पड़ता है काम करने के लिए।
1: आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस कर देना चाहिए?
2: हाँ, मेरे नज़र में तो कर देना चाहिए। और ये जो हमें एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है वो भी अभी बंद करना चाहिए। अभी इतनी गर्मी है ना 26 में।
3: And I'm going to show you what the Delhi government has done to protect its citizens who are working outdoors in this extreme heat. They have set up this one lone cooling zone here outside the iconic Red Fort. You can see water coolers, ORS, first aid, everything is provided. Anyone who wants some respite from the heat can come here. Itna ye help kar rahe logon ko
4: yahan pe pani ki help hai, cooler ki help hai, pankhe ki help hai, kursiyan hain, बैठने की सुविधा सारी कुछ अच्छी तरीके से दे रखी है।
3: भैया एक चीज़ बताइए आप हमें, ये जो कूलिंग जोन सरकार ने बनाई है ये सब साइड से ओपन है तो गर्म हवा तो बाहर से तो आ ही रही है।
5: मैम अब इनकी अपनी मर्जी से बनाया, अब इनको सोचना चाहिए। हमें तो ये है कि आने जाने में थोड़ा सा थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ गया, रेस्ट मिल गया।
6: एंड माई कॉलीग विश्वास इज फाइल रिपोर्ट फ्रॉम जयपुर स्पीकिंग टू गिग वर्कर्स।
7: As the various states of northern India, Rajasthan is also prevailing severe heat wave conditions. At Rajasthan's Sri Ganganagar, 45.1 degree Celsius temperature has been recorded. It's the maximum temperature in Rajasthan's. Apart from that, various districts are recording highest temperatures around 44 to 45 degree Celsius and even beyond that. Due to this intense heat, in Rajasthan, 43 cases have been reported so far for illness related to heat wave, and these all, you know, gig workers have to suffer for this heat wave. The sun is shining brighter. Sir, आप लोग तो बहुत ज़्यादा दिन भर में डिलीवरी वगैरह देने जाते हैं, कितनी मुश्किलें आती है? गर्मी बहुत है।
8: बहुत सर, बहुत मुश्किलें आती है हमें, काफ़ी मुश्किलें आती है। स्टोर से लेके कस्टमर तक ऑर्डर देते हैं उस तक मुश्किलें आती है। हमें वे में जाना पड़ता है, उसमें भी मुश्किल आती है। ऑर्डर वहाँ देते हैं कस्टमर, वहाँ पे भी मुश्किल आती है। बाइक चलाना बहुत आसानी है।
7: अच्छा, कितना कैसे उसको डील कर रहे हैं? ये बैग आपने टांग रखा है, किस तरीके से उसको कैसे कैरी करते हैं?
8: सर अब हमें पता है कैसे करना पड़ता है। भारी भारी बैग लेके जाना पड़ता है, दो दो तीन तीन मंजिल, पाँच पाँच मंजिल सीढ़ियों से जाना पड़ता है, कभी लिफ्ट से जाना पड़ता है। कस्टमर भी गलत करता है, बहुत दिक्कत आती है।
7: So, you know, they are just, you know, depicting their trouble. Sir, आप भी जाते होंगे, कहीं पे जाते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं?
9: सबसे पहले सर नमस्कार। अब देखो सर, गर्मी तो आपको पता ही है, मौसम के अकॉर्डिंग 12 बजे से 4 बजे तक का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अपन को क्या है कि अब सुविधा के लिए अपन एज ए हेलमेट ही यूज करते हैं। अपन जैसे हेलमेट ही लगाते हैं, और इससे और तो कोई बचाव के लिए अपना कुछ ऐसा है नहीं जो अपन कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सकें।
6: Slipping to short break, but we leave you with these visuals of Prime Minister Modi's selfie diplomacy, which has taken the globe by storm yet again. In the latest, Cyprus president was seen taking a selfie with Prime Minister Narendra Modi after bilateral talks.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Tushar's husband's anticipatory bail plea, as we said, is before the Jabalpur High Court. He has now withdrawn it and said he will go back and surrender before the lower court. And remember, he remains absconding. Money has also been offered for any information on his whereabouts. Also, police teams are searching for Samarth Singh, who himself is a lawyer.
1: फिलहाल इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत को लेकर पुलिस की अगली क्या कार्रवाई है और क्या अपडेट अब तक इस मामले में है?
2: इसमें हमने एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए लगाया है एक आरोपी के, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, और जो समर्थ है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं।
1: सीसीटीवी फुटेज में जो लोग नजर आ रहे हैं, क्या उनसे भी कुछ पूछताछ की जा रही है?
2: वो जो तीन व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें दो व्यक्ति हैं जिनके बयान हो चुके हैं, एक समर्थ सिंह है जो फरार हैं।
1: सर, इसको लेकर भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा सीबीआई जांच के लिए। पुलिस ने तमाम जो तथ्य हैं, जो कहीं कोई चूक थी, वो सब चीज़ें उपलब्ध यहाँ पर करवा दी गई हैं?
2: नहीं, उसमें वो राज्य शासन ने लिखा है सीबीआई जांच के लिए, बाकी तो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।
1: सर, समर्थ सिंह को ढूंढने के लिए भी पुलिस टीमें लगी, क्या मध्य प्रदेश, भोपाल या इसके अलावा बाहर भी उसकी तलाश की जा रही है?
2: जो जो उसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो लगी हुई हैं सभी टीमें।
3: 40 ग्राम वाले लोगों की बात आ रही है, उसके बारे में
4: सब चीज़ों के लिए माय एडवोकेट विल बी देयर टू आंसर।
3: जी,
4: मैंने आपको बताया है ना कि हमारे लोग भी तो कंडोलेंस तो देंगे ना, इतनी दुखद घटना सुनेंगे, एंड जो बड़े प्रेम से उन्होंने, हम लोगों ने सब ने मिल के बहू का स्वागत किया था। ठीक है, आपने उस दिन भी देखा, मैं ऑफिस भी जा रही थी, पुलिस को मेरे बयान लेने थे, भाई पत्रकार ले रहे तो आप लोग वो तो ले ही सकते हैं ना। दे हैव नॉट बॉदर टू टेक माय स्टेटमेंट, दे डिडंट बॉदर टू कलेक्ट द सीसीटीवी, आई एम वी आर गिविंग देम डॉक्यूमेंट्स।
3: तो ये जो फोन कॉल्स हुए, आपसे बातचीत हुए, ये सिर्फ आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए?
4: मुझे तो इतना है, बिकॉज माय आई मीन इट्स अ कंप्लीट ब्रेन फॉग। इसके अलावा तो क्या हो सकता है भाई? What can they do? No, if they could influence the police, आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरे गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है? वो ऐसा मेरे घर के अंदर घुस के चुपचाप से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये आईटी एक्ट का भी उल्लंघन है, विदाउट माई नोटिस। ठीक है, तो और वो डॉक्टर्ड वीडियोज हैं, डॉक्टर्स और डॉक्टर्ड ऑडियोज हैं, उन्होंने कुछ भी अपना कॉन्वर्सेशन कुछ तो भी।
1: हर्षित, सीबीआई जांच के लिए आप लोगों ने सीएम से मुलाकात की थी और सीएम ने अब इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है।
5: जी, सो इट इज़ अ बिग डेवलपमेंट इन दिस केस। अभी तक जो आश्वासन थे वो फाइनली दे आर कमिंग ऑन पेपर, सो दैट इज़ वन गुड थिंग दैट वी हैव रिसीव्ड इन द मॉर्निंग, एंड वी आर होपफुल कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, कंसिडरिंग इट्स अ रिकमेंडेशन बाय द सीएम ऑफ द स्टेट।
1: आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, उसके लिए राज्य ने पत्र लिखा है, और अब आप सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट में आज इस फैसले की सुनवाई है, इस पर हालांकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन अगर ये आपके पक्ष में फैसला नहीं जाता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे या फिर कोई फैसला परिवार मिलकर लेगा?
5: मैम, इट इज़ अ फाइट दैट इज ऑन गोइंग मैम, और लड़ाई में अगर उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे पहला जो उतार आया था वो था जब इनको गिरिबाला सिंह की बेल ग्रांट हो चुकी थी, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट कि वो कैसे ग्रांट हुई है, बट उसके बाद भी हम लड़ रहे थे। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है, विच आई एम वेरी डाउटफुल ऑफ, ना वी आर वेरी होपफुल कि शुड गो इन आर फेवर, कंसिडरिंग जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितने हमारे तत्व हैं, वो दे आर ऑन पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड, तो इट शुड नॉट बी द केस दैट इट इज़ रिजेक्टेड, गॉड फॉरबिड नॉट, बट इफ इट इज़ रिजेक्टेड वी विल स्टिल फाइट इट ऑन, वी हैव अनदर हायर एचलॉन ऑफ द जुडिशरी टू अप्रोच टू, एंड वी विल डू दैट।
6: मैम, आपने सही कहा कि वो जो मेहनत आपने जो बताई, वो मेहनत हमारी नहीं है, मेहनत वो सब लोग जो इस समय साथ दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, जहाँ जहाँ से भी आप लोगों के प्लेटफॉर्म के माध्यम, उन सब की वजह से ये एक पहली बार अब एक एक छोटी सी उम्मीद जगी है, और जो शासन ने जो इस पर देर से लेकिन अब जो सही कदम उठाया है, हम उनका आभार देते हैं, और हमें उम्मीद है कि अब इस पर कार्रवाई जो है द्रुत गति से हो। इसमें हर घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका शव अभी भी मॉर्चुरी में है, अभी भी हम जो है PM2 कराने के लिए हाईकोर्ट में दोपहर 1 बजे हमारी याचिका पर सुनवाई है, उसके साथ साथ जो बेल दी गई हैं उसकी एप्लीकेशन हमने लगाई हुई है कि उसको खारिज किया जाए। वो बिल्कुल गलत बेबुनियाद बेल दी गई है, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं दी गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि देर से सही, लेकिन शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था की आंखें खुली होंगी, जो जिन लोगों ने इन अपराधियों का साथ दिया था या अभी तक अभी भी शायद कोई दे भी रहा हो, तो उन लोगों को भी जो है अभी एक जी जी उनको वो भी सजा

0: लेकर पुलिस की अगली क्या कार्रवाई है और क्या अपडेट अब तक इस मामले में है?
1: इसमें हमने एंटिसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए लगाया है एक आरोपी के, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, और जो समर्थ है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं।
0: सीसीटीवी फुटेज में जो लोग नज़र आ रहे हैं, क्या उनसे भी कुछ पूछताछ की जा रही है?
1: वो जो तीन व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं उसमें दो व्यक्ति हैं जिनके बयान हो चुके हैं, एक समर्थ सिंह हैं जो फरार हैं।
0: सर, इसको लेकर भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है सीबीआई जांच के लिए। पुलिस ने तमाम जो तथ्य हैं, जो कहीं कोई चूक थी, वो सब चीज़ें उपलब्ध यहाँ पर करवा दी गई हैं।
1: नहीं, उसमें वो राज्य शासन ने लिखा है सीबीआई जांच के लिए, बाकी तो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।
0: सर, समर्थ सिंह को ढूंढने के लिए भी पुलिस टीमें लगी क्या मध्य प्रदेश, भोपाल या इसके अलावा बाहर भी उसकी तलाश की जा रही है?
1: जो जो उसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास कर रहे हैं तो लगी हुई हैं सभी टीमें।
2: पहली बार ये कि 40 करोड़ सारे लोगों की बात आ रही है, उसके
3: ये
2: बारे
3: सब
2: में
3: चीज़ों के लिए माय एडवोकेट विल बी देयर टू आंसर।
2: जी,
3: मैंने आपको बताया है ना कि हमारे लोग भी तो कंडोलेंस तो देंगे ना, इतनी दुखद घटना सुनेंगे। एंड जो इतने प्रेम से उन्होंने, हम लोगों ने सब ने मिल के बहू का स्वागत किया था, ठीक है। आपने उस दिन भी देखा, मैं ऑफिस भी जा रही थी, पुलिस को मेरे बयान लेने थे, भाई पत्रकार ले रहे तो आप लोग वो तो ले ही सकते हैं ना। दे हैव नॉट बॉदर टू टेक माय स्टेटमेंट, दे डिडंट बॉदर टू कलेक्ट द सीसीटीवी, आई एम वी आर गिविंग देम डॉक्यूमेंट्स।
2: तो ये जो फोन कॉल्स हुए, आपसे बातचीत हुए, ये सिर्फ आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए?
3: मुझे तो इतना है, बिकॉज माय आई मीन इट्स अ कंप्लीट ब्रेन फॉग। इसके अलावा तो क्या हो सकता है भाई? What can they do? No, if they could influence the police, आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरे गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है? वो ऐसा मेरे घर के अंदर घुस के चुपचाप से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये आईटी एक्ट का भी उल्लंघन है विदाउट माई नोटिस, ठीक है। तो और वो डॉक्टर्ड वीडियोज हैं, डॉक्टर्स और डॉक्टर्ड ऑडियोज हैं, उन्होंने कुछ भी अपना कॉन्वर्सेशन कुछ तो भी।
0: अर्जित, सीबीआई जांच के लिए आप लोगों ने सीएम से मुलाकात की थी और सीएम ने अब इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है।
4: जी, सो इट इज़ अ बिग डेवलपमेंट इन दिस केस। अभी तक जो आश्वासन थे वो फाइनली दे आर कमिंग ऑन पेपर, सो दैट इज़ वन गुड थिंग दैट वी हैव रिसीव्ड इन द मॉर्निंग, एंड वी आर होपफुल कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, कंसिडरिंग इट्स अ रिकमेंडेशन बाय द सीएम ऑफ द स्टेट।
0: आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, उसके लिए राज्य सरकार ने पत्र लिखा है और अब आप सेकंड पोस्टमार्टम के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट में आज इस फैसले की सुनवाई है, इस पर हालांकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन अगर ये आपके पक्ष में फैसला नहीं जाता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे या फिर कोई फैसला परिवार मिलकर लेगा?
4: मैम, इट इज़ अ फाइट दैट इज़ ऑन गोइंग मैम, और लड़ाई में अगर उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे पहला जो उतार आया था वो था जब इनको गिरिबाला सिंह की बेल ग्रांट हो चुकी थी, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट कि वो कैसे ग्रांट हुई है, और उसके बाद भी हम लड़ रहे थे। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है, विच आई एम वेरी डाउटफुल ऑफ, एंड वी आर वेरी होपफुल कि शुड गो इन आर फेवर, कंसिडरिंग जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितने हमारे तत्व हैं, वो दे आर ऑन पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड, तो इट शुड नॉट बी द केस दैट इट इज़ रिजेक्टेड, गॉड फॉरबिड नॉट, बट इफ इट इज़ रिजेक्टेड वी विल स्टिल फाइट इट ऑन, वी हैव अनदर हायर एचलॉन ऑफ द जुडिशरी टू अप्रोच टू, एंड वी विल डू दैट।
5: All right, so that was the brother speaking to us. And meanwhile, when media asked pointed questions to Giribala Singh and her legal team earlier today, she evaded questions, but then her legal team lashed out at the media, her lawyer lashing out at the media. Listen in.
6: Ma'am, CBI, CBI, CBI, CBI,
7: अरे जाने दो भाई, व्हाट इज दिस?
8: बयान दर्ज कराने जा रहे हैं मैम, आप बयान क्या बयान दर्ज कराने जा रहे हैं
7: मैडम? प्लीज प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग?
9: अभिषेक, अभिषेक कब से?
5: 90 TV has also spoken to other friends of Twisha's who claim that Samarth used to humiliate Twisha, that is the husband used to humiliate her publicly, he used to question her about her the identity of her baby's father when she was pregnant. Listen into what these friends have now disclosed about the marriage.

0: कहीं ना कहीं उनके पीछे डिस्प्यूट चल रहे थे, जो बच्चे को लेके बात थी, तो उनकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी, तो उसमें भी वो लोग उस पर बहुत टॉर्चर करते थे और ये बोलते थे कि ये किसका बच्चा लेके डोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ऐसे में कैसे कोई भी मदर ऐसे बच्चे को क्यों लेके जाएगी जिसमें इतने एलिगेशन हैं कि किसी और का बच्चा क्या है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसने अबॉर्ट कराया और वो उसे कैरी नहीं करना चाहती थी।
1: सर्किल में आई हर्ड दैट कि समर्थ अपने फ्रेंड सर्कल में तुषार को ह्यूमिलिएट करता था, दैट इसको कुछ नहीं पता है, सी इज गवार, क्या पढ़ी, क्या MBA है, क्या पढ़ी लिखी है,
2: उन पब्लिकली इंसल्ट ह्यूमिलिएट
1: इंसल्ट करते थे अपने फ्रेंड सर्कल के रिलेटिव्स के बीच में, इस तरीके की बातें करना, हर हमेशा उसके बारे में बुरा बुरा बोलना सबको कि ये इसको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कुछ नहीं कर रही है। सो ग्रेजुअली ये चीज़ बिल्डअप होने लगता है एंड उसके बाद मुझे लग रहा
2: है क्यों क्या वो तो मिस पुणे रह चुकी है।
1: एग्जैक्टली,
2: शी वॉज अ आई मीन वेल एजुकेटेड, जॉब भी कर रही थी, वो वेल टू डू फैमिली से भी थी।
1: एग्जैक्टली, वही तो प्रश्न है ना कि आप जब शादी में रिलेशनशिप में जाते हो, एक तरफ आपने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया कि आई विल मेक हर फील कम्फर्टेबल इन माई हाउस, अगर आप वीडियोज़ देखेंगे समर्थ के शादी के, ही टॉक लाइक दिस, एट द सेम टाइम शुरुआत से ही आपने उसे डिप्रेशन में डाल दिया।
3: उनकी प्रॉपर वीडियोज है शादी में जैसे जहाँ पे उसने बोला कि वो दूसरी सिटी में जा रही है और मैं इसका ध्यान रखूंगा, मतलब अब लग रहा है कि यस ये फेक फेक प्रोमिसेस थे, इससे तो ये पता चल रहा है कि वो उसका ध्यान ही नहीं रख पाए उसका।
2: फिर ऐसी भी कोई गिरबाला कह रही थी कि आप लोगों ने ही कैम मना कर दिया आने के लिए, कैंसिल करवा दिया टिकट एंड ऑल।
0: उसके पेरेंट्स 13 को जाने वाले थे, उनकी टिकट्स थी, लेकिन गिरिवाला सिंह जी ने ये बोला कि अगर आप इसे आएंगे और ले जाएंगे तो आज के बाद ये दरवाजे बंद हो जाएंगे।
2: ये उन्हीं ने बोला था
0: एज ए पेरेंट्स, अगर आपको उसके आपकी बेटी के लॉस बोलते हैं कि आप आओगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि वो घर उसका बर्बाद हो जाए।
4: Now, Twisha's death case is raising a more serious questions. Investigators are examining the CCTV timeline and possible gaps in the footage and who had access to the surveillance system after the incident. Also, this video that you're seeing, you know, it's all over social media. Who leaked out this video? Twisha's mother-in-law, Giribala Singh, allegedly contacted the CCTV technician soon after her death. Sources say Giribala called both the CCTV technician and owner of the firm handling the system to her residence. In fact, I spoke to the CCTV firm owner and he said that Giribala Singh called him in the morning, 9 o'clock, and said that something has happened and send a technician here. The technician only managed to go there by 11 a.m. when they found out that a death had taken place. Listen in to what he said to me. तो अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है इस पर सब गौर कर रहे हैं, जिस तरह से वो बॉडी वो सबसे पहले तो त्विषा शर्मा ऊपर जाती है, वो किस समय ऊपर गई, उसके बाद जो लोग ऊपर से उसको नीचे लाए हैं वो किस समय हुआ, और इसमें भी कुछ अंतर आ रहा है जो डेट और टाइम, इसके बारे में क्या बता सकते हैं?
5: हाँ, वो मेरी टेक्नीशियन से बात हुई थी, 2 दिन 2 घंटे 20 मिनट का डिफरेंस है।
4: तो ये कैसे,
5: ये एक्चुअली क्या होता है, सीसीटीवी को समय पे अगर रिपेयर कराते रहें तो उसमें दिक्कत नहीं आती, ये 2.5 साल से इन्हें रिपेयर नहीं कराया है, तो इसमें CMOS बैटरी होती है वो चेंज होनी होती है।
4: ठीक है, आपका कहना है कि आपकी
5: रिकॉर्डिंग पूरी है और हार्ड डिस्क फुल भरी हुई है, जो पुलिस को हैंड ओवर किया हुआ है उसमें सारे फुटेज है।
4: ऑलराइट, आपका कहना है आपके टेक्नीशियन वहां गया अगले दिन, गया 11 बजे और फिर 3 घंटे का सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्होंने पुलिस को दे दिया। अब ये फुटेज जो है लीक,
5: हार्ड डिस्क वगैरह सब उन्हीं के पास है, पुलिस के पास ही है वो।
4: ऑलराइट, और ये सीसीटीवी फुटेज अब लीक भी हो गई, ये किस कहां पर लीक हुई है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस
5: तो प्रश्न उठ रहे हैं, जो पुलिस का जो निकालते हैं उन्हीं को दे दिया है।
4: जी बोलिए विनोद।
5: हाँ, ये हमें नहीं मालूम मैडम, हम तो वहां जब गए तो पुलिस वाले थे, उन्हीं को निकाल के दे दिया, DVR भी उन्हीं के पास है।
4: क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब पब्लिक के सामने कैसे आया, मीडिया के पास भी सारी सीसीटीवी फुटेज है, तो लीक कहां से हुआ? आपका कहना आपके टेक्नीशियन ने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया था?
5: हाँ, हमारे बंदा जो गया था उसने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया।
4: ऑलराइट, ऑल्सो घर में सीसीटीवीज हैं कितने लगाए गए थे? आपका कहना है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी?
5: मैंने 2023 में, जनवरी 2023 में इनके 8 कैमरे का सेटअप लगाया था मैम।
4: 8 कैमरे का कहां कहां पर?
5: वो तो मैं तो नहीं गया था, मेरे टेक्नीशियन जाते हैं वहां पे, तो 2023 अच्छा। में जो लड़का गया था उसने 8 कैमरे का सेटअप लगाया था उनके।
4: तो अभी तो हमारे सामने ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक जगह की

0: है जो सीढ़ी है वहां की है।
1: पर पुलिस वालों को पूरे 8 कैमरे का सर बैकअप दिया हुआ है और पूरी डीवीआर वगैरह सब पुलिस वाले लेके गए हैं।
0: ऑलराइट right, पुलिस के आपसे क्या बात हुई पुलिस वालों की?
1: पुलिस वालों ने नहीं बात करी, वही वही तो उसी दिन हुई कि भैया ये हमें सही चाहिए, उनको दे दिया हमने और फिर वो लेके चले गए।
0: ऑल राइट, सो क्वेश्चंस ओवर, यू नो द पुलिस प्रोब इज ऑल्सो बिन टेकिंग प्लेस। विनोद जी, फिर से हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बता सकते हैं आपको किस समय फोन आया, गिरीबाला सिंह ने आपको फोन किया था और अगले सुबह जो आपने अपने टेक्नीशियन को फिर भेजा तब ये सारा वीडियो मतलब दिया गया था पुलिस को?
1: मेरे पास सुबह 9 बजे फोन आया था, मैं जब पूजा कर रहा था 9 बजे के आसपास, तो मैंने उनसे बोला भाई मैडम अभी
0: अच्छा,
1: तो नहीं
0: सुबह
1: भेज
0: नौ
1: पाऊंगा,
0: बजे फोन
1: मैंने
0: आया।
1: बोला था तुरंत भेज दो, तो मैंने बोला अभी तो नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, मैं ऑफिस खोलता हूँ 11 बजे, उसके बाद ही भेज पाऊंगा।
2: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, रोहित से बात हो रही है?
3: जी सर, रोहित चाटुरी
2: रोहित जी, आप लोग सीसीटीवी भी लगाते हैं ना?
3: जी।
2: मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो कटारा हिल्स में गिरिबाला जी हैं, उनके घर में आप ही लोगों ने सीसीटीवी लगाया ना? जी
3: जी, हमने ही लगाया है। बिल्कुल
2: अच्छा, तो 13 तारीख को उन्होंने कुछ शाम को आपको 4 बजे के आसपास फोन किया था। हेलो, तो क्या पूछ रही थी वो उस दिन?
3: जी, वो पुलिस प्रशासन आया हुआ था तो उन्होंने फोन लगवाया था कि वो आपके सीसीटीवी टेक्नीशियन को बुला लीजिए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग निकालना है।
2: अच्छा, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग निकालने के लिए उन्होंने फोन किया था आपको, और कोई वजह नहीं थी?
3: जी, और कोई वजह नहीं।
2: कभी उन्होंने आपसे कुछ कहा कि उसकी टाइमिंग वाइमिंग चेंज हो गई है या कुछ खराब हो रहा है उसमें?
3: नहीं, जब 2023 में लगा हुआ था इसके बाद उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि उनके पास भी समय नहीं रहता था और कभी
2: अच्छा
3: सर्विस भी नहीं हुई उनकी।
2: अच्छा कभी सर्विस नहीं हुई क्योंकि उसमें टाइम वाइम भी अलग आ रहा है ना, वो
3: हाँ
2: डेट टाइम अलग आ रहा है, तो वो
3: जी,
2: सर्विस नहीं हुई इस वजह से अलग
3: हाँ
2: आ रहा है आप कह
3: बिल्कुल
2: रहे हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: अच्छा, तो उस दिन सिर्फ आपको इसीलिए बुलाया था कि पुलिस प्रशासन आया तो कुछ फुटेज निकाल के देना है।
3: जी।
2: और आपको कुछ पता है क्या इस पूरे केस के बारे में कुछ? और इसके बाद कभी उन्होंने फोन किया क्या आपको 13 तारीख के बाद?
3: जी, थोड़ा सा किया था कि हमारा डीवीआर पुलिस वाले ले गए हैं,
2: हाँ
3: तो
2: हाँ
3: पुलिस वाले ले गए थे कहीं,
2: हाँ
3: तो
2: हाँ
3: हमारे पास थोड़ा सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा हमारा कुछ करिए। तो नया डीवीआर लगाया था
2: अच्छा,
3: दो
2: नया
3: दिन बाद
2: डीवीआर लगा था।
3: जी।
2: ओके, और पुराने डीवीआर में कोई छेड़छाड़ या कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई थी ना?
3: नहीं, सर कोई छेड़खानी नहीं हुई सर।
2: अच्छा ठीक है, आप और विनोद वाणी जी गए थे वहां पर?
3: नहीं, मैं अकेला गया था, ग्रोनवाणी जी मेरे ओनर है बस।
2: अच्छा, ठीक है ना।
0: Alright, so that was the technician who actually went to the home also speaking to NDTV. Now, meanwhile, Tushar's brother, Major Harshit, spoke to the media after the court has now allowed for that second autopsy they've been demanding. He says that this is a small win and the road for justice is a long fight.
4: हमें ये अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज़ बिन एक्सेप्टेड, वी हैव गॉटन द डायरेक्शन, इट इज़ अ वेरी स्मॉल विन, द फाइट इज़ लॉन्ग, हमें एक सही राह पर हम जा चुके हैं बस।
0: All right, the family welcoming this move but calling it a small win. With that, we'll slip into a short break. More news coming up on the other side. Do stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: जो हमारी हाईकोर्ट के समक्ष नहीं रख पाए हम, कुछ मिसकनेक्शन हुआ है, वो हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारी बात रखने की कोशिश करेंगे। और ये भी साथ ही साथ हम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ हमेशा से नमाज होती है ये, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम वापस से हमारी नमाज जारी रखेंगे। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम समाज को पढ़ना है अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में, अपने घरों पर, अपने निजी स्थानों पर, वो बेखुद पढ़ सकते हैं। हमने प्रशासन से परमिशन मांगी थी नमाज के लिए, लेकिन प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर और हाईकोर्ट का हवाला देते हुए हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया।
1: हम 2003 में भी एक विवाद हुआ था, हमारा राधा बसंत पंचमी के रोज़ हमारा राधा के सुंदरकांड मंडल पालकी यात्रा में आया था। 2016 में भी जो विवाद हुआ उसमें भी हमारा राधा के सुंदरकांड मंडल देदला से पालकी यात्रा में यहाँ आया था।
2: आज शुक्रवार को आमतौर पर आ पाते थे आप मंदिर?
3: शुक्रवार को नहीं आ पाते थे,
2: आज सालों बाद।
3: हाँ,
1: हमें बहुत खुशी, और जल्दी से जल्दी हमारी माता यहाँ विराजमान हो, लंदन से उनकी प्रतिमा आए और यहाँ विराजमान हो।
4: लेकिन आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी माँ विराजमान हो गई है, ज्योति अखंड यहाँ पे आ गई है, तो बहुत खुशी का मौका है हम लोगों के लिए।
5: कई समय में हमको मौका मिला इस बार शुक्रवार के दिन पूजा करने का, और बहुत खुशी है, और पूरे धार के हिंदू समाज को बहुत खुशी कि आज शुक्रवार के दिन हमें मिला है माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए।
6: In other news, Mumbai witnessed one of its biggest anti-encroachment operations as the Western Railways launched a demolition drive near Bandra station to reclaim railway land, which is worth nearly 600 crore. But this has triggered a protest and violence, as well as the shanty. This is called Garib Nagar, that after the shanties were removed and this effort made. Just take a look at the amount of police there and the violence with stone pelting and even cement slabs. At least 19 people have now been arrested for this rioting and stone pelting during the demolition drive. All the arrested have been sent to police custody till the 26th of May. The Mumbai police claim stone pelting incident was pre-planned and that stones and cement blocks were arranged. A social media reel spreading misinformation are also under the police's radar. The demolition drive has sparked a political showdown now, though, with the opposition questioning the manner in which the action was carried out. Take a look at all these reactions.
7: बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया, उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है।
8: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
9: हर जगह भाजपा करना चाहती है। आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
10: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो? ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
11: MIM आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनल बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
12: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है? जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था, तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है? ये पथरावबाजी जब हुई है, जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है, जो तोम बोला जाता है, उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई, दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी। जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना, ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग

जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: रिकॉर्डिंग पूरी है और हार्ड डिस्क फुल भरी हुई है, जो पुलिस को हैंडओवर किया हुआ है उसमें सारे फुटेज है।
1: ऑलराइट, आपका कहना आपके टेक्नीशियन वहां गया, नेक्स्ट अगले दिन गया 11 बजे, और फिर 3 घंटे का सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्होंने पुलिस को दे दिया। अब ये फुटेज जो है
0: नहीं,
1: लीक,
0: हार्ड डिस्क वगैरह सब उन्हीं के पास है, पुलिस के पास ही है वो।
1: ऑलराइट, और ये सीसीटीवी फुटेज अब लीक भी हो गई, ये किस कहां पर लीक हुई है? क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस
0: ये तो
1: प्रश्न
0: अपन को
1: उठ
0: नहीं
1: रहे हैं
0: मालूम
1: जो
0: मैडम, क्योंकि
1: पुलिस का
0: हमने तो
1: जो
0: निकाल के
1: प्रोब
0: उन्हीं
1: है।
0: को दे दिया है।
1: जी बोलिए विनोद जी।
0: ये हमें नहीं मालूम मैडम, हम तो वहां जब गए तो पुलिस वाले थे, उन्हीं को निकाल के दे दिया, डीवीआर भी उन्हीं के पास है।
1: क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब पब्लिक के सामने कैसे आया, मीडिया के पास भी सारी सीसीटीवी फुटेज है, तो लीक कहां से हुआ? आपका कहना आपके टेक्नीशियन ने सीधे पुलिस को हैंडओवर किया था।
0: हाँ, हमारे बंदा जो गया था उसने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया है।
1: ऑलराइट, ऑल्सो घर में सीसीटीवी हैं कितने कितने लगाए गए थे? आपका कहना है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी।
0: मैंने 2023 में, जनवरी 2023 में इनके 8 कैमरे का सेटअप लगाया था मैम,
1: 8 कैमरे का कहां कहां पर?
0: वो तो मैं तो नहीं गया था, मेरे टेक्नीशियन जाते हैं वहां पे। तो
1: अच्छा,
0: 2023 में जो लड़का गया था उसने 8 कैमरे का सेटअप लगाया था उनके यहाँ।
1: तो अभी तो हम हमारे सामने ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक जगह की है, जो सीढ़ी है वहां की है।
0: पर पुलिस वालों को पूरे 8 कैमरे का बैकअप दिया हुआ है और पूरी डीवीआर वगैरह सब पुलिस वाले लेके गए हैं।
1: ऑलराइट, और पुलिस के आपसे क्या बात हुई पुलिस वालों की?
0: पुलिस वालों ने नहीं बात करी, वही वही तो उसी दिन हुई कि भैया ये हमें सही चाहिए, उनको दे दिया हमने और फिर वो लेके चले गए।
1: ऑलराइट, सो क्वेश्चंस ओवर, यू नो द पुलिस प्रोब इज आल्सो बीन टेकिंग प्लेस। विनोद जी, फिर से हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बता सकते हैं आपको किस समय फोन आया, गिरीबाला सिंह ने आपको फोन किया था, और अगले सुबह जो आपने अपने टेक्नीशियन को फिर भेजा, तब ये सारा वीडियो मतलब दिया गया था पुलिस को?
0: मेरे पास सुबह 9 बजे फोन आया था, मैं जब पूजा कर रहा था 9 बजे के आसपास, तो मैंने उनसे बोला था मैडम अभी
1: अच्छा,
0: तो नहीं
1: सुबह
0: भेज
1: नौ
0: पाऊंगा,
1: बजे फोन
0: मैंने
1: आया।
0: बोला था तुरंत भेज दो, तो मैंने बोला अभी तो नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, मैं ऑफिस खोलता हूँ 11 बजे, उसके बाद ही भेज पाऊंगा।
1: Alright, so all these technical aspects also under close scrutiny now. We'll continue to track all the developments in this case. Samar Singh is expected to surrender by around 5 p.m. So do continue watching NDTV for the latest. For the moment, we're slipping into a short break. On the other side, the latest in the Karnataka Game of Thrones.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Let's do it.
6: That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
5: The line of control, Ship Arur, NDTV.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: And joining me live now tonight for the first time on television is Twisha Sharma's very own brother, Major Harshit Sharma, who has been at the forefront of the fight for justice for his beloved sister Twisha. Harshit, Major Harshit, thank you for agreeing to speak to me tonight. I would like to start by offering you our unqualified condolences. Our thoughts and prayers are with you, that you are fighting a fight even while you're grieving the loss of your beloved sister. So please accept NDTV's condolences on this. I'd like to start, Harshit, by asking you about the allegations and the many things that have been said by Twisha's mother-in-law about your sister. I have listed some of those right now. She's talked about psychological issues. She's talked about multiple partners. She has talked about sexual past, many things that she has said. I want your opening comments on what Giribala Singh has said about Twisha. Welcome, Harshit.
2: First of all, thank you for having me here. I'm here strictly in a personal capacity. The things that this woman has stooped down to by making derogatory remarks about my deceased sister.
3: Welcome back. Let's get you news from Mumbai, where there's been a demolition drive that has created a huge controversy. Now, this is a demolition drive taking place in Bandra, and a lot of political back and forth over this as well. Mumbai witnessing one of the biggest anti-encroachment operations by the Western Railways, which has launched this demolition drive against a shanty in Bandra station to reclaim railway land, which is worth nearly 600 crore. But this has always triggered massive protests and violence as well. 19 people have been arrested for rioting and stone pelting during this demolition drive. All the arrested have now been sent to police custody till the 26th. The Mumbai police claims that this was pre-planned, that stone pelting was all pre-planned, and that stones and cement blocks were actually arranged in advance. Social media reels spreading misinformation are also under the police's radar. One of the reasons it's been so controversial is a mosque was also demolished in this, Garib Nagar, as it's called. The demolition drive sparked a political showdown, with the opposition questioning the manner in which this action was carried out. Listen in.
4: Bandra Purva mein jo karwai chal rahi hai, अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया, उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है।
5: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते, याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण, हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
6: हर जगह भाजपा करना चाहती है। आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
7: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं, उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो? ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
8: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
9: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है? जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था। तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है? ये पथरावबाजी जब हुई है, जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है, जो तोम बोला जाता है, उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई। दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी। जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना, ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया।
3: Well, news now from Madhya Pradesh, and days after the Madhya Pradesh High Court declared the dispute.

0: आज अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो इस मामले में जिस तरह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका समर सिंह की आज खारिज कर दी गई है, हालांकि उन्होंने जो वकील है उन्होंने ये अग्रिम याचिका जो है वो वापस ले ली है, तो इस पर अब इंतजार किया जा रहा है और कोर्ट ने जो निर्देश यहाँ पर समर सिंह को दिए हैं कि वो यहाँ पर सरेंडर करें। सरेंडर करने के लिए उन्होंने दो जगह बताई हैं, एक आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कटारा हिल्स थाने के हैं, हालांकि वो इस वक्त भोपाल में मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी तरफ से जो आईओ हैं डॉक्टर रजनीश कश्यप एसीपी हैं जो एसआईटी के हेड भी हैं वो इस समय जबलपुर में है। जबलपुर में चूंकि आज इस मामले की सुनवाई होनी थी इसलिए प्रशासन पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए वो जबलपुर पहुंचे। ऐसे में माना जा सकता है कि जब आईओ नहीं है तो समर सिंह आईओ के सामने पेश नहीं हो सकते, वहां सरेंडर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि समर सिंह कोर्ट पहुंच सकते हैं, सेशन कोर्ट में वो सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि संभावना जताई जा रही है क्योंकि हाईकोर्ट ने ये निर्देश यहां पर दिए हैं, अग्रिम जमानत जो है वो भी वकील ने यहां पर अपने वापस ले लिए, तो ऐसे में दो जगह, एक आईओ और एक भोपाल सेशन कोर्ट। तो फिलहाल आईओ इस समय भोपाल में मौजूद नहीं है, तो उम्मीद है कि जो समर सिंह है वो कुछ देर बाद जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। जी
1: हाँ हरप्रीत, और बताइए, समर जबलपुर कोर्ट पहुंच चुके हैं सरेंडर करने से पहले, अगर आयु नहीं होता है तो आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे के क्या स्टेप्स हो सकते हैं? बिकॉज समर सिंह पहुंच चुके हैं जबलपुर कोर्ट, उसके बाद वो सरेंडर करना चाहते हैं, इनके लॉयर ने भी यही कहा है कुछ समय पहले।
0: बिल्कुल, देखिए जैसा कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आईओ के सामने आपको सरेंडर करना है, आईओ जैसे कि मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एसआईटी हेड भी हैं डॉक्टर रजनीश कश्यप एसीपी हैं, चूंकि वो इस मामले में पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में आज मौजूद रहे हैं, अभी फिलहाल वो वहाँ से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं, जब वो यहाँ पर नहीं है तो ऐसे में इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि समर सिंह आईओ के पास पहुँचेंगे या वो वहाँ पर सरेंडर करेंगे। इसके साथ ही भोपाल सेशन कोर्ट में भी सरेंडर करने के यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, तो इस बात की संभावना हो सकती है कि कुछ देर बाद, या ये भी पूरी तरह से इस बात में संभावना यहाँ नहीं जताई जा सकती कि समर्थ आज ही कोर्ट में सरेंडर करेंगे, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट का अब फैसला है, हाईकोर्ट का एक डर है, और इस मामले में सुबह से जो अपडेट आ रहे हैं वो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ट्विशा की फैमिली के पक्ष में आ रहे हैं, तो ऐसे में जो आरोप चाहे वो गिरीबाला हो या फिर समर सिंह हो, तो अब कोर्ट के आदेश के बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद भोपाल जिला कोर्ट में समर सिंह सरेंडर कर सकते हैं। तो फिलहाल इसी बात की संभावना है क्योंकि आईओ नहीं है, जैसे कि हमने कहा इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है, और जिला कोर्ट में समर
1: राइट
0: संभावना ज्यादा है कि वो यहां पर पहुंच के सरेंडर करें।
1: राइट हरप्रीत, थैंक्स फॉर गेटिंग अस द लेटेस्ट। आई एम गो अक्रॉस टू अनुराग राइट नाउ। अनुराग, आवर कॉलीग हरप्रीत, दे ब्रेकिंग दैट न्यूज़ दैट समर हैज रीच्ड द जबलपुर court ahead of his surrender. You earlier pointed out as to how complicated the situation will be if it does not surrender in the absence of an IO in the next few hours.
2: Yes, and the breaking news coming from Jabalpur that Samarth Singh has reached the district judge's courtroom to surrender. This is the breaking news coming in from Jabalpur that Samarth Singh has reached the district judge's courtroom to surrender. Remember, today during the hearing of his anticipatory bail plea, his lawyers said that he will surrender in front of the IO or the court, and now he has reached at the Jabalpur district judge's courtroom to surrender. So this is the breaking news coming in from Jabalpur as of now.
1: Right, Anurag, Samar Singh was on run for 10 days. First, he denied all kind of allegations against him of dowry, of torture, and he also withdrew his anticipatory bail plea. But now, as we speak, he's there. He's reached the Jabalpur court ahead of his surrender. What perhaps led to his change of his heart? Because we do know he himself is a practicing lawyer and his mother, a former judge.
2: Yes, he's a criminal lawyer by profession. He assisted Madhya Pradesh government, also a law graduate from the prestigious National Law School in Bangalore. But today he withdrew his bail plea from the High Court, and said that he can surrender either before the investigating officer or the trial court. But now he has reached there at the Jabalpur to surrender. We don't know what caused the change of heart because he's absconding for the past 10 days. Earlier, his anticipatory bail plea was rejected by the trial court here in Bhopal, and the court has ordered either he should be arrested or his lawyer said that he will surrender. Remember, the police has also announced earlier a cash reward of, reward of 10,000 rupees. Then the amount was increased to 30,000 rupees. But he was on the run for almost 10 days and now he has reached at the Jabalpur court to surrender.
1: Anurag, for the benefit of our viewers, I'll come back to you shortly. I want to go across to Harpreet right now. Harpreet, aap hame Bhopal कोर्ट के बाहर से ज्वाइन कर रही हैं. समर जबलपुर कोर्ट पहुंच चुके सरेंडर करने से पहले. आगे के क्या स्टेप्स हो सकते हैं अभी अगर आयो नहीं है तो?
0: बिल्कुल, देखिए समर पहुंचे हैं अगर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि उन्होंने सरेंडर वहां पर कर दिया है. चूंकि मामला हाई कोर्ट में है, ऐसे में अगर वो वहां सरेंडर करते हैं तो माना जा सकता है कि वहां की जो पुलिस है, यानी जबलपुर की जो पुलिस है, वो भोपाल की कटारा हिल्स पुलिस को यहाँ पर उन्हें दे सकती है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जल्द ही भोपाल लाया जाएगा और भोपाल में उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी. तो समझा जा सकता है कि अब जो कानून का डर है, या जिस तरीके से अभी तक जो रसूख पिछले 11-12 दिनों से नजर आ रहा था गिरिबाला सिंह समर सिंह का, अब वो कहीं पूरी तरह से ये लोग शिकंजे में कानून के फंसते हुए नजर आ रहे हैं. और ऐसे में आज ही देखिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका वापस ली है. इसके साथ ही गिरिबाला के जो वकील हैं उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, केस लड़ने से इनकार कर दिया. सीबीआई जांच की मांग भी आज यहां पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दी और इसके साथ ही सेकंड पोस्टमार्टम की भी यहां पर जो अनुमति वो ट्विशा को मिल गई. तो कुल मिलाकर जो आज पूरा दिन रहा वो एक अहम दिन ट्विशा केस में रहा. और अब जैसा कि समर्थ ने जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर किया, हालांकि उम्मीद की जा रही थी, संभावना जताई जा रही थी कि वो यहां भोपाल कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, लेकिन चूंकि अब ये भी माना जा रहा है कि समर्थ आसपास ही था, अपने परिजनों के संपर्क में ही था, आज जैसे ही परिजनों ने उसकी या वकील ने अग्रिम जमानत की याचिका वापस ली, उसे जरूर यहां पर इस बात की जानकारी दी गई होगी और वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा, वहां पे सरेंडर किया. तो बस अब इंतजार है कि जल्द ही पुलिस उसे यहां के कटारा हिल्स थाने में ट्विशा का पूरा मामला यहां पर दर्ज किया गया है और अब कटारा हिल्स की जो पुलिस है वो जल्द ही समर्थ को लेकर भोपाल पहुंचेगी और इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी.
1: जी हरप्रीत, आई वांट गो अक्रॉस टू अनुराग. अनुराग, समर्थ सिंह वाज एब्सकॉन्डिंग फॉर 10 डेज, ही इज नाउ रीच्ड द जबलपुर कोर्ट, ही विल बी सरेंडरिंग इन मोमेंट्स फ्रॉम नाउ. बट वी हैव सीन इन द पास्ट हाउ हिज ओन मदर ट्राइड टू टैम्पर द एविडेंस. शी देयर वर टू फोन्स दैट ट्विशा हैड, शी वाज नॉट गिविंग द सेकंड फोन टू द पुलिस एंड शी ऑल्सो ट्राइड टू यूज हर इन्फ्लुएंस हर पावर. हाउ मच ऑफ दैट परहैप्स विल इम्पैक्ट समर्थ सरेंडर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम?
2: So many things going on today. The state government has written a letter to the CBI for an investigation. The High Court has also ordered the second postmortem, and now Samarth Singh withdrew his bail plea from the High Court and said that he will surrender. And now our sources are telling us that he has reached there at the Jabalpur District Court to surrender. And the police has also moved to the High Court, the MP government, and they have clearly said that Gribala Singh has violated the anticipatory bail conditions. Yeah. And they also said in their application only that the learned court, the court which gave the anticipatory bail to Gribala Singh, has committed a grave error by overlooking the statutory provisions of sections 118 of the Bharatiya Saksha Adhiniyam also, wherein it is a period that if a woman dies within 7 years of a marriage under unnatural circumstances, the general presumption is against the husband and in-laws that they had caused her death. And they have also said in their application that Gribala tried to tamper with the evidence.
1: Right.
2: These were the serious charges by none other than the Madhya Pradesh government and the Madhya Pradesh police in the High Court.
1: Right, Anurag, stay with us. We'll come back to you shortly. But let's tell our viewers more about how Tushar's husband is under the lens, the timeline of Samarth Singh as well, and timeline of this whole case. First up, on May 12th, Tushar died. Samarth Singh was absconding. He absconded that very day. Then on May 18th, the court rejected Samarth's anticipatory bail plea. On May 19th, The police officers announced a bounty of rupees 10,000 on whereabouts of Samarth Singh. And then on May 21st, police officers hiked that reward, that bounty, to 30,000 rupees. Samarth then also filed another fresh bail plea in the Madhya Pradesh High Court. And then on May 22nd, Samarth withdrew the anticipatory bail plea as well. So as we speak, Samarth has reached the Jabalpur High Court and he will be surrendering in moments from now. But let's now tell you more about Samarth Singh. Who is he? From an advocate to an accused. He is Twisha's husband and as we speak, after 10 days of absconding, he's all set to surrender today. Apart from that, he's an independent litigator and a legal advisor as well. He has been practicing law since September 2018. And he's been practicing in various courts, that's in Bhopal, Jabalpur, and even Indore. He specialized in criminal defense, service law, consumer protection as well. Let's now tell you about his education and career. He is a BLLB honors in one of the top institutes here in India, NLSIU Bengaluru. He's also an Esmus Mundus Exchange, Ghent University, and also a former legal advisor to the government of Madhya Pradesh in the time period of June 2023 to August 2025. He's enrolled with Bar Council of Madhya Pradesh in 2018, and his case is also under the scanner. As we speak, he's booked in wife Twisha Sharma's death case. Currently, he was absconding for 10 days, but right now he's reached the Jabalpur court ahead of his surrender today. He has various allegations on him. The FIR includes dowry harassment allegations as well. Well, mother Giribala Singh also named in the FIR. Now, Twisha was found dead in Bhopal on May 12, 2026. About the court and the investigation so far, the anticipatory bail has been rejected on May 18th. The police also increased the bounty on him, announced rupees 30,000 reward. Samarth Singh reportedly, he's perhaps not untraceable. He has reached the Jabalpur High Court. And Twisha's family has some major demands. They were their old demands because as we speak, there is a second post-mortem which has been announced, which will take place by Team Ames Delhi. And apart from that, Madhya Pradesh court has also rather told the case to be taken over by the CBI. I want to go across to Anurag for more on this. Anurag, with the case only getting murky at this point of time, all eyes, of course, on Samarth Singh, who, as we speak, is all set to surrender in Jabalpur. Tell us more.
3: जयदीप ये बताइए कि उनको फोन लगा लीजिए ना क्योंकि मृगेंद्र सिंह ने बोला है
4: जी जी मैं उनसे बात कर लेता हूँ
3: कर लीजिए बिल्कुल आप बात कर लो ना
4: एक अपन बात
5: ये जयदीप हैं ये समर्थ से बात कर रहे हैं अभी सर जयदीप तो ये जो जयदीप हैं ये समर्थ सिंह के एडवोकेट हैं मृगेंद्र सिंह के जूनियर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो सरेंडर करने के लिए आने वाले हैं और अभी किस रूम में हैं कहाँ पर हैं ये जानकारी पूरी नहीं दे पा रहे हैं मैं भी पूरी कोर्ट रूम में काफ़ी जगहों पर गया हूँ हालांकि मृगेंद्र सिंह का कहना ये है कि जो समर्थ हैं वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आ चुके हैं और डीजे उन्हें सरेंडर से इनकार कर रहे हैं ये मृगेंद्र सिंह जो एडवोकेट हैं उनका कहना स्पष्ट रूप से कहना है कि वो यहाँ आ चुके हैं और उन्हें सरेंडर से इनकार किया जा रहा है अब हम खोज रहे हैं कि कहाँ समर्थ सिंह से हमारी पहली मुलाकात हो सकेगी
1: All right, we try to speak with Samarth's lawyer there. But as we speak, Samarth Singh has reached the Jabalpur court and he will be surrendering in moments from now. But let's go across to Anurag for more on this. Anurag, Samarth Singh has reached the Jabalpur court to surrender. But our reporter there is saying that he's not being allowed to surrender there.
2: Yes, more drama coming out from the Jabalpur court. There you have heard our senior colleague, Sanjeev Chaudhary reporting from there that he has already reached the court. But the DJ has said, the district judge has said that he's not intended to take the surrender of Samarth Singh. Remember, because this case was registered here in Bhopal and in the High Court, his lawyers withdrew the application of anticipatory bail plea, and they said that he wants to surrender before the trial court. So the trial court is in Bhopal, and we all are waiting outside the trial court in Bhopal. But now our sources are telling us that he's there in the district court there in Jabalpur. And the investigating officer, who is the ACP, the Additional Commissioner of Police, Rajneesh Kashyap, is also there in Jabalpur. So whether he'll surrender before the IO or before the court or before the trial court, that has to be seen. But our sources are telling us that he's very much inside the court, but in which courtroom, where exactly he is yet to be seen.
1: Right, Anurag, because our reporter, they're clearly saying that Samarth Singh is not being allowed to surrender, but the judge has asked Samarth to surrender in Bhopal. As we speak, Samarth, according with his lawyers, has perhaps reached the Jabalpur court. How complicated the situation will get if Samarth does not surrender today?
2: See, obviously, there are only two options. Either he surrender or the police should arrest him. The police is trying to arrest him. They have formed six teams. They are, he's absconding for the past 10 days. He has already got enough rope. And, you know, for the past 10 days, first the trial court here in Bhopal rejected his anticipatory bail. Then he moved to the High Court. And before his plea came up for the hearing, his lawyers informed the court that he will surrender and they want to withdraw the application. So he'll surrender before the trial court, and now we are hearing that he has reached there at the Jabalpur District Court. That is not the trial court. So when and where he'll surrender, before the investigating officer or before the court or before the trial court? So much theatrics going on before his surrender. And remember, he's a criminal lawyer by profession. So top police officials, they have few apprehensions, because they knew that if he surrenders during the weekend, he'll be in police custody, and obviously he wanted that to avoid. I mean, Samarth wanted police custody to be avoided, and that's why his lawyers made a point before the High Court also that they should ensure that that if he surrenders, his hearing will commence within 24 hours. To which the state government has reacted and said, no, he's an accused, and that is not possible. That before coming in front of the law, he's making demands. So at that very point of time, his lawyers assured the
1: court that he'll
2: surrender. Yeah.
1: Stay with us, Anurag. We'll replay that video in which the lawyer spoke to NDTV and says that Samarth wants to surrender. Take a listen.
3: ये जयदीप हैं, ये समर्थ से बात कर रहे हैं अभी. सर, जयदीप, तो ये जो जयदीप हैं, ये समर्थ सिंह के एडवोकेट हैं, मृगेन्द्र सिंह के जूनियर हैं. उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो सरेंडर करने के लिए आने वाले हैं, और अभी किस रूम में हैं, कहाँ पर हैं, ये जानकारी पूरी नहीं दे पा रहे हैं. मैं भी पूरी कोर्ट रूम में काफ़ी जगहों पर गया हूँ. हालांकि मृगेन्द्र सिंह का कहना ये है कि जो समर्थ हैं वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आ चुके हैं, और डीजे उन्हें सरेंडर से इनकार कर रहे हैं. ये मृगेन्द्र सिंह जो एडवोकेट हैं, उनका कहना, स्पष्ट रूप से कहना है कि वो यहाँ आ चुके हैं और उन्हें सरेंडर से इनकार किया जा रहा है.
1: All right, Anurag, our colleague, they're again telling that Samarth is at the Jabalpur court, but the judges have asked him to surrender in the Bhopal court. Like, we, as we speak, we don't know where Samarth is at this point of time, in which room he is there at the Jabalpur court. But why is perhaps the judge asking him to surrender the Bhopal court? Is Samarth looking
2: at the Jabalpur court? But
1: yes, please.
2: Yeah, but the district judge has said that he will have to surrender before the trial court only, and the trial court is in Bhopal. So it has to be seen now, because it's already 5:23. So the time is running out for Samarth Singh. So he surrenders before the court or before the investigating officer. Remember, because of the hearing, the investigating officer is also there in Jabalpur. So whether he surrenders before the court or before the investigating officer is yet to be seen.
1: Like you also mentioned that Samarth is a criminal lawyer himself. Do you think he's looking at some of the loopholes right now to evade this?
2: Obviously, for the past 10 days, he's running from one court to another.
6: Yeah, nahi hai. Na abhi wo court parisar mein maujood hai. तो जैसे ही अगर उनका आना होता है कोर्ट परिसर में सरेंडर करने के लिए तो आपको सूचना ही मिल जाएगा। अभी जज साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है इस संबंध में, अगर सरेंडर करते हैं तो बिल्कुल जरूर आपको आप सभी को पता चलेगा इस संबंध में। देखिए नहीं नहीं अभी यहाँ कोर्ट परिसर में नहीं आए हुए हैं, उनको सरेंडर करना है, उनका आना है सरेंडर करने के लिए, पर अभी कोर्ट परिसर में पहुंचे नहीं है वो। अभी जज साहब से मेरी मुलाकात तो इस संबंध में नहीं हुई है, अगर मुलाकात होती है इस संबंध में उनको सरेंडर करना है, कोर्ट में करना है सरेंडर, अभी वो कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं है, मतलब आप पहुंचे जबलपुर में ही करना था। अभी सर अभी मैं स्पष्ट नहीं कह सकता कि वो जबलपुर कोर्ट में ही कर रहे हैं सरेंडर,
7: लेकिन है जबलपुर में है, मौजूद है
6: सरेंडर करने के लिए, क्योंकि आज

0: से मिल रहे हैं, और क्या बता सकती हैं कि क्या उनको भोपाल लाया जाएगा और उसके बाद पुलिस उनकी कस्टडी लेगी?
1: ना अभी नहीं हुआ है,
2: अरे अभी मीटिंग चल रही है।
3: बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ ट्विशा के परिवार के जो वकील हैं अंकुर, वो मौजूद हैं। अंकुर, समर्थ ने सरेंडर कर दिया, अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? वहाँ की लोकल पुलिस उन्हें अपने हिरासत में ले गई और उसके बाद क्या यहाँ की पुलिस पहुँचेगी उन्हें लेने?
4: अभी सरेंडर कंफर्म नहीं है, वहाँ जो
3: कन्फर्म हो गया
4: तो उसके बाद उनको आना यहीं पड़ेगा जो ट्रायल कोर्ट है जहाँ पे केस रजिस्टर हुआ है, कटारा हिल्स थाने में यहाँ केस रजिस्टर हुआ है। सरेंडर हो भी गए हैं वहाँ, तो अल्टीमेटली आना यहीं पड़ेगा और यहीं सारी प्रक्रिया होगी।
3: पुलिस कस्टडी से बचने के लिए जुडिशियल कस्टडी में पहुंचे हैं वो, ये एक वजह है।
4: हमको तो ये लगता है कि पुलिस ने शुरू से उनकी मदद करी है और कहीं ना कहीं उन्हीं के संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है, उन्हीं के हिसाब से सारी कहानी रची गई है और इसलिए वो जबलपुर में सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है, हम ये चाहते हैं कि जस्टिस मिले, क्या हकीकत है वो सामने आए, इसके लिए उनका सरेंडर करा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आएंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी सच है
3: भगत का आरोप लगा रही है। इस तथ्य पर और भी मजबूती इस बात की भी है कि आज ही अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने वापस ली है और आज ही वो वहाँ पहुँच गए। इतने दिन से पुलिस 6 टीमें बना के उनको ढूंढ रही है, पुलिस की लापरवाही मिली भगत और क्या रणनीति? परिवार की लगातार बात भी हो रही थी।
4: हम तो शुरू से आपको रणनीति बताएं, 12 तारीख के बाद से जब से घटना घटी है, एक तो आज नंबर आए हैं उसमें जो कटारा हिल्स के SHO हैं, उनने आरोपी से बात करी है गिरेवाला सिंह, उनका नंबर निकला है उसमें से, तो वो क्यों बात कर रहे थे, और IO की कमी रही इसीलिए SIT बनी। अब SIT ने बताया 6 टीमें बनी है, 30,000 रुपये घोषित कर दिए, पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आरोपी पूरे मध्य प्रदेश में आराम से घूम रहा है, जबलपुर पहुंच गया, जहां भी गया, तो पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? इतनी बड़ी बड़ी टीमें बनी और पुलिस की कमी है, ये हम भी नहीं कहते, ये तो शासन प्रशासन भी मानता है, इसीलिए CBI को कंसेंट दिया गया है और हो सकता है बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हों, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
3: मामला बेहद गंभीर है, आरोप बेहद गंभीर है, 304B का मामला है। तय माना जाए कि समर्थ को पुलिस रिमांड पर लेगी, क्योंकि भद्द तो पुलिस की वैसे ही पहले बहुत चुकी है।
4: रिमांड पे उनको लेना पड़ेगा और जो परिवार की लड़ाई है वो लड़ाई चलती रहेगी।
0: एक सवाल,
4: पुलिस से बाहर ही CBI इसकी जांच करे और CBI अच्छे से जांच करके जो चीजें हैं वो सब सामने लाए।
0: हरप्रीत, एक सवाल आप इनसे जरूर पूछें कि क्या आपको लगता है कि ये जो रसूख था गिरबाला सिंह का, क्योंकि वो जज रही हैं, एक रसूख है उनकी पहचान है, चाहे वो जजों के साथ हो पुलिस के साथ हो, और क्या आपको लगता है कि ये जो आक्रोश पूरे देश भर में रहा, चाहे वो मीडिया की तरफ से रिपोर्टाज रही या लोगों का प्रदर्शन रहा, उसी के दबाव में अब पुलिस एक एक्शन कर रही है?
3: बिल्कुल अंकुर, लगातार ये मामला ना सिर्फ भोपाल, मध्य प्रदेश, पूरे देश में सुर्खियों में रहा है और गिरीबाला का रसूख किसी से छिपा हुआ नहीं है, यही वजह है कि अग्रिम जमानत उनको यहाँ पर मिल गई, मीडिया भी यहाँ पर सामने आया, लगातार कैंडल मार्च निकाले गए, यही वजह है कि अब पुलिस दबाव में आई और इस मामले के जो छुपे हुए तथ्य थे या लापरवाही भरे थे वो सामने आए और अब इस पूरे मामले में ट्विशा के घर वालों के फेवर में जाता हुआ मामला दिख रहा है।
4: 100% उनके फेवर में जाएगा, केवल इस केस में ये दो आरोपी नहीं हैं, इन दो आरोपियों की जिनने मदद करी, अगर कोई टेम्परिंग हुई है एविडेंसेस के साथ, इसकी जांच होनी चाहिए और जितने लोग इसमें आरोपी हैं सबको सजा पड़ेगी, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और पूरा परिवार शुरू से लगा हुआ है, जो कमियां हैं उसको बताता चल रहा है। जो काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का था वो परिवार कर रहा है बेचारा आके, उनकी बच्ची की बॉडी, डेड बॉडी एम्स भोपाल में पड़ी हुई है, इसके बाद भी जो एविडेंस मिल रहे हैं वो रोज़ सुबह उठते हैं, आवेदन देते हैं, सारे एविडेंसेस जमा कराते हैं, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कछुए की चाल चल रहा है, क्योंकि उन्हें कोई जाँच करनी नहीं है, शुरू से डिरेल करने की कोशिश करी, पूरी इन्वेस्टिगेशन में इतने सारे फाउल प्ले हैं जिसको हमने उजागर करा, इसीलिए आज कहीं ना कहीं जो जो हमें धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है और CBI इसमें जांच करे, सरकार का एक अच्छा कदम है, सारी चीजें बाहर आ।
3: उम्मीद की जा सकती है कि अगले एक या दो दिन में दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पहुंचेगी कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार।
4: समय के संबंध में उच्च न्यायालय में जब सुनवाई चल रही थी तो बात हुई थी, लेकिन क्योंकि दो स्टेट इन्वॉल्व हैं, दो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हैं, एम में भी टाइम लगेगा, तो कोई टाइम बाउंड कोर्ट ने नहीं दे सकता था डायरेक्शन, इसलिए उनने दिया एट अर्लीएस्ट, जल्दी से जल्दी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो, और इस समय को देखते हुए कोर्ट ने भी गंभीरता को माना कि यहाँ से तुषा की बॉडी दिल्ली ले जाना संभव नहीं है, इसलिए दिल्ली एम्स की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट हो और वो यहाँ आके सेकंड पोस्टमार्टम।
3: बिल्कुल, शायद इसलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उनसे कोई बच नहीं सकता। 11 दिनों की मेहनत जो है ट्विशा के परिवार की रंग लाई है, हालांकि परिवार बहुत दुखी है लेकिन मन में संतुष्टि है कि पिछले 11 दिन से जो जंग एक बेटी के लिए माता पिता और उसके परिजन लड़ रहे थे, अब वो मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। जी।
0: जी हरप्रीत हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि 10 दिन से ये परिवार गुहार लगा रहा था न्याय के लिए, और अब ऐसा लगता है कि पुलिस या फिर पूरा जो प्रशासन है अब जागा है और अब कार्रवाई कर रहा है। अनुराग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, इफ आई कैन कम टू यू, कुड यू टेक अस थ्रू द एंटायर 10-11 डेज? व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्डियल हैज दिस बीन फॉर द फैमिली ऑफ त्वेषा शर्मा? रिमेंबर द काइंड ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन दैट द मदर इन लॉ इंडल्ज्ड इन। इमेजिन, शी हैज बीन अ जज, शी हैज बीन समबडी हु हैज टू सेफगार्ड द लॉ एंड प्रोटेक्ट द पीपल, एंड शी वॉज कैरेक्टर असैसिनेटिंग हर ओन डॉटर इन लॉ।
5: Yes, Aditya, and I just wanted to quote few of the statements made by the Madhya Pradesh government in front of the Jabalpur High Court while moving for the cancellation of the anticipatory bail plea, because the Madhya Pradesh government, where Giribala is now serving as a president for the Bhopal Consumer Forum, which comes under the Food and Civil Supplies Ministry. The court has clearly said that the trial court has committed a grave error by overlooking statutory provisions of sections 118 of the Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023, wherein it is provided that if a woman dies within 7 years of a marriage under unnatural circumstances, the general presumption is against the husband and in-laws that they have caused death. And again, for that, the anticipatory bail granted to Giribala Singh be cancelled for the reason that she is also trying to tamper the evidence. This is what has been said by the Madhya Pradesh police, and obstruct the investigation as she held a press conference. This was also mentioned in that plea, that she held a press conference on 18th of May, on that day when bail application of his son Samarth Singh was rejected. And the police is also saying that during the investigation, police authorities seized the CCTV footage of the house of Giribala Singh on 13th of May, which is a part of investigation. But the respondent, who had already saved CCTV footage with herself, strategically in a manner to tamper the prosecution evidence and obstruct the investigation, leaked a small clip of CCTV footage in social media. And this part was also corroborated when NDTV spoke to the CCTV technicians in the morning.
0: All right, Anurag, thank you very much for joining us. Thank you, Harpreet, as well. We have to go across to our guests on this big story, Samarth surrendering in Jabalpur. But the larger question is also about a patriarchal silence, a character assassination, and justice still a far-fetched thought. Joining us live here on NDTV, Meghna Pant, author, Shivangi Deshwal, gender-based violence specialist, also joining us live. Shivangi, if I can come to you first, what is your first reaction to Samarth surrendering under pressure, perhaps, here in Jabalpur court? Because we've seen for 10 days a lawyer, a son of a judge, actually evading the law completely, and in fact the entire family indulging in character assassination. What does this say about the mentality and the way things have been?
6: Thank you for having me, Aditya. I think it's very important to understand what people were also discussing, that he was from a very elite law school, that he comes from affluence, that he comes from a judiciary background, he has links, power, English-speaking civility, family honor, good status. And that's exactly what I said, that should not provide you with impunity when you do this kind of crimes.
0: Right.
6: And about the culture of silence, right, it, just to bring in some data here, India is at the help-seeking rate is at the lowest. 1% of women who face violence go to police, legal, or any form of service provider when they are faced with violence. And this is an epidemic, the fact that you have such a culture of silence, especially in upper class and upper caste societies where the honor is higher and they are afraid to come out because of the shame, because of the honor, and in this case, in some cases, the fear of death. Aditya, yeah.
0: Right. I'll go to Meghna Pant in a bit from now. Let's actually play out this entire sequence that we have from Jabalpur. NDTV is the only network chasing Samarth Singh, and we have these exclusive visuals of his surrender inside the Jabalpur court.
7: Samarth.
8: सरेंडर करना है, अपने कुछ कहना चाहेंगे, स्वागत है, मैं आपको सरेंडर करना चाहेंगे, नोटिस जारी है,
7: ऐसे SIT जहां भी है यहां पे आए, इनका लुकआउट नोटिस जारी है।
8: समर्थ समर्थ
0: All right, Samarth Singh is evading NDTV questions. We will be getting you the latest on this.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Let's do it.
6: That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
5: The line of control, Ship Arur, NDTV.
8: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Let's do it.
6: That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
8: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
9: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: हाई रेट चेक द ऑडियो, हाई रेट चेक द ऑडियो।
4: लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट।
5: ब्रेकिंग स्टोरी, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
6: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर।
7: व्हाट इज इन योर लेटर? यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिल नाडु पॉलिटिक्स।
8: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
9: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
10: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
11: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
12: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
14: ऑलराइट, एंड मोर ब्रेकिंग न्यूज। रियली दिस इज द लास्ट वीडियो दैट्स नाउ इमर्ज्ड। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ क्विशा बिफोर शी डाइड, एंड इट्स अ वीडियो एट द ब्यूटी सैलून। शी हैड गॉन टू द सैलून जस्ट

0: Just to be a little more serious about this, what makes this even worse is that अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, खुद अजय राय अस्पताल में थे. अजय राय को प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके लंबी आयु के लिए एंड यू नो होप यू गेट वेल सून, उनकी दीर्घायु के लिए वो बात कर रहे हैं, एंड देन यू रेसिप्रोकेटेड विद दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज. व्हाई? कुछ एक कॉमन कर्टसीज तो होती ही है ना. आप कहेंगे मैं आपको अनुराग जी बोलूंगी, आप भी राधिका खेड़ा को राधिका खेड़ा बोलेंगे, आप उनसे गाली गलौज तू तड़ाक नहीं करेंगे. ये कॉमन कर्टसीज अब क्यों भुलाई जा रही है? अनुराग भदौरिया,
1: बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने पद्मजा जी. ये जो राजनीति में भाषा की मर्यादा लगातार जो गिरती जा रही है, ये चिंता का विषय है. और ये छोटी मोटी चिंता नहीं है, बड़ी चिंता करनी चाहिए, चूंकि गंभीर मामला है. 2014 के बाद से जो अजय राय ने, मैं इस पे पहले बोलता हूँ, जो अजय राय जी ने बोला, अगर AI नहीं है, सही वीडियो है, तो भाषा की मर्यादा ये नहीं होनी चाहिए. लेकिन साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों की भी भाषा विपक्ष के लिए अच्छी होनी चाहिए. सत्ता पक्ष के लोग भी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, माँ की गाली तक देते हैं, लेकिन BJP कभी कोई कार्रवाई नहीं करती है. अगर ये सब चीज़ अगर BJP भी कार्रवाई कर देती तो आज इनपे भी सवाल पूछने को होता था कि कांग्रेस भी कार्रवाई करे. लेकिन BJP ने तो जिन माँ की गाली दे देते हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं करते. हमारे जो सैनिक अधिकारी हैं उनको आतंकवादी की बहन बोल देते तब भी कार्रवाई नहीं करते. और तो और सोचिए, हम लोग तो उन संस्कारों में से हैं कि आपने देखा होगा कि हम श्री अखिलेश यादव जी उनको भी देखने गए जिन्होंने उनका पुतला जलाया. हम तो वो लोग हैं, हम तो इस मानते हैं कि राजनीति अलग चीज है, व्यवहार जो हमारी व्यवहारिकता वो अलग चीज है. सामाजिक व्यवहारिकता हमेशा रहनी चाहिए, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. कोई भाषा अगर जो पार्लियामेंट भाषा बोली गई थी, जिस तरह भाषा का रमेश बिधूड़ी ने इस्तेमाल किया था, अगर उसको पार्टी से निकाल दिया होता तो आज मैं भी यही कह रहा होता कि आज मैं भी आपके साथ आवाज में आवाज मिला रहा होता कि ऐसा व्यक्ति चाहे किसी दल में हो, अगर किसी प्रधानमंत्री जी के बारे में या संवैधानिक पद के ऊपर बैठे लोगों के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो ऐसे आदमी को पार्टी.
0: आप ही के तो नेता थे. अभी जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल की बचत कीजिए, आपके कौन से नेता थे? कौन, लोधी जी, क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया था? अनुराग जी,
1: उसमें समाजवादी, सुने, उसमें समाजवादी ने क्या बोला था? आपने मुझसे पूछा था, तुरंत हमने बोला था जिस भाषा की, जो भाषा का इस्तेमाल किया है समाजवादी पार्टी, ऐसी भाषा को इंडोर्स नहीं करती है.
0: निकाल दिया आपने उनको पार्टी से?
1: किसी नेता ने बोला? सुने,
0: अभी आपने कहा ना कि BJP कोई एक्शन नहीं लेती है इसीलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है.
1: मैं बोल रहा हूँ
0: लोधी जी को निकाल दिया पार्टी से.
1: अरे हाँ, आप वही, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या विजय शाह ने जिस बात का इस्तेमाल किया था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको कोई नोटिस दी? क्या पार्लियामेंट के अंदर में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ था, क्या स्पीकर साहब ने कुछ बोला? जिस माँ की गाली दी गई थी जिसको, क्या उस माँ के बारे में, या मेयर साहब ने जो बोला था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लखनऊ के अंदर में, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? माँ तक पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या कोई दूसरी पार्टी के लोग भी, भाषा की मर्यादा गिरती. मैं ऐसी भाषा को जो अजय राय जी के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो, ऐसी भाषा को हम समाजवादी लोग इंडोर्स नहीं करते. लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जिस भाषा शैली का वो चाहते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो, वही भाषा शैली का इस्तेमाल हो.
0: तो अजेंद्र सिंह लोधी को अभी आपने रखा है पार्टी में, निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे मोदी जी का नाम लेकर के उनको गाली दी थी ना. मोदी जी ने पिछली बार किसको समाजवादी पार्टी के अंदर गाली दी है? और जिसने भी, आप जो कह रहे हैं कि किसी ने माँ की गाली दी है किसी को, आप उसका नाम लीजिए. और उसका मैं पॉइंटेड सवाल, आई विल आस्क टू राधिका खेड़ा एंड तुषार गुप्ता, आप मुझे बताइए कि अजेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने नाम लेके प्रधानमंत्री को गाली दी है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? वो तो सांसद है आपके, उनको निकाल दिया ना आपने.
1: मैं पूछ रहा हूं,
0: उनको बेदखल कर दिया है पार्टी से.
1: सुनो, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की मेयर साहिबा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, आप उनसे पूछेगा क्या,
0: किसके लिए
1: कार्रवाई,
0: किसके लिए?
1: श्री अखिलेश यादव जी के लिए.
0: क्या बोला उन्होंने?
1: अभी बार बार शब्द, अब आप खुद ही, आपको मालूम है, मैं अपने शब्दों में बोल भी नहीं सकता, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आपसे.
0: तो फिर आप मेयर साहिबा के खिलाफ एक्शन लीजिए और आप आपस में लड़िए ना.
1: मेरी बात तो,
0: प्रधानमंत्री को जो गाली दी जा रही है, क्या उन्होंने आपके किसी नेता को गाली दी है?
1: मैंने आपको बोला साफ साफ शब्दों में, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ है, हम कतई उसको इंडोर्स नहीं करते, हम कतई उसका समर्थन नहीं करते.
0: अरे इंडोर्स तो कोई भी नहीं करता, कौन सा प्रधानमंत्री जो मेयर ने भाषा इस्तेमाल किया उसका इंडोर्समेंट कर रहे हैं?
1: सुन तो लीजिए. नहीं, हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ. मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने खंडन किया. हम ऐसी भाषा शैली का हम सपोर्ट नहीं करते. लेकिन सवाल ये है कि 2014 के बाद से जिस भाषा शैली का स्तर गिर रहा है, इस पर रोकने की बात क्यों नहीं सरकार करती? सत्ता पक्ष अगर विपक्ष के बारे में भाषा, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, विपक्ष सत्ता के अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, दोनों गलत है. तो हम समाजवादी लोग तो हमेशा भाषा के, आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुँह से कभी किसी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं सुना होगा. हम अपशब्द, चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय,
0: ठीक है, राधिका खेड़ा जल्दी से इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज, रिस्पॉन्ड टू व्हाट अनुराग भदौरिया इज सेइंग दैट समाजवादी पार्टी इवन बिलीव्स, एंड आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ

0: which that episode he mentioned, that there were a few people who were burning the effigy of Akhilesh Yadav. One of the ladies sustained some burns because it got out of hand. He went to visit the protesters. That is the kind of outreach that the Samajwadi Party does. Unfortunately, there is no reciprocity from the BJP side. Everything is getting very coarsened. Radhika Khera.
1: Padmajaji, you rightly pointed out about Ajendra Singh Lodhi, who spoke a very bad word starting with H for the Prime Minister, and they didn't take any action. And it didn't end over there, Samajwadi Party. Manoj Yadav, aapke saath ke spokesperson hai Anurag ji, unhone kya kaha tha? Chirput. Chirput kaha tha na Pradhan Mantri ji ko. Bhul gaye, zyada din nahi hue. Azam Khan, unhone bhi kiska bachcha kaha tha Modi ji ko? Kaun se janwar ka bachcha kaha tha? Kutte ka bachcha. Yaad hai na aapko? बादशाह, कमीनापन, कमीना, ये सब शब्द कहे थे ना. मुझे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए नेशनल टेलीविजन पे, पर आप लोग तो एक सेकंड भी नहीं सोचते दुनिया के सामने, बच्चों के सामने, सबके सामने ये बोलने के लिए. लगातार मोदी जी के परिवार, उनकी माता जी पे आजम खान साहब ने कितनी बार अटैक किया, और आप क्या करते हैं, आजम खान को सर पे बिठाते हैं, दामाद बना के उनकी भैंसक होती है तो सरकार के अंडर आई हुई पुलिस भैंसों को ढूंढने जाती है. ये है प्यार आजम खान और अखिलेश यादव का. अखिलेश यादव जी ने भी कई बार प्रधानमंत्री जी पे टॉन्ट्स लगाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमेशा क्या बोला, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में बोला था कि अखिलेश यादव मेरे मित्र हैं, डिस्पाइट द फैक्ट्स कि कितने गंदे गंदे टॉन्ट्स अखिलेश यादव ने बात है. क्या क्या बोला है, काशी में आखिरी वक्त बिताते हैं, याद है ना वो बात 2021 दिसंबर में, आपको तो याद होगा. ये शब्द कहे थे अखिलेश यादव ने, खत्म करने दीजिए. नफरत के भाईजान किसने कहा था, वो भी आप ही के एक ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ, आपको याद है. फिर फिरोज खान, आपके समाजवादी पार्टी के संभल के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा था, ये लोग बंदर हैं, ये लोग बस आतंक मचाते हैं, मोदी जी के लिए कहा था. तो ये तो बस मैं थोड़ी सी बातें बता रही हूँ. बट पद्मजा, वन सेकेंड, आप उसके बाद बोल लीजिएगा. नाउ व्हेन द सुप्रीम मैट्रियार्क सेज मौत के सौदागर, नीच आदमी, दे कॉल प्राइम मिनिस्टर रावण, भस्मासुर दुर्योधन, बोटी बोटी कर देंगे उसको, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी में ले लिया था. उसके बाद कांग्रेस ने टिकट दी, एमपी बन गए दोनों के अलायंस में, एंड ही हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद समाजवादी पार्टी.
0: ओके, लेट हिम रिस्पोंड, यू आर टॉकिंग अबाउट इमरान मसूद. यस, अनुराग भदौरिया.
2: देखिए, इतने सारे इन्होंने गिराए, तो इनसे पूछिएगा कि मैं बोलना भी नहीं चाहता राम जादे, उसके बाद आगे क्या था, किसने बोला था ये शब्द बताइए आप, आपको तो याद होगा किसने बोला था, किसने बोला था यहाँ पे,
1: उन्होंने तो नहीं बोला था जिन्होंने कहा था कि ब्राह्मण हमारे दिए हुए पैसों से चलते हैं,
2: नहीं बोला
1: ब्राह्मण और वैश्या,
2: आपको सुना इतना हमने,
1: अरे
2: मैंने आपको सुना, मुझे सुनिया, हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने आपको सुन लिया. गद्दारों को गोली मारो, किसने बोला था ये, आपको याद होगा, आपको ये भी याद होगा कि किस तरह की गाली दी गई थी. एक जाखड़ा जी थे आपके सांसद, उन्होंने क्या बोला था, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, बोला था उनमें वीरांगना का भाव नहीं, बहनों को यही बोला था ना उन्होंने. और सुबह से लेकर शाम तक आपकी पार्टी के लोग, आपके कार्यकर्ता और जिले के प्रेसिडेंट और पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलते रहते. मैंने मेयर की बात की तो आपने जवाब ही नहीं दिया. सवाल ये है कि आप उन शब्द, आप अपने शब्दों की लिस्ट गिनाते हो, ये गिनाने की जरूरत नहीं है. भाषा की मर्यादा 2014 के बाद से गिरी है, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी संयुक्त होती है, लेकिन बीजेपी की वजह से.
0: यू नो, आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न अबाउट भाषा की मर्यादा, बट वेरी जेंटली आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अनुराग जी, कभी जाकर के समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का आप हैंडल देखिएगा प्लीज, और अगर वो इस वक्त देख रहे हो टीवी पे, आप प्लीज भाषा की मर्यादा थोड़ा सा एक मैनुअल आप प्रिपेयर करके जो भी उस हैंडल को देख रहा है उसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि दैट हैंडल बॉस, दैट इज अ केस स्टडी ऑन द लोअरिंग ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स. Be that as it may, I'm glad at least you are saying that this should not be done in public life. Sir, वो तू तड़ाक से तो वो शुरू करते हैं, आगे जो वो बोलते हैं, I again cannot repeat it on TV, but let me bring in Tushar Gupta finally. Let me, because he's been waiting very patiently. Anurag, please 10 second लीजिएगा, because Tushar Gupta के पास फिर 10 second रह नहीं जाएंगे.
2: 10 second. मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ राधिका खेड़ा जी, एक भी ऐसा शब्द सुना दे जो श्री अखिलेश यादव जी के, अखिलेश यादव जी ने अमर्याद भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी किया हो. गाली बकना अलग बात है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें करते हैं आप, चुनाव हार जाना बात अलग होती है,
1: आपको नहीं पता है,
2: आप समझ रहे हैं, कभी भी वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. मैं ये वादे के साथ और चैलेंज के साथ आपको बोलता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी कोई भी भाषा का ऐसा इस्तेमाल नहीं करते जो अमर्याद हो, असंसदीय हो, असंसदीय.
0: ओके, लेट मी ब्रिंग इन तुषार गुप्ता.

0: now. And I want to go back to the original conspiracy theory that I had started with. Is this deliberate? Because I refuse to believe that Ajay Rai would not have known somebody around him has a smartphone, that this will be captured. And he used that word twice. He said, "Wahi jisne Modi ka," and then he said, "Wahi jisne Modi ka." So he repeated it twice. Either there is a sense that this kind of language is going to fire up my worker, that my worker actually likes this. He wants to hear this. He is going to work harder. Is that really a sense?
1: No. I think that kind of language will get the worker fired in the eyes of the electorate. They'll fire him from his job. It's that simple. Anurag Bhadauria here was giving a long list of cuss words that were hurled at his party. It is his party that has been accusing the Congress of enabling the BJP in the center. Samajwadi party ka ye bayan tha na ki Congress ki wajah se aaj BJP satta mein hai. To Anurag Bhadauria ji jo Ajay Rai jaise bhashan dete hain, jaise gali galoch karte hain, aapko lagta hai UP ki mahilaye sunengi, unko kya lagega? यूपी के बच्चे सुनेंगे, युवा सुनेंगे, क्या सोचेंगे? आपको लगता है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या वो आपकी पार्टी के साथ जाएंगे जो कांग्रेस के साथ खड़ी होती है? आपको लगता है कि भाजपा जीती है तो क्या हुआ, कैसे हुआ? यही कारण है. ये जो भाषा है, जो गाली गलौच हो रही है, आप कहते हैं भाजपा किस नेता ने वो कहा, उसने ऐसा कह दिया तो हमने ऐसा कह दिया. कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है, उसकी हालत हो चुकी है ऐसे ही कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. उनके अलायंस पार्टनर्स उन्हें गद्दार कह देते, प्रधानमंत्री को गद्दार कह देते हैं.
2: नहीं नहीं, आप क्या है, अलायंस पार्टनर
1: को छोड़ना चाहते हैं तो वो
2: बीजेपी के पीछे लग जाते हैं. क्या घोषित प्रवक्ता लग रहे हैं
1: उनके अलायंस पार्टनर?
2: उनको बड़ी दिक्कत है भैया इंडिया गठबंधन से.
1: क्यों तकलीफ हो रही है?
2: पॉलिटिकल विशेषण है क्या है? क्या है आप? क्या
0: पॉलिटिकल एनालिस्ट है अनुराग भदौरिया? पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एक तरीके से तो आपको खुशी होना चाहिए ना. जितना अजय राय ऐसा बोलेंगे उतना आपकी स्थिति मजबूत होगी. आज अखिलेश यादव ने बोल ही दिया है कि सारी की सारी सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने को तैयार हो रहे हैं. एक तरीके से आपके जमीन तैयार कर रहे हैं अजय राय.
2: 400 देखो, समाजवादी पार्टी हमेशा 403 सीटों पे मजबूती से लड़ती आई है. उनके कार्यकर्ता मजबूत रहते हैं, तभी हमने 37 सीटें जीती हैं लोकसभा में 2024 में, और बीजेपी को 33 पे समेटा है. और जब हमारे साथ कोई अलायंस में भी लड़ेगा तो उसको भी मजबूती मिलती है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता मजबूत होते हैं. तो कोई भी अलायंस मेरे पास हमारे साथ आता है तो उसको भी हेल्प होती है, क्योंकि हमें जीतना है बीजेपी को. और बीजेपी को हराने के लिए आप समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, गांव-गांव में संगठन है, इसलिए बीजेपी को हराना है हमें. तो मेरा
0: तो आपके जो सारे मजबूत कार्यकर्ता हैं उसमें राजकुमार भाटी जी भी शामिल है ना, जो कभी गुजर के बारे में बोलते हैं, कभी ब्राह्मण के बारे में बोलते हैं. उनको एकदम आप आगे रखिएगा अपने सारी 400 सीटों पर जब लड़ने जाएंगे तो, और सब जगह रखिएगा. जहाँ पर ब्राह्मण है वहां पे भी रखिएगा, जहाँ गुजर है वहां पे भी रखिएगा.
2: व्यक्तियों को सुनिए, ऐसे व्यक्तियों की समाजवादी कभी इंडोर्स नहीं करता ना. समाजवादी ऐसे
0: व्यक्तियों
2: को लीजिए,
0: एंडोर्स तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे ना. अगर कोई कहेगा कि ब्राह्मण और वैश्या का कोई कंपैरिजन करेगा, उसको एंडोर्स तो नहीं करेंगे.
2: ऐसी भाषा मैं बोल रहा हूँ ना, अरे मैं तो खुद छत्री हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसी भाषा का जो इस्तेमाल करेगा समाजवादी पार्टी उसका कभी सम्मान नहीं करेगी. मैं आपको लिख के दे सकता हूँ.
0: अरे तो बिना सम्मान का प्रवक्ता तो रखा हुआ है, भले से ही आप सम्मान ना करें, पर आपका आपका प्रवक्ता तो है सही. वो
2: व्यक्तियों की समाज सुन, तो ऐसे व्यक्तियों की समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं होती है जो किसी भी जात या वर्ग विशेष के बारे में शब्दों का इस्तेमाल करता है.
0: ओके, वेरी क्विकली आई वांट टू ब्रिंग इन वन मोर एंगल, बिकॉज रिमेंबर एवरीवन विल कीप ट्राइंग टू डिस्टेंस देमसेल्व्स एंड से यस दिस वाज सेड बट वी डोंट एंडोर्स इट, एज इफ समबडी इज गोइंग टू कम एंड एंडोर्स एंड से यस ही अब्यूज्ड एंड वी कंप्लीटली एंडोर्स इट, और यू विल से वी डोंट रिस्पेक्ट देम बट यू विल कंटिन्यू टू प्लेटफॉर्म देम. आई वांट टू रिमाइंड आवर व्यूअर्स how common courtesy sometimes is not that common. You had the Prime Minister in just the last few days. In 2024, the Congress President Mallikarjun Kharge, he actually fell ill during a rally in Jammu and Kashmir. At that time, the Prime Minister reached out, asked about his well-being. He dialed Mallikarjun Kharge and asked him about his health. There have been plenty of people within the Congress, not just Sir Kharge ji. Sonia Gandhi in 2016, when she fell ill during a roadshow in Varanasi, the same seat where the Prime Minister and Ajay Rai are face to face, the Prime Minister offered to send an aircraft and medical help to Sonia Gandhi at that time when she fell ill in the middle of the elections. Lalu Prasad Yadav and Mulayam Singh Yadav, there was a pre-wedding family function. They're also related to each other through marriage. And in 2015, the Prime Minister attended that event in Saifai. The point I'm trying to make is that these common courtesies are extended. There have been plenty of people, journalists, who have been very, very critical of the Prime Minister. He has condoled their death. after they have passed away. Why can there not be some kind of reciprocity in all of this is my simple question. Think about it. Meanwhile, Radhika Kheda, respond.
3: The Samajwadi Party spokesperson was saying there's no place for people like Mr. Bharti, or even for that matter, Manoj Yadav, who the very next day after Mr. Bharti spoke, said ki mere hum jo daan dete hai, usi se brahmano ka ghar chalta hai. So he said, since there's no place for such people, I'm sure Anurag bhai, aap logon ne un dono ko hata diya hoga as spokespersons. Please, wo bhi bata dijiyega, tweet kar dijiyega, karwa dijiye. Itna zeher aap logon ka count karta hai. Ye bhi tweet aa jana chahiye that humne unko parties mein nikal diya. Having said that, Prime Minister Shri Narendra Modi ji did not inherit power through a family surname called from the Gandhis or like the Yadav family. He earned it through sweat and blood and tears of serving this nature. Every time these people's dirty mouth vomits venom on him, the 1.4 billion people of India treat it as an insult to their own vote. Go ahead, bleed your toxic frustration as much as you want out on the roads, on national television, in debates, or even like Rahul Gandhi does, gaddar gaddar kehke. Because the more that you people...
0: Okay, 30 seconds, Anurag Bhadauria. Last 30
3: seconds. The deeper you bury your own party's future.
2: Bas, main to bas itna hi bolunga. Baar baar Bharatiya Janata Party jo parivarvad ki baat karte, inhe shayad pata nahi hai कि को इस देश के अंदर में लोकतंत्र में जनता चुनती है. बहुत परिवार के लोग चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहे, नहीं उनके बेटे कुछ कर नहीं पाए. श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी दम पे पार्टी को आज 37 सीटें दिलवाई हैं.
3: श्री अखिलेश यादव जी ने
2: 37 सीटें दिलवाए पे यार उनके पिता का आशीर्वाद के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ, जनता के सपोर्ट से उनको 37 सीटें मिली हैं. इसलिए आप जैसे लोग परिवार का मतलब समझते नहीं हैं. परिवार का मतलब सिर्फ आप उसका सरनेम समझते हैं, कर्मठता नहीं समझते, उनका काम नहीं समझते.
0: ऑल राइट, वी विल लीव दैट असाइड फॉर अनदर डे. द इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर. वी विल हैव मच मोर टाइम टू डिस्कस दैट एट लेंथ. बट एज फार एज दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्स इज कंसर्न, I leave it to your wisdom. I still cannot wrap my head around the fact that somebody who is headed into elections, whose party has a lot at stake in the next few months, would let loose in this fashion in public, knowing that this is going to be recorded by somebody. Why would you do it? Either you think it is beneficial, or you simply have failed to gauge the pulse of the public. You decide. Thanks very much, all gentlemen, and Radhika Kheda for having joined me. Coming up is Focus, where we will talk about the NEET pain that hundreds of aspirants across the country have faced. How do you deal with it? What is its root? We'll talk about that. That's our Focus.

0: activities which give them immediate pleasure. For example, getting hooked to social media, sleeping for long hours or not sleeping at all. You know, when it comes to the food habits, the nutrition might go for a toss. You know, they might eat a lot of carbs. You know, proper nutrition might not be there, might not go out. You know, physical involvement, physical activities might not be there. So these are some of the you know, areas, and these are some of the behaviors if we notice in a person, then we should be careful about the emotional, you know, burnout.
1: Every day, Madhu spends around 30 rupees traveling from Anand Nagar to her coaching classes in MP Nagar. Her family somehow manages to send 2,000 rupees for the rent. Her father took loans for her education. Her mother mortgaged her jewelry.
2: जिस दिन नीट एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज आई थी तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं छुट्टी पे थी, घर पे थी, तो मेरे पास एकदम से बच्चों के कॉल आना शुरू हो गए। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, और उस टाइम तक हमने न्यूज भी नहीं देखी थी। बच्चे ऐसे थे जो लिटरली रो रहे थे फोन पे, तो मैंने पूछा क्या हो गया, और वो बच्चे ऐसे थे जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे, दूसरे स्टेट से आए हुए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे, मणिपुर से आए थे, वो यहाँ पीजी लेके रहते थे, और उनकी कंडीशन ये थी कि उनकी मम्मी ने जो उनकी ज्वेलरी होती है वो उसे गिरवी पे रख के यहाँ की उन्होंने फीस भरी।
1: Lakshya's father is a farmer and he grew up in a village near Jaipur. After he scored well in the class 12 exams, Lakshya's father decided that his son should become a doctor. So Lakshya went to Sikar and joined a coaching center there to prepare for NEET UG. He appeared for the exam in 2026, but when days later the exam got cancelled, it was emotionally hard to accept for Lakshya. In his family, someone had already suffered. In 2015, his uncle had attempted NEET UG, but then too, his was the center where the exam got cancelled, and he never became a doctor.
3: कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, उससे डिसअपॉइंटेड तो है ही ना कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है। पेपर को एक एजेंसी को बहुत एजुकेशन ही नहीं है तो हमारा हम क्या कर लेंगे।
4: एक बार एक साल पूरी तैयारी की, फिर उसने एग्जाम लिखा, फिर आया पेपर लीक हो गया। बच्चे की तो मेहनत है ही है, पेरेंट्स को फिर उसका मनोबल बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा तो टूटता ही टूटता है, साथ में माँ बाप की भी जो आशाएं थी वो भी टूट जाती है। सबकी जेब पर भी फर्क पड़ता है, बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, और घर की स्थिति सर मिडिल क्लास लोगों पर तो बहुत इफेक्ट पड़ता है।
1: Earlier, Arnav was preparing while staying in a hostel, but now he has returned home. He has no other option but to start preparing again. But Arnav remains worried about what the paper will be like this time. His mother too is fearful about the uncertainty and confusion that Arnav is undergoing as he continues with his preparations.
5: गार्जियन का प्रेशर नहीं डालते हैं, गार्जियन एक्सेसिव फेथ करते हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा है करने में, इसका तो हो ही जाएगा। तो वो जो एक फेथ होता है ना, कई बार बच्चा उसको बर्डन के रूप में ले लेता है, थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा फील होता है कि नहीं मैं नहीं कर पाया तो सबका एक्सपेक्टेशन है मुझ पर, मुझे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे गार्जियन जो मुझे बचपन से यहाँ लाए, मुझे पढ़ाए, मेरे सर, मेरे भैया, जो भी सारे टीचर लोग हैं मेरे, मैं सबका एक्सपेक्टेशन को मीट करना थोड़ा एक चैलेंज रहता है कि नहीं मेरे को ऐसा करना है, ताकि मैं उन लोगों से भी कह सकूँ कि सर आपने मुझे पढ़ाया तो मैंने आपके लिए रिजल्ट दिया, मैंने किया, तो थोड़ा प्रेशर रहता है। बट ये फेथ भी अच्छा लगता है कि चलो सामने वाले आदमी को फेथ है मेरे पे कि मैं कर सकता
2: हूँ। बच्चे बड़े परेशान हैं कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, कुछ तो ऐसे है कि रोने लगते हैं डायरेक्टली कि अब मैम नहीं होगा हमसे, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है कि अब क्यों नहीं होगा।

अनफॉर्चुनेटली जो रिज़ल्ट आया नीट का और जो उसके साथ इतना बड़ा केस हो गया है पेपर लीक का, तो उससे पूरी फैमिली हम लोग बहुत शॉक्ड हैं। और अब कुछ समझ में नहीं आता कि आगे ये कोशिश करें एक साल तक के पूरी तरह से पूरी तैयारी करें और फिर उसके बाद अगली बार पता नहीं क्या हो। तो ये डर सबके दिमाग में बैठ गया, तो डर के मारे इन्हीं ने कहा कि मैं नीट कंटिन्यू नहीं करूँगी और उसको जो है चेंज करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम तो मेरे प्रोफेशन में आओ, तो क्लैट करो, कोई अच्छा नेशनल कॉलेज लेके आओ और उसके बाद जो है फिर तुम ज्यूडिशरी में आओ और देश के लिए अपने कंट्री के लिए कुछ करो।

0: तहस नहस कर रखा है, पेपर लीक करवाते हैं, उनको मतलब क्या है इस चीज़? आप अच्छा मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि आप कैसा करने से जो है कुछ नहीं होगा, आपको पैसे मिलेंगे और कुछ नहीं है उससे, लेकिन उससे जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, जिनके लिए डॉक्टर लोगों के लिए सिंपैथी होती है, वो लोग पीछे हट जाते हैं इस रास्ते से। तो ये गलत बात है कि आप पेपर लीक करवाते हो जो भी है ये।
1: Days after the NEET UG 2026 examination was cancelled, NTA announced a new examination date. While NEET will be computer-based from 2027, as promised by the Education Minister, NTA clarified that the repeat exam of 2026 will still be pen and paper. The re-exam on June 21st is expected under heightened security and monitoring measures.
2: अभी आपको मतलब दोबारा से वो चीज़ रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे दोबारा, आपको देखना पड़ेगा पेपर का लेवल, देखना पड़ेगा उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब रीनीट अगर ये दे रहे हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, हाँ टाइम थोड़ा कम है।
3: मेरा नाम है लक्ष्य, और मेरा नाम के अंदर ही मेरा लक्ष्य छुपा है।

0: दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ NDTV पर।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: Utwisha's husband. What's next with Samarth Singh? Right now, as we speak, he is on route Bhopal. And first up, Samarth Singh will be produced in Bhopal High Court. And of course, after that, the police officers will also seek custodial interrogation. But let's also now tell you that Samarth Singh has perhaps, that those are the visuals Samarth Singh at the Jabalpur court. He has been absconding for the last 10 days and he was arrested today. As we speak, he's on route Bhopal and he will be produced in the Bhopal High Court tomorrow. Second, the police officers will be seeking custodial interrogation. The investigators will question Samarth as well. Well, the last call details may be examined and digital and forensic evidence will also be probed. Apart from that, police may also reconstruct the events. Let's also take you through what we can expect next. First up, he is all set to be produced in Bhopal court tomorrow. Second, Samarth Singh the police officers will be seeking custodial interrogation of Samarth Singh. Apart from that, there will be a lot of search inquiries to be done. Investigators will be questioning Samarth on various angles, because remember, there are a slew of allegations of Samarth Singh, from dowry abatement to suicide to even physical and mental torture. Last call details will also be examined and digital and forensic evidence will also be probed as well. Apart from that, police may reconstruct the events, perhaps to see how the situation pans out. All right. We have more breaking news coming in for you at this point of time. The Bar Council has now suspended Samarth Singh. Samarth's legal license has now been suspended. Remember, Samarth Singh was a practicing lawyer. He studied from one of the top colleges in India, which is in Bengaluru, NLSUI. But Samarth right now has been barred from legal practice. Lawyer's body flagged grave allegations at this point of time against Samarth Singh. And Samarth right now faces professional action. This, of course, after Samarth was arrested today after absconding for 10 days. Remember, he also worked with the Madhya Pradesh government. He practiced law for many, many years. His mother is a retired judge. But the big news coming in is that Samarth's license to practice law has now been suspended by the Bar Council of India. A huge step, perhaps, in its way for justice right now for Utwisha's family. The Bar Council of India said that from immediate effect, Samarth Singh's practice, he will perhaps not be able to practice, and at this point of time, he faces professional action right now. Well, earlier, Manan Kumar Mishra, the chairman of Bar Council of India, has said this. Take a listen.
1: सीरियस ऑफेंस है और ये बड़े लोग हैं. इन्वेस्टिगेशन में भी कोऑपरेशन इनका कुछ नहीं है, जीरो. आप एब्सकॉन्डर हैं, आप भागे हुए हैं, अपने पोजीशन का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं, एविडेंस को टेम्पर करने का प्रयास, विटनेसेज को भी धमकाने का प्रयास. कोई मटेरियल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कलेक्ट ना कर पाए, ये सारे प्रयास इन लोगों के तरफ से हो रहा है. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये देखा और ये सोचा कि ये जो कंडक्ट है इनका, ये ग्रॉस मिसकंडक्ट है. इट इज़ मोस्ट अनबिकमिंग ऑफ एनी लॉयर. ये लॉयर के कंडक्ट ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं हो सकता है. तो इसलिए उनका लाइसेंस अभी हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया, उनको नोटिस किया है. डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगी, उसके बाद जो फैसला फाइनल होगा वो होगा.
2: यानी सर, जिस तरह से परिवार वाले उषा शर्मा के लगातार आरोप लगा रहे थे कि जो उषा का पति जो है समर्थ सिंह और उसकी जो माँ रिटायर्ड जज हैं, वो लोग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं और जिस तरह से वो पुलिस की जांच में सहयोग भी नहीं कर रही हैं और केस को भी उलझा सकती हैं, तो इसी वजह से ये फैसला लिया गया.
1: हाँ हाँ, इसी वजह से फैसला लिया गया है, ताकि वो लॉयर रहते हुए और लॉयर के लाइसेंस का, लॉयर ड्रेस का, ये सब का भी नाजायज फ़ायदा उठा के वो एविडेंस वगैरह को टेम्पर ना कर सकें. तो इसलिए सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए विचार विमर्श करने के बाद उनके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है. बड़े लोग हैं, हालांकि सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रिकमेंडेशन दिया है, देखिए क्या होता है. लेकिन इन लोगों का कंडक्ट बहुत ही गलत है.
2: वो सर, सरकार

0: कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावरसुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे. जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल. उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे.
1: हर जगह भाजपा करना चाहती है. आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है. लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है.
2: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो. ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया. ये बिल्कुल बंद होना चाहिए.
3: MIM आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा. बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है.
4: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है. जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था, तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है. ये पथरावबाजी जब हुई है, जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है, जो तोम बोला जाता है, उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई. दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी. जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना. ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है, इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे. तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया.
5: स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग NDTV.

0: बताती थी कि मैं तो बड़ी नहीं, मुझे पता ही नहीं था। जब मेरे पिताजी बोलते थे तुमको ऐसा फिगर बनाना है, ये करना है, शी वॉज ड्रैग्ड इन टू तेलुगु फिल्म, शी वॉज ड्रैग्ड इन टू अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट्स, यू नो, एंड दे वर एक्सट्रैक्टिंग मनी आउट ऑफ हर। एंड इमेजिन जो हाई कोर्ट में आज मैंने विदड्रॉ किया है, उसमें भी मैंने, मेरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आउट ऑफ दीज 4.5 मंथ्स, जिसमें से जो आधे समय भी हमारे साथ नहीं रही, वी हैव ट्रांसफर्ड, माय क्लाइंट्स हैव ट्रांसफर्ड मोर देन 7 लाख रुपीज टू हर। हम भी परिवार के लोग हैं, आप भी परिवार के लोग हैं, कौन इतने पैसे देता अपनी बहू को? आउट ऑफ शेयर अफेक्शन, ऑन द सेम डे शी वॉज इन द ब्यूटी पार्लर फ्रॉम 3 o'clock इन द आफ्टरनून टू 6 o'clock इन द इवनिंग, हैप्पीली हैविंग द थिंग्स डन। जस्ट इमेजिन, लड़की को अगर होता एक एक एक एक एक एक तो वो लिख के जाती सुसाइड नोट। मदर बोल रही है, मुझे बोल रही तुम मत फंसना, मैं देख रहा हूं सारी चीजें सर, कि ये तुम मत फंसना, मैं फंस गई, उससे ये कहां लिखा, कहां टॉर्चर, कहां लिखा हुआ है टॉर्चर, कहां है? हमारी भी शादी हुई, आपकी भी शादी हुई, घर से लड़की आती है, उनको टाइम लगता है एडजस्ट होने में।
1: ब्रिगेंद्र सिंह, द थिंग्स दैट वर बीइंग सेड टू हर बाय हर ओन मदर इन लॉ, बाय समर्थ, अक्यूजिंग हर ऑफ इनफिडेलिटी, दैट द बेबी वाज समबडी एल्सेस, यू आर एक्टिंग लाइक एज इफ हर मैरिटल होम वाज अ ब्लिसफुल होम, इट वाज नॉट अ ब्लिसफुल होम, यू आर मेकिंग इट सीम लाइक त्विशा वाज ओनली अंडर प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ दैट।
0: शी हरसेल्फ सेड दैट शी हैज बीन हैविंग रिलेशंस विद मेनी पीपल।
1: Who doesn't have relationships, earlier relationships, sir? Who doesn't have relationships earlier?
0: I never had any relationship. You say who doesn't have?
1: You are unique in that
0: sense. Of relationships. No. I have never had any relationship.
1: When you say
0: out of my marriage.
1: When you say she's had many relationships, I'm obviously talking about before her marriage.
0: अगर वो बच्ची बोल रही थी, तो अगर वो बच्ची बोल रही थी, माँ ने उसको यही तो बोला कि आगे मत करना भाई, आगे मत करना भाई, आगे अब तो बी बी बी ऑनेस्ट एंड बी डेडिकेटेड टू योर हस्बैंड, इतना ही तो बोला, और क्या बोला? नहीं, यू पीपल आर ड्रैगिंग द थिंग्स बियॉन्ड प्रोपोर्शंस। आई टेल यू, व्हेन अल्टीमेटली व्हेन इट गोज, हमने तो खुद पिटिशन लगाई, हम तो खुद चाहते सीबीआई के पास चला जाए, चला गया केस। नाउ यू इमेजिन, फिर उसके बाद राहुल गांधी वाली बात आप पत करना कि सीबीआई खरीद ली, ईडी खरीद ली, आप देख लेना सीबीआई करेगी इंक्वायरी, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट माय क्लाइंट्स विल कम आउट क्लीन, क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन।
1: व्हाट डज समर्थ से,
0: आज sir? हमने कोर्ट में बोला What? कि सर हमको बॉडी हमको दीजिए, हिंदू धर्म के हिसाब से हम क्रिमेशन करेंगे, हम उसके अंतिम संस्कार करेंगे।
1: व्हाट डज समर्थ से, यू हैव स्पोकन टू हिम, what does he say happened, what is his view, what is he, what in his opinion, what happened?
0: He is broken after his wife's death, the same day, the day the lady left, the girl left, Samarth had dropped her at the beauty parlor, Samarth picked her up from the beauty parlor, 7:30 they went for a walk, they had a walk for in the evening for one hour, after that they saw whatever they were watching TV, they had dinner together, and then she went upstairs, she said that I need space, I'll talk to my people, okay, she went upstairs. This is what Samarth has faced. Just think about that boy also, just think about that boy also before blaming anyone.
1: No, there's
0: just think about that boy also.
1: I just want to say that we are not blaming anyone. We are only reporting what the investigation is telling us. We are speaking to both sides. I had reached out to Giribala Singh. If you can advise her to speak to us, we would like to ask her some questions as well. Because I spoke to her directly.
0: I say, my brother, she's broken now. Her all statements have been so very intelligently and cleverly and mischievously twisted. You know? She says, I don't want to talk to media now because I'm fed up.
1: Okay.
0: A lady who has now, served this country,
1: final question.
0: Or widow, uska husband, wo vidwa hai wo lady, vidwa, jab ye bachcha ek saal ka tha, uske husband ki encounter mein death hui. Imagine. वो एक साल का था ये बच्चा
1: बट सर
0: उनका हस्बैंड के एनकाउंटर में डेथ हो गई.
1: सर दीज आर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस बट द हार्ड क्वेश्चन स्टिल नीड टू बी आस्क्ड.
0: उसके बाद उन्होंने परीक्षा की तैयारी करी और सिविल जज बनी वो लेडी.
1: मेनी ऑफ द थिंग्स
0: फॉर दिस डे आज का दिन देखने के लिए वो सिविल जज बनी थी
1: सर. आई
0: वो डीजे बन के रिटायर हुई.
1: सर आई वॉन्ट टू जस्ट प्ले यू नो सिंस यू आर डाउटिंग मी मिस्टर मृगेंद्र सिंह लेट मी जस्ट प्ले आउट फॉर यू वॉट आई सेड दैट गिरिबाला सिंह एक्चुअली सेड. लेट्स जस्ट प्ले दैट आउट फॉर आर for Mrigendra Singh right now.
2: आप जो करना है धरना प्रदर्शन but give her the peace. ना उसके जीवन काल में उसको चैन मिला because I think they were earning out of all her, you know, her looks and everything. वो earning का साधन तब थी and now I think they are just trying to catch some mileage and earn some more.
1: And as you can see, Mrigendra, at the center of the Twisha Sharma death investigation is her lifeless body, which is still in the mortuary at AIIMS Bhopal. Investigators have also had access to CCTV footage, the moments before she actually died and the moments immediately after she died. But now there's a second video from just hours before her demise, showing her in a relaxed mood inside a beauty salon, getting a pedicure, getting a head massage. What was going on there? Take a look at this report.
3: It's been 10 days since 33-year-old Twisha Sharma was found dead at her in-laws' home in Bhopal. And the investigation is now intensifying as calls for justice grow louder. NDTV has accessed CCTV images that trace Twisha's last movements before her death. At 3:12 p.m. on May 12th, Twisha was seen entering a parlor. She seemed calm, she seemed relaxed. Minutes later, in the second footage from the parlor, she was seen getting a head massage, sitting at ease. That was around 3:26 p.m. And then, in the third footage captured roughly at 5:45 p.m., she is seen getting a pedicure at this salon. Her visit to the parlor just hours before her death has now raised fresh questions, further deepening the mystery surrounding the case.
4: When people are under stress or anxiety, we most of the time tell, or having depressive symptoms, we most of the time tell them to do self-care activities. Now, this particular case, when Twisha, you are telling me, like going to the parlor, and she is doing her self-care. And I would think it's a very positive sign. She must be very hopeful. Maybe if she's stressed also, or just a part of self-care. So I would say It shows that the positivity in her, maybe not having direct signs that she can commit suicide, but definitely it is showing the positive sign this girl is taking care of her health.
3: On the other hand, the CCTV footage that emerged earlier reportedly showed Twisha heading towards the terrace, that's around 7:20 p.m., while another clip allegedly captured her body being brought downstairs nearly an hour later. With all these fresh revelations, the cops are now closely examining fresh evidence that could prove crucial in reconstructing Twisha's final hours. In a major breakthrough for Twisha's family, the Madhya Pradesh High Court has now ordered a second autopsy in the case. The court directed that the procedure should be conducted by a special team from AIIMS Delhi, although the autopsy itself will take place in Bhopal.
5: हमें यह अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है. एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि AIIMS दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है AIIMS भोपाल में, तो अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज़ बीन एक्सेप्टेड. वी हैव गॉटन द डायरेक्शन. इट इज़ अ वेरी स्मॉल विन, द फाइट इज लॉन्ग. हमें एक सही राह पे हम जा चुके हैं बस.
3: For Twisha's family, the second postmortem is a crucial step towards answers, even as fresh CCTV footage and mounting timeline difference deepen the mystery surrounding her death. Bureau Report, NDTV.
1: Today is 10 days since the death of young Twisha Sharma, a story that has fascinated and disturbed people all across the country since NDTV broke the story last week. And yet we are no closer to justice for Twisha. Her husband has finally submitted himself to a court after being on the run for more than 9 days.

0: तो भाषा की मर्यादा ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों की भी भाषा विपक्ष के लिए अच्छी होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग भी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं माँ की गाली तक देते हैं, लेकिन बीजेपी कभी कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर ये सब चीज़ अगर बीजेपी भी कार्रवाई कर देती तो आज इन पर भी सवाल पूछने को होता था कि कांग्रेस भी कार्रवाई करे, लेकिन बीजेपी ने तो जिन माँ की गाली दे देते हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं करते। हमारे जो सैनिक अधिकारी हैं उनको भी आतंकवादी की बहन बोल देते तब भी कार्रवाई नहीं करते। और तो और सोचिए, हम लोग तो उन संस्कारों में से हैं कि आपने देखा होगा कि हम श्री अखिलेश यादव जी उनको भी देखने गए जिन्होंने उनका पुतला जलाया। हम तो वो लोग हैं, हम तो इस मानते हैं कि राजनीति अलग चीज़ है, व्यवहार जो हमारी व्यवहारिकता वो अलग चीज़ है। सामाजिक व्यवहारिकता हमेशा रहनी चाहिए, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कोई भाषा अगर जो पार्लियामेंट में भाषा बोली गई थी, जिस तरह भाषा का रमेश बिदुड़ी ने इस्तेमाल किया था, अगर उसको पार्टी से निकाल दिया होता तो आज मैं भी यही कह रहा होता कि आज मैं भी आपके साथ आवाज में आवाज मिला रहा होता कि ऐसा व्यक्ति चाहे किसी दल में हो, अगर किसी प्रधानमंत्री जी के बारे में या संवैधानिक पद के ऊपर बैठे लोगों के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो ऐसे आदमी को पार्टी।
1: आप ही के तो नेता थे, अभी जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल की बचत कीजिए, आपके कौन से नेता थे, कौन लोधी जी, क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया था, अनुराग जी?
0: उसमें समाजवादी, सुने उसमें समाजवादी ने क्या बोला था, आपने मुझसे पूछा था, तुरंत हमने बोला था जिस भाषा की जो भाषा का इस्तेमाल किया है समाजवादी पार्टी ऐसी भाषा को इंडोर्स नहीं करती है।
1: निकाल दिया आपने उनको पार्टी से?
0: किसी नेता ने बोला, सुने
1: अभी आपने कहा ना कि बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है इसीलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है।
0: मैं बोल रहा हूँ
1: लोधी जी को निकाल दिया पार्टी से?
0: अरे हाँ, आप वही, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या विजय शाह ने जिस बात का इस्तेमाल किया था क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको कोई नोटिस दी? क्या पार्लियामेंट के अंदर में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ था क्या स्पीकर साहब ने कुछ बोला? जिस माँ की गाली दी गई थी जिसको, क्या उस माँ के बारे में, या मेयर साहब ने जो बोला था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लखनऊ के अंदर में, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? माँ तक पहुँच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या कोई दूसरी पार्टी के लोग भी, ये भाषा की मर्यादा गिरती। मैं ऐसी भाषा को जो अजय राय जी के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो, ऐसी भाषा को हम समाजवादी लोग इंडोर्स नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जिस भाषा शैली का वो चाहते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो वही भाषा शैली का इस्तेमाल हो।
1: तो अजेंद्र सिंह लोधी को अभी आपने रखा है पार्टी में, निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे मोदी जी का नाम लेकर के उनको गाली दी थी ना। मोदी जी ने पिछली बार किसको समाजवादी पार्टी के अंदर गाली दी है? और जिसने भी, आप जो कह रहे हैं कि किसी ने माँ की गाली दी है किसी को, आप उसका नाम लीजिए और उसका मैं पॉइंटेड सवाल, आई विल आस्क टू राधिका खेड़ा एंड तुषार गुप्ता, आप मुझे बताइए कि अजेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने नाम लेके प्रधानमंत्री को गाली दी है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? वो तो सांसद है आपके, उनको निकाल दिया ना आपने?
0: मैं पूछ रहा हूं,
1: उनको बेदखल कर दिया है पार्टी से? मैं
0: सुनो, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की मेयर साहिबा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, आप उनसे पूछिएगा क्या
1: किसके लिए
0: कार्रवाई,
1: किसके लिए?
0: श्री अखिलेश यादव जी के लिए।
1: क्या बोला उन्होंने?
0: पूछेगा अभी बार बार शब्द, अब आप खुद ही, आपको मालूम है मैं अपने शब्दों में बोल भी नहीं सकता, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आपसे।
1: तो फिर आप मेयर साहिबा के खिलाफ एक्शन लीजिए और आप आपस में लड़िए ना।
0: मेरी बात तो
1: प्रधानमंत्री को जो गाली दी जा रही है, क्या उन्होंने आपके किसी नेता को गाली दी है?
0: मैंने आपको बोला साफ साफ शब्दों में, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ है हम कतई उसको इंडोर्स नहीं करते, हम कतई उसका समर्थन नहीं करते।
1: अरे इंडोर्स तो कोई भी नहीं करता, कौन सा प्रधानमंत्री जो मेयर ने भाषा इस्तेमाल किया उसका एंडोर्समेंट कर रहे हैं?
0: सुन तो लीजिए, नहीं हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया मैंने खंडन किया, हम ऐसी भाषा शैली का हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि 2014 के बाद से जिस भाषा शैली का स्तर गिर रहा है इस पर रोकने की बात क्यों नहीं सरकार करती? सत्ता पक्ष अगर विपक्ष के बारे में भाषा गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, विपक्ष सत्ता के अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, दोनों गलत है। तो हम समाजवादी लोग तो हमेशा भाषा के, आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से कभी किसी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं सुना होगा। हम अप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय,
1: ठीक है राधिका खेड़ा, जल्दी से इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए, प्लीज रिस्पॉन्ड टू व्हाट अनुराग भदौरिया इज सेइंग, दैट समाजवादी पार्टी इवन बिलीव्स, एंड आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच दैट एपिसोड ही मेंशनड, दैट देयर वर अ फ्यू पीपल हु वर बर्निंग द एफिजी ऑफ अखिलेश यादव, वन ऑफ द लेडीज सस्टेन्ड सम बर्न्स बिकॉज इट गॉट आउट ऑफ हैंड, ही वेंट टू विजिट द प्रोटेस्टर्स, दैट इज द काइंड ऑफ आउटरीच द समाजवादी पार्टी डज। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रेसिप्रोसिटी फ्रॉम द बीजेपी साइड, एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी कोर्सेंट। राधिका खेड़ा,
2: Padmaja ji, you rightly pointed out about Ajendra Singh Lodhi, who spoke a very bad word starting with H for the Prime Minister, and they didn't take any action. And it didn't end over there, Samajwadi Party. Manoj Yadav, aapke saath ke spokesperson hai Anurag ji, unhone kya kaha tha? Chirput. Chirput kaha tha na Pradhan Mantri ji ko. Bhul gaye? Zyada din nahi hue. Azam Khan, unhone bhi kiska bachcha kaha tha Modi ji ko? Kaun se janwar ka bachcha kaha tha? Kutte ka bachcha. Yaad hai na aapko? बादशाह, कमीनापन, कमीना, ये सब शब्द कहे थे ना। मुझे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए नेशनल टेलीविजन पे, पर आप लोग तो एक सेकंड भी

0: सोचते हैं दुनिया के सामने, बच्चों के सामने, सबके सामने ये बोलने के लिए? लगातार मोदी जी के परिवार, उनकी माता जी पे आजम खान साहब ने कितनी बार अटैक किया, और आप क्या करते हैं, आजम खान को सर पे बिठाते हैं, दामाद बना के उनकी भैंसक होती है तो सरकार के अंडर आई हुई पुलिस भैंसों को ढूंढने जाती है। ये है प्यार आजम खान और अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव जी ने भी कई बार प्रधानमंत्री जी पे टॉन्ट्स लगाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमेशा क्या बोला, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में बोला था कि अखिलेश यादव मेरे मित्र हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कितने गंदे गंदे टॉन्ट्स अखिलेश यादव ने बात है, क्या क्या बोला है, काशी में आखिरी वक्त बिताते हैं, याद है ना वो बात 2021 दिसंबर में, आपको तो याद होगा, ये शब्द कहे थे अखिलेश यादव ने, खत्म करने दिया। नफरत के भाईजान किसने कहा था, वो भी आप ही के एक ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ, आपको याद है। फिर फिरोज खान आपके समाजवादी पार्टी के संभल के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा था, ये लोग बंदर हैं, ये लोग बस आतंक मचाते हैं, मोदी जी के लिए कहा था। तो ये तो बस मैं थोड़ी सी बातें बता रही हूँ, बट पद्मजा वन सेकेंड, आप उसके बाद बोल लीजिएगा। नाउ व्हेन द सुप्रीम मैट्रियार्क सेज मौत के सौदागर, नीच आदमी, दे कॉल प्राइम मिनिस्टर रावण, भस्मासुर दुर्योधन, बोटी बोटी कर देंगे उसको, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी में ले लिया था, उसके बाद कांग्रेस ने टिकट दी, एमपी बन गए दोनों के अलायंस में, एंड ही हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद समाजवादी पार्टी।
1: ओके, लेट हिम रिस्पोंड, यू आर टॉकिंग अबाउट इमरान मसूद। यस, अनुराग भदौरिया,
2: देखिए इतने सारे इन्होंने गिराए, तो इससे पूछिएगा कि मैं बोलना भी नहीं चाहता राम जादे, उसके बाद आगे क्या था, किसने बोला था ये शब्द बताइए आप, आपको तो याद होगा किसने बोला था यहाँ पे,
0: उन्होंने तो नहीं बोला था, जिन्होंने कहा था कि ब्राह्मण हमारे दिए हुए पैसों से चलते हैं,
2: मैंने बीच में नहीं बोला,
0: ब्राह्मण और वैश्या
2: आपको सुना इतना हमने,
0: आपको अच्छा लगा,
2: अरे मैंने आपको सुना, मुझे सुनिए ना, हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने आपको सुन लिया, गद्दारों को गोली मारो, किसने बोला था ये, आपको याद होगा, आपको ये भी याद होगा कि किस तरह की गाली दी गई थी, एक जाखड़ा जी थे आपके सांसद, उन्होंने क्या बोला था, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, बोला था उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, बहनों को यही बोला था ना उन्होंने, और सुबह से लेकर शाम तक आपकी पार्टी के लोग, आपके कार्यकर्ता और जिले के प्रेसिडेंट और पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलते रहते, मैंने मेयर की बात की तो आपने जवाब ही नहीं दिया। सवाल ये है कि आप उन शब्द, आप अपने शब्दों की लिस्ट गिनाते हो, ये गिनाने की जरूरत नहीं है, भाषा की मर्यादा 2014 के बाद से गिरी है, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी संयुक्त होती है, लेकिन बीजेपी की वजह से।
1: You know, I really appreciate your concern about भाषा की मर्यादा, but very gently I would like to remind you, अनुराग जी, कभी जाकर के समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का आप हैंडल देखिएगा प्लीज, और अगर वो इस वक्त देख रहे हो टीवी पे, आप प्लीज भाषा की मर्यादा थोड़ा सा एक मैनुअल आप प्रिपेयर करके जो भी उस हैंडल को देख रहा है उसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि दैट हैंडल बॉस, दैट इज अ केस स्टडी ऑन द लोअरिंग ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। Be that as it may, I'm glad at least you are saying that this should not be done in public life. Sir, वो तू तड़ाक से तो वो शुरू करते हैं, आगे जो वो बोलते हैं, I again cannot repeat it on TV. But let me bring in Tushar Gupta finally. Let me, because he's been waiting very patiently. Anurag ji, please 10 second लीजिएगा, because Tushar Gupta के पास फिर 10 second रह नहीं जाएंगे.
2: 10 second. मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ, राधिका खेड़ा जी एक भी ऐसा शब्द सुना दे जो श्री अखिलेश यादव जी के, अखिलेश यादव जी ने अमर्याद भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी किया हो। गाली बकना अलग बात है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें करते हैं आप, चुनाव हार जाना बात अलग होती है,
0: आपको नहीं पता,
2: आप समझ रहे हैं, अभी भी वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं ये वादे के साथ और चैलेंज के साथ आपको बोलता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी कोई भी भाषा का ऐसा इस्तेमाल नहीं करते जो अमर्यादित हो, असंसदीय हो,
1: ओके, लेट मी ब्रिंग इन तुषार गुप्ता नाउ, एंड आई वांट टू गो बैक टू द ओरिजिनल कंस्पिरेसी थ्योरी दैट आई हैड स्टार्टेड विद। Is this deliberate? Because I refuse to believe that Ajay Rai would not have known somebody around him has a smartphone, that this will be captured. And he used that word twice. He said, Wahi jisne Modi ka, and then he said, Wahi jisne Modi ka. So he repeated it twice. Either there is a sense that this kind of language is going to fire up my worker, that my worker actually likes this. He wants to hear this. He is going to work harder. Is that really a sense?
3: No. I think that kind of language will get the worker fired in the eyes of the electorate. They'll fire him from his job. It's that simple. Anurag Bhadauria here was giving a long list of cuss words that were hurled at his party. It is his party that has been accusing the Congress of enabling the BJP in the center. समाजवादी पार्टी का ये बयान था ना कि कांग्रेस की वजह से आज बीजेपी सत्ता में है, तो अनुराग भदौरिया जी जो अजय राय जैसे भाषण देते हैं, जैसे गाली गलौज करते हैं, आपको लगता है यूपी की महिलाएं सुनेंगी? उनको क्या लगेगा? यूपी के बच्चे सुनेंगे, युवा सुनेंगे, क्या सोचेंगे? आपको लगता है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या वो आपकी पार्टी के साथ जाएंगे जो कांग्रेस के साथ खड़ी होती है? आपको लगता है कि भाजपा जीती है तो क्या हुआ, कैसे हुआ? यही कारण है, ये जो भाषा है, जो गाली गलौज हो रही है, आप कहते हैं भाजपा किस नेता ने वो कहा, उसने ऐसा कह दिया तो हमने ऐसा कह दिया। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है, उसकी हालत हो चुकी है ऐसे ही कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके अलायंस पार्टनर्स उन्हें गद्दार कहते हैं, तो गद्दार कह देते हैं।
2: नहीं नहीं, आप क्या है, अलायंस पार्टनर
3: को छोड़ना चाहते हैं तो वो
2: बीजेपी के पीछे लग जाते हैं। घोषित प्रवक्ता लग रहे हैं
3: अलायंस पार्टनर,
2: उनको बड़ी दिक्कत है भैया इंडिया गठबंधन से,
3: क्यों तकलीफ हो रही है?
2: पॉलिटिकल विशेषण है क्या है, क्या है आप? क्या
1: पॉलिटिकल एनालिस्ट है अनुराग भदौरिया? पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और एक तरीके से तो आपको खुशी होना चाहिए ना, जितना अजय राय ऐसा बोलेंगे उतना आपकी स्थिति मजबूत होगी। आज अखिलेश यादव ने बोल ही दिया है कि सारी की सारी सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने को तैयार हो रहे हैं, एक तरीके से आपके जमीन तैयार कर रहे हैं अजय राय।
2: 400 देखो, समाजवादी पार्टी हमेशा 403 सीटों पे मजबूती से लड़ती आई है, उनके कार्यकर्ता मजबूत रहते हैं, तभी हमने 37 सीटें जीती हैं लोकसभा में 2024 में, और बीजेपी को 33 पे समेटा है। और जब हमारे साथ कोई अलायंस में भी लड़ेगा तो उसको भी मजबूती मिलती है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, तो कोई भी अलायंस मेरे पास हमारे साथ आता है तो उसको भी हेल्प होती है, क्योंकि हमें जीतना है बीजेपी को, हराना है बीजेपी को। हराने के लिए आप समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, गांव-गांव में संगठन है, इसलिए बीजेपी को हराना है हमें। तो मेरा
1: तो आपके जो सारे मजबूत कार्यकर्ता है उसमें राजकुमार भाटी जी भी शामिल है ना, जो कभी गुजर के बारे में बोलते हैं, कभी ब्राह्मण के बारे में बोलते हैं, उनको एकदम आप आगे रखिएगा अपने सारी 400 सीटों पर जब लड़ने जाएंगे तो, और सब जगह रखिएगा, जहां पर ब्राह्मण है वहां पे भी रखिएगा, जहां गुजर है वहां पे भी रखिएगा।
2: व्यक्तियों को सुनिए, ऐसे व्यक्तियों की समाजवादी कभी इंडोर्स नहीं करता ना, समाजवादी ऐसे
1: इंडोर्स किसी को नहीं करता, पर एक्शन नहीं लेते किसी के खिलाफ।
2: सुन तो लीजिए,
1: एंडोर्स तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे ना, अगर कोई कहेगा कि ब्राह्मण और वैश्य का कोई कंपैरिजन करेगा उसको एंडोर्स तो ना करेंगे।
2: ऐसी भाषा मैं बोल रहा हूँ ना, अरे मैं तो खुद क्षत्रिय हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसी भाषा का जो इस्तेमाल करेगा समाजवादी पार्टी उसका कभी सम्मान नहीं करेगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ।
1: अरे तो बिना सम्मान का प्रवक्ता तो रखा हुआ है, भले से ही आप सम्मान ना करें, पर आपका आपका प्रवक्ता तो है सही, वो
2: ऐसे व्यक्तियों की समाज सुन तो ऐसे व्यक्तियों की समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं होती है, जो किसी भी जात वर्ग विशेष के बारे में शब्दों का इस्तेमाल करता है।
1: ओके, वेरी क्विकली आई वांट टू ब्रिंग इन वन मोर एंगल, बिकॉज रिमेंबर एवरीवन विल कीप ट्राइंग टू डिस्टेंस देमसेल्व्स एंड से यस दिस वाज सेड बट वी डोंट एंडोर्स इट, एज इफ समबडी इज गोइंग टू कम एंड एंडोर्स एंड से यस ही अब्यूज्ड एंड वी कंप्लीटली एंडोर्स इट, और यू विल से वी डोंट रिस्पेक्ट देम बट यू विल कंटिन्यू टू प्लेटफॉर्म देम। आई वॉन्ट टू रिमाइंड आवर व्यूअर्स हाउ कॉमन कर्टेसी समटाइम्स इज नॉट दैट कॉमन। यू हैड द प्राइम मिनिस्टर इन जस्ट द लास्ट फ्यू डेज इन 2024, the Congress president Mallikarjun Kharge, he actually fell ill during a rally in Jammu and Kashmir. At that time, the Prime Minister reached out, asked about his well-being. He dialed Mallikarjun Kharge and asked him about his health. There have been plenty of people within the Congress, not just Kharge ji. Sonia Gandhi in 2016, when she fell ill during a roadshow in Varanasi, the same seat where the Prime Minister and Ajay Rai are face to face, the Prime Minister offered to send an aircraft and medical help to Sonia Gandhi at that time, when she fell ill in the middle of the elections. Lalu Prasad Yadav and Mulayam Singh Yadav, there was a pre-wedding family function. They're also related to each other through marriage. And in 2015, the Prime Minister attended that event in Saifai. The point I'm trying to make is that these common courtesies are extended. There have been plenty of people, journalists, who have been very, very critical of the Prime Minister. He has condoled their death after they have passed away. Why can there not be some kind of reciprocity in all of this is my simple question. Think about it. Meanwhile, Adhika Kheda, respond.
0: The Samajwadi Party spokesperson was saying there's no place for people like Mr. Bhatti, or even for that matter, Manoj Yadav, who the very next day after Mr. Bhatti spoke, said ki mere hum jo daan dete hain, usi se brahmano ka ghar chalta hai. So he said, since there's no place for such people, I'm sure, Anurag bhai, aap logon ne un dono ko hata diya hoga as spokespersons. Please, wo bhi bata dijiyega, tweet kar dijiyega, karwa dijiye. Itna zeher aap logon ka count karta hai. Ye bhi tweet aa jana chahiye that humne unko parties nikal diya. Having said that, Prime Minister Shri Narendra Modi ji did not inherit power through a family surname called from the Gandhis or like the Yadav family. he inherited, he earned it through sweat and blood and tears of serving this nature. Every time these people's dirty mouth vomits venom on him, the 1.4 billion people of India treat it as an insult to their own vote. Go ahead, bleed your toxic frustration as much as you want out on the roads, on national television, in debates, or even like Rahul Gandhi does, gaddar, gaddar, kehke. Because the more that you people...
1: Okay, 30 seconds, Anurag Bhadauria. Last 30
0: seconds. The deeper you bury your own party's future.
2: Bas, main Bharatiya Janata Party, jo parivarvad ki baat karte, inhe shayad pata nahi hai. कि को इस देश के अंदर में लोकतंत्र में जनता चुनती है. बहुत परिवार के लोग चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके बेटे कुछ कर नहीं पाए. श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी दम पे पार्टी को आज 37 सीटें दिलवाई है.
0: श्री अखिलेश यादव जी ने
2: 37 सीटें दिलवाए पे यार, उनके पिता का आशीर्वाद के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ, जनता के सपोर्ट से उनको 37 सीटें मिली हैं. इसलिए आप जैसे लोग परिवार का मतलब समझते नहीं है. परिवार का मतलब सिर्फ आप उसका सरनेम समझते, कर्मठता नहीं समझते, उनका काम नहीं समझते.
1: ऑल राइट, वी विल लीव दैट असाइड फॉर अनदर डे. द इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर. वी विल हैव मच मोर टाइम टू डिस्कस दैट एट लेंथ. बट एज फार एज दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्स इज कंसर्न, I leave it to your wisdom. I still cannot wrap my head around the fact that somebody who is headed into elections, whose party is has a lot at stake in the next few months, would let loose in this fashion in public, knowing that this is going to be recorded by somebody. Why would you do it? Either you think it is beneficial, or you simply have failed to gauge the pulse of the public. You decide. Thanks very much, all gentlemen, and Radhika Khera for having joined me. Coming up is Focus, where we will talk about the NEET pain that hundreds of aspirants across the country have faced. How do you deal with it? What is its root? We'll talk about that. That's our Focus.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life. The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
6: From rural classrooms to global campuses, India's education story is changing. The question is simple: how do we make every child future ready? Visionaries, disruptors, policymakers, one big conversation charting the future of India's young minds. NDTV Learn Next Conclave, 25th May, only on NDTV 24/7.

0: का है इस चीज को लेकर के।
1: जस्ट आफ्टर द एग्जाम इज ओवर यू नो द बॉडी इट इज दिस विच गोज इन ओवर ड्राइव सडनली कम्स डाउन देयर इज अ क्रैश फाइन एंड द फैटिग सेट्स इन फाइन एट दैट वेरी मोमेंट यू नो ड्यूरिंग दैट टाइम वेन द बॉडी इज फैटिग द माइंड इज फैटिग वेन वन पर्सन कम्स टू नो दैट यू नो ही और शी हैज़ टू अपीयर फॉर एन एग्जाम इन द कमिंग डेज इज वेरी चैलेंजिंग इट्स इमोशनली एग्जॉस्टिंग।
2: Madhu Shukla comes from a village called Bithauli in the Siddhi district of Madhya Pradesh. This is her room in Bhopal. In one corner stands an old iron bed without a mattress. Madhu spreads a sheet over it and spends her nights here. Heat, loneliness, and mounting mental pressure, everything feels trapped within the walls of this room. An uncle pays for her coaching fees, travel and living expenses. Madhu has been preparing and attempting to crack NEET UG for 4 years. And in 2026, she was confident of a 600 plus score that would get her an admission into a medical college.
0: ये मेरा second attempt था, emotionally तो ऐसा लगता है, देखिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अंदर से मन नहीं करता है, अंदर से कई बार चीज़ें वही रिपीट करना है, बार बार वही रिवीजन करना है, वही रिवीजन करना है, बहुत फ्रस्ट्रेशन सा होता है, ऐसा लगता है सब कुछ किसी काम का नहीं है, कई बार तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर ले।
1: बेसिकली वी नीड टू ऑब्जर्व द बिहेवियर, सो इन द बिहेवियर the person's interpersonal connection would be affected, the person would be more irritable, the person may be more withdrawn, or sometimes the person may act out, be more aggressive towards persons whom they would have behaved properly. They might involve in activities which give them immediate pleasure. For example, getting hooked to social media, sleeping for long hours, or not sleeping at all. You know, when it comes to the food habits, the nutrition might go for a toss. You know, they might eat a lot of carbs. You know, proper nutrition might not be there. Might not go out. You know, physical involvement, physical activities might not be there. So these are some of the areas, and these are some of the behaviors. If we notice in a person, then we should be careful about the emotional, burnout.
2: Every day, Madhu spends around 30 rupees traveling from Anand Nagar to her coaching classes in MP Nagar. Her family somehow manages to send 2,000 rupees for the rent. Her father took loans for her education. Her mother mortgaged her jewelry.
3: जिस दिन नीट एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज आई थी, तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं छुट्टी पे थी, घर पे थी, तो मेरे पास एकदम से बच्चों के कॉल आना शुरू हो गए। मुझे लगा पता नहीं

0: While most major entrance exams in India take the computer-based route, NEET remained with the optical mark recognition or OMR technology that reads and captures data from paper forms. Even in the NTA basket of 16 national level examinations, NEET is the only one which remained in the OMR format.
1: अगर हम 2020 से 2026 तक का देखें, अभी तक दो से तीन बार पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, तो NTA को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो हो रहा है। तब भी उन्होंने उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एंड में बोला कि हमें पता चलते हमने रिपोर्ट कर दिया। उनके रिपोर्ट करने से कुछ फ़ायदा थोड़ा ना हो रहा है, हमें तो वही करना पड़ रहा है। और जैसे कि पेपर के बाद हम तो फ्री माइंड बैठ गए, 20 दिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग अच्छे से थे कि हमारा तो हो जाएगा। पर वो 20 दिन का जो लॉस हुआ, हमने किताबों पे ध्यान नहीं दिया, उसको भी तो सर रिकवर नहीं कर सकते ना। और प्लस फिर वही है कि पेपर भी कैसे भी आ सकता है।
0: Inside Madhu's tiny room in Bhopal, the doctor poster on the wall every day reminds her of her goal in life. Whatever be the obstacle, Madhu still has to struggle on, because in the harshness of life, dreams spur hope for the future.
2: नीट एस्पिरेंट के मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो अपने लिए एक जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका होता है कि हाँ अपन नीट के एग्ज़ाम दे, डॉक्टर बने। लेकिन ये जो समाज के लोग हैं, इन्होंने ही इस एग्ज़ाम को मतलब कि तहस नहस कर रखा है, पेपर लीक करवाते हैं, उनको मतलब क्या है इस चीज़। आप अच्छा मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि आप कैसा करने से जो है अब कुछ नहीं होगा, आपको पैसे मिलेंगे और कुछ नहीं है उससे। लेकिन उससे जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, जिनके लिए डॉक्टर लोगों के लिए सिंपैथी होती है, वो लोग पीछे हट जाते हैं इस रास्ते से। तो ये गलत बात है कि आप पेपर लीक करवाते हो जो भी है ये।
0: Days after the NEET UG 2026 examination was cancelled, NTA announced a new examination date. While NEET will be computer-based from 2027, as promised by the Education Minister, NTA clarified that the repeat exam of 2026 will still be pen and paper. The re-exam on June 21st is expected under heightened security and monitoring measures.

0: And I would think it's a very positive sign. She must be very hopeful. Maybe if she's stressed also, or just a part of self-care. So I would say it shows that the positivity in her, maybe not having direct signs that she can commit suicide, but definitely it is showing the positive sign this girl is taking care of her health.
1: On the other hand, the CCTV footage that emerged earlier reportedly showed Twisha heading towards the terrace. That's around 7:20 p.m. While another clip allegedly captured her body being brought downstairs nearly an hour later. With all these fresh revelations, the cops are now closely examining fresh evidence that could prove crucial in reconstructing Twisha's final hours. In a major breakthrough for Twisha's family, the Madhya Pradesh High Court has now ordered a second autopsy in the case. The court directed that the procedure should be conducted by a special team from AIIMS Delhi, although the autopsy itself will take place in Bhopal.
2: हमें ये अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि AIIMS दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है AIIMS भोपाल में तो अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है बट आर प्ली हैज़ बिन एक्सेप्टेड वी हैव गॉटन द डायरेक्शन इट इज़ अ वेरी स्मॉल विन द फाइट इज लॉन्ग हमें एक सही राह पर हम जा चुके हैं बस
1: For Twisha's family, the second postmortem is a crucial step towards answers, even as fresh CCTV footage and mounting timeline difference deepen the mystery surrounding her death. Bureau Report, NDTV.
3: Shifting our focus to Maharashtra, at least 19 people have been arrested for rioting and stone pelting during the demolition drive in Mumbai's Bandra East. All the accused have been arrested and sent to police custody till May 26. But the opposition has been claiming that the manner in which this was done was apparently in a biased manner. Sample the reactions.
4: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल उद्या जर कुठे दंगल घडली त्या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे
5: हर जगह भाजपा करना चाहती है आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है आज युवा बेरोजगार है और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है लेकिन ये नहीं आपको कहीं भटकाना है पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है
6: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना एक फैशन बन गया ये बिल्कुल बंद होना चाहिए
7: MIM आए मुस्लिम लीग आए राहुल गांधी आए उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है
8: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था ठीक है तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है ये पथरावबाजी जब हुई है जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है जो तोम बोला जाता है उसको डेमोलिशन किया तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया
3: स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक डोंट गो एनीवेयर कीप वाचिंग एनडीटीवी

0: reportedly showed Twisha heading towards the terrace, that's around 7:20 p.m., while another clip allegedly captured her body being brought downstairs nearly an hour later. With all these fresh revelations, the cops are now closely examining fresh evidence that could prove crucial in reconstructing Twisha's final hours. In a major breakthrough for Twisha's family, the Madhya Pradesh High Court has now ordered a second autopsy in the case. The court directed that the procedure should be conducted by a special team from AIIMS Delhi, although the autopsy itself will take place in Bhopal.
1: हमें ये अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि AIIMS दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है AIIMS भोपाल में तो अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है बट आर प्ली हैज़ बिन एक्सेप्टेड वी हैव गॉटन द डायरेक्शन इट इज़ अ वेरी स्मॉल विन द फाइट इज लॉन्ग हमें एक सही राह पर हम जा चुके हैं बस
0: For Twisha's family, the second postmortem is a crucial step towards answers, even as fresh CCTV footage and mounting timeline difference deepen the mystery surrounding her death. Bureau Report, NDTV.
2: Shifting our focus to Maharashtra, at least 19 people have been arrested for rioting and stone pelting during the demolition drive in Mumbai's Bandra East. All the accused have been arrested and sent to police custody till May 26. But the opposition has been claiming that the manner in which this was done was apparently in a biased manner. Sample the reactions.
3: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल उद्या जर कुठे दंगल घडली त्या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे
4: हर जगह भाजपा करना चाहती है आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है आज युवा बेरोजगार है और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है लेकिन ये नहीं आपको कहीं भटकाना है पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है
5: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना एक फैशन बन गया ये बिल्कुल बंद होना चाहिए
6: एमआईएम आए मुस्लिम लीग आए राहुल गांधी आए उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है
7: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था ठीक है तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है ये पथरावबाजी जब हुई है जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है जो तोम बोला जाता है उसको डेमोलिशन किया तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया
2: स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक डोंट गो एनीवेयर कीप वाचिंग एनडीटीवी

0: evidence that could prove crucial in reconstructing Twisha's final hours. In a major breakthrough for Twisha's family, the Madhya Pradesh High Court has now ordered a second autopsy in the case. The court directed that the procedure should be conducted by a special team from AIIMS Delhi, although the autopsy itself will take place in Bhopal.
1: हमें ये अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि AIIMS दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है AIIMS भोपाल में तो अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है बट आर प्ली हैज़ बिन एक्सेप्टेड वी हैव गॉटन द डायरेक्शन इट इज़ अ वेरी स्मॉल विन द फाइट इज लॉन्ग हमें एक सही राह पे हम जा चुके हैं बस
0: For Twisha's family, the second postmortem is a crucial step towards answers, even as fresh CCTV footage and mounting timeline difference deepen the mystery surrounding her death. Bureau Report, NDTV.
2: Shifting our focus to Maharashtra, at least 19 people have been arrested for rioting and stone pelting during the demolition drive in Mumbai's Bandra East. All the accused have been arrested and sent to police custody till May 26. But the opposition has been claiming that the manner in which this was done was apparently in a biased manner. Sample the reactions.
3: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याची धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल उद्या जर कुठे दंगल घडली त्या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे
4: हर जगह भाजपा करना चाहती है आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है आज युवा बेरोजगार है और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है लेकिन ये नहीं आपको कहीं भटकाना है पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है
5: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना एक फैशन बन गया ये बिल्कुल बंद होना चाहिए
6: MIM आए मुस्लिम लीग आए राहुल गांधी आए उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है
7: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था ठीक है तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है ये पथरावबाजी जब हुई है जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है जो तोम बोला जाता है उसको डेमोलिशन किया तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया
2: स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक डोंट गो एनीवेयर कीप वाचिंग एनडीटीवी
8: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100
9: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स दिस इज अबाउट हाउ यू मूव This car makes no sense, yet it makes every sense.
10: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
9: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: Across the country,
13: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought.
2: Bengaluru's garbage black spots continue to remain an eyesore, with residents furious over poor waste management ahead of the civic polls. The Greater Bengaluru Authority has now launched the Declutter mobile app to tackle bulky waste dumping across the city. Residents have been alleging that daily garbage collectors refuse to pick up furniture, mattresses and other heavy waste, forcing people to dump it in the open space. Take a look at the report sent by my colleague Ritu Raj Purohit from Bengaluru.
14: Bengaluru IT city has been in news for garbage crisis all the time, and in fact the GBA had also been facing the public heat because public believes that the bulky waste are really not getting cleared on the roadside. That is really causing an inconvenience to public, to commuters as well, and it's also somewhere bringing a bad name to the city. Now this time, in yet another attempt, that the GBA has come up with an application called as Declutter. This mainly to help somewhere the citizens to avoid the bulky waste to be dumped on the roadside. I'll also show it to you on my phone how that the application really looks like. There you see on my screen, if you Declutter is an application that's available on the Play Store that one can really download, and this is how the interference basically looks like. So this is a service that will be available on the weekends from Bengaluru Solid Waste Management Limited. There you see furniture, clothing, appliances, electronics and others would really be collected on the weekends. Now for this, one will have to book a slot in advance. All that one has to do is select the pickup number and then the location pickup as well, basically provide pickup pins so that an official can come on their doorstep to collect this garbage. Now the biggest question over here, you see, is what that on the political side is. The BJP says that this is nothing but a cosmetic fix. This is a temporary fix that the GBA is playing a game on. This is not a permanent solution. On the other side, the public is really doubtful that this application will at least clean up the city and will give them a permanent solution. So the biggest question remains that though multiple attempts have been made by the GBA, whether it's by Kasa kiosks in the past or various helplines that they have released, nothing has really worked out. But this time, how is it really going to play out? That needs to be seen. With video journalist Govindritu Rajpurohit for NDTV in Bengaluru.
2: Taking a quick break here. Don't go anywhere. Keep watching NDTV.
15: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
16: TVK headquarters here.
17: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
18: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
19: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
15: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
20: Happy meeting NDTV team here.
21: Thanks for NDTV.
22: Padmija Joshi.
23: Shreya Shide.
24: This is Shreya Ghosh.
25: Rakhandeep Chaudhary.
26: Manogya Loiwal.
27: Deepak Bopanav.
28: This is Victor.
29: Tanushka Datta.
30: Sam Daniel.
31: Vika Ramaswamy.
32: Ritu Rajpurohit.
33: Shiv Arur.
34: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
35: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
36: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
37: आज के की खबरें झालमुड़ी ना माचे।
38: सर ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।

0: ये तो सब लेकिन कोर्ट में होंगी बातें जो को एंटर करेंगे विटनेस बॉक्स.
1: बट व्हाई वुड गिरिबाला सिंह से समथिंग लाइक Twisha's parents want to profit from her entry into the glamour world. Why would they say
0: never,
1: that?
0: Never, never she said
1: that. She has said that. She has
0: never
1: said that.
0: She said this.
1: She has said this, sir. We have it on the record.
0: Replay kar dijiye. Abhi replay kar dijiye. Aur main, because I've been engaged just 2 days back.
1: I think you are not, sir, you are accusing, sir, you are accusing me of not being well-versed with the case. I am telling you, you are not well-versed with it. She has
0: I'm
1: said
0: not
1: this
0: well-versed.
1: Camera.
0: I'm saying I'm not well-versed because I've been engaged just 2 days back.
1: No, no, but why would she say something like this? Is there a family dispute? Had things become so broken down between the two families that this girl had to take such an extreme step? We don't even know.
0: My
1: there is
0: friend,
1: no there is no suicide note.
0: Down.
1: Sir,
0: main
1: there is...
0: आपको अभी दिखा दूं. मैं अभी आपको दिखा देता हूं पिक्चर 10 मई की जो उस लड़की ने खुद भेजी अपनी मदर को दिया है हाथ से. ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? ये जो डेथ हो गई उसकी इस वजह से बोल रहे हैं ना. मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये अभी मैं दिखा रहा हूं आपको. ये है उसकी पिक्चर लड़की की और जो वो बच्ची ने अपनी माँ को अपनी मदर इन लॉ को दिया फोटो. ये देखिए ये 10 तारीख की फोटो है. ये 10 तारीख की फोटो है और ये देखिए ये 10 तारीख की फोटो है और 12 तारीख को लड़की चली गई और 4.5 महीने के अंदर और वो लड़की 5 बार ये लेके गए उसको घर. मैं बच्ची को दोष नहीं दे रहा हूं.
1: So what happened?
0: 5 बार क्यों लेके गए 4.5 महीने में उस बच्ची को? और जब वो वापस आती तब उसका बिहेवियर डिस्टर्ब रहता था.
1: What happened
0: तो
1: in those 2 days?
0: भगवान ने उसको उठा लिया. आज वो होती तो बताती उसने अपनी मदर इन लॉ को क्या मैसेज भेजा. अभी मैं आपको दे दूंगा, अभी सब दे दूंगा.
1: Sir, people in unhappy marriages sometimes take pictures with family members. That's not unusual. But I want to ask you, what do you think happened, sir? What is your reading of what happened to Twisha Sharma? Yes, it will go into trial. Yes, investigations are on right now. But you yes. must be having an opinion as to what happened, sir. Samarth se baat ki hogi aapne.
0: I tell you.
1: You must have spoken
0: my
1: to Samarth.
0: Opinion.
1: What is Samarth
0: saying? The girl has gone because of the pressure created by her own parents and so-called Parijans. They never wanted her to become, to be a homemaker in Bhopal. They were extracting money out of that girl because they dragged her into glamour before she could be an adult. वो घर पे बताती थी कि मैं तो बड़ी नहीं, मुझे पता ही नहीं था. जब मेरे पिताजी बोलते थे तुमको ऐसा फिगर बनाना है, ये करना है. She was dragged into Telugu films. She was dragged into unnecessary advertisements. You know? And they were extracting money out of her.
1: What?
0: Imagine, जो हाई कोर्ट में आज मैंने विड्रॉ किया है, उसमें भी मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है. Out of these 4.5 months, जिसमें से जो आधे समय भी हमारे साथ नहीं रही, we have transferred, my clients have transferred more than 7 lakh rupees to her. हम भी परिवार के लोग हैं, आप भी परिवार के लोग हैं. कौन इतने पैसे देता अपनी बहू को? Out of sheer affection, on the same day she was in the beauty parlor from 3 o'clock in the afternoon to 6 o'clock in the evening. Happily having the things done. Just imagine, लड़की को अगर होता एक एक एक एक एक एक तो वो लिख के जाती सुसाइड नोट. मदर बोल रही है, मुझे बोल रही तुम मत फंसना. मैं देख रहा हूं सारी चीजें सर कि ये तुम मत फंसना, मैं फंस गई. उससे ये कहां लिखा, कहां टॉर्चर कहां लिखा हुआ है? टॉर्चर कहां है? हमारी भी शादी हुई, आपकी भी शादी हुई.
1: Doesn't add up.
0: घर से लड़की आती है, उनको टाइम लगता है एडजस्ट होने में.
1: Rigendra Singh, the things that were being said to her by her own mother-in-law, by Samarth, accusing her of infidelity, that the baby was somebody else's. You are acting like as if her marital home was a blissful home. It was not a blissful home. You're making it seem like Twisha was only under pressure from outside. There is no indication of that.
0: She herself said that she has been having relations with many people.
1: Who doesn't have relationships earlier, sir? Who doesn't have relationships earlier?
0: I never had any relationship.
1: You
0: say who doesn't have?
1: You might be unique in that
0: number
1: sense.
0: Of relationships.
1: No.
0: I've never had any relationship.
1: When you say she's had many relationships, I'm obviously talking about before her marriage.
0: अगर वो बच्ची बोल रही थी तो अगर वो बच्ची बोल रही थी माँ ने उसको यही तो बोला कि आगे मत करना भाई आगे मत करना भाई आगे अब तो बी बी बी ऑनेस्ट एंड बी डेडिकेटेड टू योर हस्बैंड इतना ही तो बोला और क्या बोला
1: नहीं
0: यू पीपल आर ड्रैगिंग द थिंग्स बियॉन्ड प्रोपोर्शंस आई टेल यू व्हेन अल्टीमेटली When it goes, हमने तो खुद पिटिशन लगाई हम तो खुद चाहते सीबीआई के पास चला जाए चला गया केस नाउ यू इमेजिन फिर उसके बाद राहुल गांधी वाली बात आप पत करना कि सीबीआई खरीद ली ईडी खरीद ली आप देख लेना सीबीआई करेगी इंक्वायरी एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट माय क्लाइंट्स विल कम आउट क्लीन क्लीन एब्सोल्युटली क्लीन
1: व्हाट डज समर्थ
0: आज sir? हमने कोर्ट में बोला कि सर हमको बॉडी हमको दीजिए हिंदू धर्म के हिसाब से हम क्रिमेशन करेंगे हम उसके अंतिम संस्कार करेंगे
1: व्हाट डज समर्थ से यू हैव स्पोकन टू हिम व्हाट डज ही से हैपेंड व्हाट इज हिज व्यू व्हाट इज ही व्हाट इन हिज ओपिनियन व्हाट हैपेंड
0: ही इज ब्रोकन आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ द सेम डे द लेडी लेफ्ट द गर्ल लेफ्ट समर्थ हैड ड्रॉप्ड हर एट द ब्यूटी पार्लर Samarth picked her up from the beauty parlor. 7:30, they went for a walk. They had a walk for in the evening for one hour. After that, they saw whatever they were watching TV. They had dinner together. And then she went upstairs. She said that I need space. I'll talk to my people. Okay, she went upstairs. This is what Samarth has faced. Just think about that boy also. Just think about that boy also before blaming anyone.
1: No, there's...
0: Think about that boy also.
1: I just want to say that we are not blaming anyone. We are only reporting what the investigation is telling us. We are speaking to both sides. I had reached out to Giribala Singh. If you can advise her to speak to us, we would like to ask her some questions as well. Because I spoke to her directly.
0: I say, my brother, she's broken now. Her all statements have been so very intelligently and cleverly and mischievously twisted. You know, she says, I don't want to talk to media now because I'm fed up.
1: A
0: lady who has now, served this country,
1: final
0: who's a
1: question.
0: Poor widow, uska husband, wo vidwa hai wo lady. Vidwa, jab ye bachcha ek saal ka tha, uske husband ki encounter mein death hui. Imagine. वो एक साल का था ये बच्चा
1: बट सर
0: उनका हस्बैंड के एनकाउंटर में डेथ हो गई
1: सर दीस आर डिफिकल्ट सर दीस आर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस बट द हार्ड क्वेश्चंस स्टिल नीड टू बी आस्क्ड
0: उसके बाद उन्होंने परीक्षा की तैयारी करी और सिविल जज बनी वो लेडी
1: मेनी ऑफ द थिंग्स
0: फॉर दिस डे Sir, आज का दिन देखने के लिए वो सिविल जज बनी थी
1: सर आई
0: वो डीजे बन के रिटायर हुई
1: सर आई वांट टू जस्ट प्ले यू नो सिंस यू वर डाउटिंग मी मिस्टर मृगेंद्र सिंह लेट मी जस्ट प्ले आउट फॉर यू व्हाट आई सेड दैट गिरिबाला सिंह एक्चुअली सेड लेट्स जस्ट प्ले दैट आउट फॉर आवर For Mrigendra Singh right now.
2: जो करना है धरना प्रदर्शन बट गिव हर द पीस ना उसके जीवन काल में उसको चैन मिला बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग वो अर्निंग का साधन तब थी एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर
1: एट द सेंटर ऑफ द त्विशा शर्मा डेथ इन्वेस्टिगेशन is her lifeless body, which is still in the mortuary at AIIMS Bhopal. Investigators have also had access to CCTV footage the moments before she actually died and the moments immediately after she died. But now there's a second video from just hours before her demise, showing her in a relaxed mood inside a beauty salon, getting a pedicure, getting a head massage. What was going on there? Take a look at this report.
3: It's been 10 days since 33-year-old Twisha Sharma was found dead at her in-laws' home in Bhopal. And the investigation is now intensifying as calls for justice grow louder. NDTV has accessed CCTV images that trace Twisha's last movements before her death. At 3:12 p.m. on May 12th, Twisha was seen entering a parlor. She seemed calm, she seemed relaxed. Minutes later, in the second footage from the parlor, she was seen getting a head massage. Sitting at ease, that was around 3:26 p.m. And then, in the third footage captured roughly at 5:45 p.m.,